जैसे तुम्हारा हृदय पवित्र होगा और राधा नाम का प्रभाव पड़ेगा, काफी है, फिर और कुछ नहीं चाहिए, फिर कुछ नहीं चाहिए। शब्द याद कर लो, ये ऐसा रंग चढ़ेगा राधा राधा, कुछ राधा नामय कार्यम हनुदिनी मिलतम साधना घीस कोटि, केवल केवल राधा राधा। परम पदवी तुम्हारे चरणों में लौटेगी, सिद्धियां तुम्हारे चरणों में, ये राधा नाम है। एक कौन सखी है जो ऐसी स्वामिनी जी को पुकार रही है, एक अनुपम रूप सखी सुख सागरी तन कोटि अनंग तरंग

उन मोहिलिए बन जंतु बजावे जंत्र को। हाथ में वीणा लिए हुए राधा राधा राधा, बुद्धि थोड़े सब बंद हो जाती चलना। ये वो देश है, बावरों का देश है वृंदावन। यहां ज्ञान विज्ञान झाड़ू लगा के बाहर परिक्रमा के कर दिया जाता है। ये तो वो देश है जो आंसुओं से भीगी हुई भूमि से युक्त है। चाहे जिस भाव के जन हो, यहां आंसुओं से अभिषिक्त करते रहते हैं, वो भूमि है। ऐसी भूमि पर भी आकर और वास करके यदि राधा प्रेम न प्रकट हो, राधा नाम में प्रीति न हो, तो बड़ा ही मलिन हृदय है। ये साधन भूमि नहीं तो सिद्ध प्रेम भूमि है। लालजू की प्रेम वृत्ति को पहचान पाना बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा प्रेमी कोई नहीं जैसे लालजू है। सच्ची तुम्हें बताते हैं, मतलब बहुत ही चतुर शिरोमणि होते हुए बहुत ही भोरे हैं, बहुत ही लाडले हैं। देखो ना, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी होकर अपने भक्तों की लंगोटी धोते पाए गए, रथ आते पाए, क्या क्या। आज भी हमारी सबकी, हम कहलाते हैं उनके दास, लेकिन सही पूछो तो वही हमारी सेवा करते हैं। हम तो केवल नाम मात्र के दास हैं, वही हमारा भरण पोषण अंतर और बाहर से वही करते हैं। सखी श्रीजी से जागीर की ऐसा प्रेमी हमने नहीं देखा। वो मानसरोवर के कुंजों में बैठ करके बिना हाथ में लेकर के अशुभ प्रवाह करते हुए राधा राधा ऐसा मंत्र रट, ये परा मंत्र है, परा विद्या, इसीलिए आगम निगम पुराणों में आपको नहीं मिलेगा। ये परा विद्या है राधा नाम। बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी ये दुर्लभ नाम है। ये कृष्ण की आंतरिक हृदय वृत्ति में विराजमान ये राधा नाम है। श्री जी से कहने लाडली जू, वहां के जितने भी जीव जंतु हैं, खगमृग पशु पंछी, राधा नाम सुनकर सब मोहित हो रहे हैं और एकटक चकोर की भांति उसके मुख चंद्र की तरफ देख रहे। वो अशुभ प्रवाह करती हुई राधा राधा राधा राधा ऐसा वीणा वादन करते हुए गान कर रही। लाडली जू, मान सरोवर मांझ अरी सुनि नहाई के, राधा को जाप जपे पानी में जाई के। और हमने देखा किसके बाद वो मानसरोवर में स्नान किया और इतना हृदय तक छाती तक जल में खड़े होकर राधा राधा राधा ऐसा जप कर रहे हैं, अर्थात राधा नाम का कीर्तन और राधा नाम का जप कर रहे हैं। फिर लाडली जो हमने देखा कि वो आपकी स्वर्ण श्री विग्रह की प्रतिमा को साथ लिए हुए

हमारी स्वामी जी की कैसे प्राप्ति होती है। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर गुवार स्वयं लाल जी महाराज और गोपाल शास्त्र नाम में एक नाम श्री लाल जी का राधा आराधन तत्पर प्रतिपल किशोरी जी की आराधना करते रहते हैं। राधा आराधन तत्पर तत्पर है श्री स्वामी जी की आज कैसे कोई जानेगा राधा तत्व। जिन श्री कृष्ण तत्व को वेद भी नेति नेति कहते हैं वो राधा तत्व का क्या वर्णन कर पाएंगे। लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लालडी जी महाराज प्रेम अनिर्वचनीय है, कोई नहीं वर्णन कर सकता। फिर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी का कोई वर्णन कैसे करे। सखियां जो आचार्य रूप से होते तो वो भी कह रही जो को कोटि कल्प लग जीवे रसना कोटि को पावे तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत नावे। लाडली जू वो आपकी स्वर्ण प्रतिमा को स्वर्ण श्री विग्रह को स्नान करा रही है और चरणोदक लेकर पान करके अपने माथे पे चरणोदक और हृदय से उस प्रतिमा को लगाकर ध्यानस्थ हो जाती है।

पानी गए। हे लाडली जी, वो आपकी प्रतिमा का श्रृंगार कर रहे हैं, सुंदर सुंदर केसर, चंदन, कर्पूर, इस मिलित चंदन से पत्रावली की रचना उस स्वर्ण प्रतिमा में करते हैं, सुंदर पोशाक धारण कराते हैं, फूलों से श्रृंगार करते हैं, भोग लगाते हैं, जल पवाते हैं, फिर आचमन करा करके मुख पोछकर पान की बीड़ी और फिर आपके चरणारविंद में प्रणाम करके प्रसाद पाते हैं जो भोग लगाया।

वो धूप आरती करती है, अपने प्राणों को बलिहार करके आपकी आरती उतारती है। कुंजन में गुहि फूल निकुंज बना वही ललनातों को नित ही नित लाल लड़ा वही। स्वामी जी सुंदर सुंदर फूलों को चयन करके सैया की रचना करते, निकुंज में फूल बंगला बनाते और आपकी प्रतिमा को विराजमान करके सुंदर सुंदर पद गान करते हैं, आपको रिझा रहे। यह है उपासना महारानी जी को प्रसन्न करने की। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, वो बड़ी जानकार है। ऐसे सुंदर सुंदर रागों का गान करके ये प्राण मोहित हो रहे हैं उनकी गान। समस्त आचार्यों के आचार्य हैं लालजी महाराज, जगत गुरु हैं, नृत्य गान वाद्यादि सबके आचार्य हैं, यही इन्हीं से सब प्रकट हुआ है। जानन गानन तानन प्राणन सोही के, और लाडली जू एक छोटी सी प्रतिमा और आपका नाम कंठी में पहने हमने उनको देखा। तेरी प्रतिमा पहिरे कंठी में पोही के।

राग रागिनियां तो मानो मूर्तिमान होकर उनके कंठ में विराजमान हो, ऐसे गान कर। और एक आश्चर्य की बात, वो अपने अधरों पे मुरली रख के वैसे ही बजाती जैसे लालजू बजा रहे। मुरली धर जो मुरिके, मुरली जो बजा वही। बंशी इतनी प्रेममयी है कि लालजू जब अधरों में धरते हैं तो उसका वजन नहीं सह पाते, ग्रीवा टेढ़ी हो जाती है, कमर भी टेढ़ी हो जाती है, ललित त्रिभंगी तीन जगह से टेढ़े हो जाते हैं। रसमयी वंशी का भार अधरों पे पड़ा तो महाराज ललित त्रिभंगी, वो रूप और कहीं नहीं मिलेगा। ये वृंदावन का रूप है, कहीं नहीं मिलेगा, द्वारिका में नहीं मिलेगा, मथुरा में नहीं मिलेगा, विग्रह विराजमान उन्हीं के सब है। लेकिन ये रूप यहां बंशी, ये है बंशी का क्षेत्र वृंदावन, सुदर्शन का द्वारिका मथुरा, वहां

मृग वाहन चंद्रमा भी चलना रुक गया, थकित हो गया। चंद गति मंद भई निरख छवि कान हो।

लाडली जू, बिल्कुल जैसे नंद नंदन बंसी बजाते हुए वो सखी वैसे ही बंसी बजा रही। उनकी बंसी ध्वनि सुनकर वर मोर चकोर किशोर मरालन मंडली, कहीं मोर मंडली, कहीं है हंस मंडली, सुख सारिका को ये पक्षियों के झुंड उनको आसपास घेरे हुए, मानो मुनि व्रत धरे कपोती कोकिला कीर, मानो मौन व्रत धारण करने वाले सब परम हंस विराजमान हो, ऐसे चकोर की भांति देखते हुए सब पक्षियों की मंडली विराजमान, और वो अपने अधरों में बंसी बजा रहे। हमें तो देख के ठीक ऐसा अनुमान होता है जैसे नंद नंदन ही हो। वैसे किशोर उन्हार श्री नंद किशोर की, क्योंकि अखियां बड़ी सुख देनी पैनी कोर की। बिल्कुल नंद नंदन जैसी आंखें हैं वैसे ही उनकी चलन चितवन, वैसे ही बंसी और वैसा ही प्रेम। हमारी प्रार्थना है कि आप चल के खुद देख लो कैसी वो आपकी आराधना करते, समझ पाए। सखी श्री जी को प्रेरित करती पधारो लाडली जी, वो आपके, वो हमारा परिचय, हमको लाडली जी का परिचय, हमारा लाडली जी को परिचय, ये काम ये गुरुदेव रूपी सहचरी आचार्य रूपी सहचरी करती श्री जी से हमारी स्मृति, वो एक है आपका, उनको हमारी तरफ आकर हमारे चित्त को लाडली जी की तरफ, इसीलिए रे मन रसकन संग बिन रंचना उपजे, कहो कृपा उपजे कई भांति बोले रसिकन संग फिरो दिन राती। श्री जी से कहा कि हमारी प्रार्थना है आप चल के खुद देख लीजिए।

कीजिए। अगर आप चलेंगे ना तो उससे बहुत नेत्रों में सुख मिलेगा, क्योंकि आपको प्रतिमा के यहां जब आपको साक्षात देखेंगे तो कैसा लगेगा, और आपको भी सुख मिलेगा क्योंकि वो आपके विशेष प्रेम में मत वाली है। जब आप देखोगी तो आपको सुख मिलेगा, और जब आपको वो देखेगी तो उनको सुख मिलेगा। चलो प्रिया जी, बड़ी कोमल चित लाडली जी, बहुत लाडली जी, लाडली जी, बस कोई है ही नहीं, कोई नहीं, प्रभु भी नहीं आप। इसीलिए तो पता नहीं कौन सा तत्व सी किशोरी जो है, किसी के परिचय का नहीं है आज तक। लाल जो परिचय नहीं जान पाए हमारे, आप ऋषि मुनियों की तो बात जाने, दुआ दिनंत बिहार करे तो लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। स्वामी जी महाराज श्री हरिदास जी कह रहे कि प्यारी जो जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागत, तैसो भ्रम होत देख्यो न कबहूरी। आज तक पहचान नहीं हो पाई, कैसे कोई जानेगा इस महा युगल सरकार प्रेमिकों की, आज तक पहचान नहीं हो पाई प्रिया प्रीतम में। आज तक दुआ दिनंत बिहार करे तो लाल प्रिया में भई ना चिन्हारी। प्रतिपल ये नए प्रेमी है, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगी, इनको नयो नेह नव रंग नयो रस नवल श्याम ब्रशुभान किशोरी। प्रतिपल नवीन नव किशोर श्री जी इतनी कोमल चित्त है, बस उसी कोमल चित्त की वृत्ति को गुरु कृपा से समझ के ऐसे गए भगवत प्राप्ति तुम। अगर करोड़ों बार होनी होती तो भी सस्ती थी यार, हमारी महारानी जी के दरबार से सुनो तो भगवत प्राप्ति तो हमारे घर की जेब की बात है। ये केवल महारानी जी के ही बल पर है, किसी साधन बल पर ऐसा नहीं। अगर साधन बल पर सुनना है तो भगवान विश्वनाथ जी के रंग में रंगे हुए वेदांत दर्शन से सुनो तो कांप जाओगे कि क्या किसे कहते हैं मोक्ष, किसे कहते हैं अखंडानंद, कांप जाओगे भैया हम नहीं चल पाएंगे। और यहां ऐसे लगे चलने की बात कि हम तो दौड़ के चले जाएंगे श्री जी के पास पक्का, क्योंकि जैसे हरिवंश परम कोमल चित, परम कोमल जीव ही

कहा। श्री जी को क्या हुआ, रोमांच हो गया, कोई हमें इतना प्यार करता है। राधा राधा बोल, श्री जी के अश्रु चल रहे, श्री जी के कैसे तुम्हें बताएं कितना वो, अरे प्रेम मूर्ति है लाड, कोई राधा राधा बोल रहा है, कोई हमारी प्रतिमा की सेवा कर रहा है। ये जो आप लोग भोग लगाते हैं, नाचते हैं, आरती करते हैं, निहाल हो गए महारानी जी के सामने, मैं किसी और की नहीं सुनना है, श्री जी देख रहे हैं, एक एक पल देख रहे हैं। बात सुने रोमांच किशोरी के भयो, इतनी प्रेम विवशता हुई कि पास में खड़ी सखियों ने संभाल लिया, गले का हार जैसे ऐसे सब सखियां प्यारी जी को बहुत प्यार करती, सखियां प्यारी जी बहुत, पलकन को जैसे अधिक पुतरिन सोमति प्यार, ऐसे लाडली लाल के छिन छिन चरण संभाल, अति सुकुमारी लाडली पी किशोर सुकुमार। ये वृंदावन है, ये वृंदावन का प्रेम है, सखियों ने संभाला। किस बात में, कोई राधा राधा कह रहा है, कोई हमारी प्रतिमा का पूजन कर रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, श्री जी कैसे, श्री जी

मोती जन प्यारी जू के नेत्रों से आंसू गिरते जा रहे हैं, जैसे मानो मोतियों की वर्षा। कोई राधा नाम ले रहा, मेरे को पुकार रहा है, परम कोमल चित लाड़ी परम। मदन टेर के बाबा का जो चरित्र आता है तो उन्होंने तो यही कहा ना कि लाडली लाल के संग में आप भी कठोर हो। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे, इतने वर्ष हो गए वृंदावन वास करते, आंखों से अंधा हो, पूरा जीवन हो गया आपके चरणों में, आज तक आपको करुणा नहीं आई, मुझ दीन पर दया नहीं आई, आपके दरवाजे में पड़ा राधा राधा पुकार रहा हूं। उनको क्या पता कि सामने युगल सरकार प्रतिपल रहते हैं। लाडली जी नहीं रोक पाए, नजदीक जाके कहा, बाबा ये तू कैसे कह रहे हो कि लाडली जी कठोर हो गए। तो उनका संग दोष चढ़ता है ना, लाल जी कठोर हृदय के हैं इसलिए संग दोष से कठोर, ऐसे तो पड़ी कोमल। नहीं नहीं मैं कठोर ना है। लाल जी का भेद ही खोल दिया, हम तो केवल दूर से रसा लाडली जी। वैसे लाडली जी ने बाबा के नेत्र छुए, दिव्य ने देखा युगल सर चरणों में। लाडली जी से कहा, पहला कार्य करो मेरे को अंधा करो, आंखें खुली तो आपको देखा और देखना नहीं, बस अब तुरंत हमारी आंखें हटाओ, बस यही रूप में पधारे श्री जी की। बड़ी करुणामय सरकार, देखो कोई मेरा नाम ले रहा है, कोई मेरे लिए रो रहा है, मेरी सेवा कर रहा है। तो देखो प्रेम चले भरी नयन मैन रस में, स्वामिनी जी के आंखों से अश्रु टपक रहा है और कुंजों में जैसे मोती बिखेरते हुए जा रहे हो ऐसे अश्रु गिरते जा रहे, और चपल चले शीघ्रता ऐसा हम सबके प्रति उनका प्यार है, ऐसा अपना समझना। बस एक ही कमी है कि हम अपनी ममता को अपने स्नेह को बांटे हुए, नहीं तो जिस दिन मुड़ोगे आप इधर ना, आप खुद देख लेना कि श्री जी का प्यार क्या है। उन्हीं के प्यार से कहीं कुछ प्यार दिखाई दे तो उन्हीं के प्यार का अंश है।

गजगामिनी। गजगामिनी प्रिया जो मतवाली चाल से सखी के कांधे पर अपनी भुजा पधराए हुए हंस गति से चल रही, आगे आगे सखियां लताएं निवारती जा रही, जो वृंदावन के पशु पक्षी दर्शन के लिए भाग की मंडली सहित आ रहे उनसे रास्ता करा। वाम करें इतमाम लिए छवि की छड़ी, फूलों की छड़ी लिए हुए हटाती जा रही है। लताएं देख रही प्रिया जो आ रही तो ऐसे वो नृत्य करती कि सब फूल बिछ जाते, मानो लताएं अपने पुष्पों से श्री लाडली जी के चरणों में पावड़े बिछा रही। महारानी जी गजगामिनी जी पधार रही हंस गति से।

सभी पहुंची उधर सेवा परायण नूपुरों की ध्वनि सुन करके देखा हो जिनकी प्रतिमा वही स्वामी जी धारण नेत्र लाडली जी के नेत्र दो चकोर दो चंद्रमा दो वल पंकज दो सखियों ने देखा

नहीं। नेत्रों को देखकर युगल सरकार की उस पर सखियां गुलाल उड़ा रही हैं। सी लाडली जो देख के उनकी इस अनुराग को ऐसे प्रेम में विथकित हो रहे, व्याकुल हो रहे। कीरत की बिटिया विथकी छवि देख के सखी अखियन की पुतरी पुतरी भई पेख गए। आप ध्यान से सुनिए, आप जो भोग लगाते हैं उसमें जो आप प्यार प्रकट करते हैं ना, प्यारी जू बोलिए, प्यारी जू सीधे प्यारी जू पा रहे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ये बस अंदर से आप श्री जी की सेवा में हैं, बस ध्यान रखो। ये जो महल रचना करते हो, कुंज की जो भोग रचना करके भोग पवाते हो, जो आरती करते हो, जो दुलार करते हो, ये लाडले देख रहे हैं। बस इनका देखना ही हमारे लिए काफी है।

कि श्री जी ने कहा कि सखी हमारे कोई बहुत पुण्य होंगे जिससे हम तुम्हारी जैसी उपासिका का दर्शन कुंजों में पाया। ऐसा प्रेम राधा नाम से, ऐसा प्रेम राधा रूप से। तुम्हारा नाम क्या है?

क्या नाम है आपका, किस गांव से आई हो और मेरी इस मानसरोवर की कुंज में क्या कामना रखती हो जो ऐसी उपासना कर रही हो। श्री लालजू महाराज सहचरी वपु है, उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा जू है। श्यामा जू तो मेरा नाम है, ये श्यामा जू तो। और नंदगांव से आए हो, आप जानते हो नंदगांव, श्री ने कहा जानते हो, पर पूरे ब्रज में श्यामा जू तो मेरा ही नाम है। तो ये ऐसे ही हैं, इनमें पता ही नहीं, खुद को पता नहीं कि इनमें कौन श्यामा जू है कौन श्याम जू है। श्याम रंग श्यामा रंगी, श्यामा के रंग श्याम, जैसे दो शीशी में एक ही रंग भर दे ऐसे ही दो देह केवल है, वही एक परम रस है। तो कभी प्रिया जू पुकारने लगती हैं, हा प्यारी जू आप कैसे रुस गई मान कर गए, तो लालजू को लगता है ये तो हमारी बात बोल रहे हैं। अब प्रिया जू भाव में प्रीतम के हैं बुला रहे हा प्रिया, कभी कभी लालजू कहते हे प्रीतम हे प्यार। तो सखिया यही नहीं समझ पाती कि लाड़िलों के हृदय में चल क्या रहा, बड़ा एकांतिक प्रेम है। उन्होंने कहा मेरा नाम श्यामा, मैं नंदगांव की हूं और आपकी अनन्य भक्त हूं। यह शब्द बहुत प्यारा शब्द है, आपकी अनन्य, बस इससे सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए बस एक ठसक ले आइए हमारी भोरी सखी के लिए, लाडली जी के लिए, मैं आपकी हूं। बस देखो ना महाप्रभु कह रहे यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा, मुझे कोई परवाह नहीं, नर्क भेज दो या कहीं भी जन्म दे दो, बस महारानी जो आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में स्फुरित रहो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराज। क्या फर्क पड़ता है, जहां प्यारी जो वहां निकुंज ये कहीं भी भेज दो, नर्क स्वर्ग अपवर गया आस नहीं त्रास है, जा राखो ता रहो मान सुख राशि, क्या फर्क पड़ता है। मैं आपकी अनन्य भक्त हूं। अब सब कुछ छुप सकते हैं, चितवन प्रेमी की बचाई नहीं जा सकती, वो अपनी पहचान बता ही देती है चितवन। जैसे श्री सेवक जी महाराज जब राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए आए तो बंचन महाप्रभु ने पहले आदेश कर दिया था, जिस दिन सेवक जी वृंदावन में आएंगे सब भंडारा लुटा देंगे राधा वल्लभ लाल का, ऐसे महाप्रेमी के आगमन पर। सेवक जी को लगा ऐसा नहीं होना चाहिए, श्री जी की सेवा की सौंद नहीं लुटानी चाहिए, तो छुप करके ऐसे वेश ढक करके आए, और जब नेत्र मिलाए तो राधा वल्लभ लाल जी के नेत्र चंचल हो गए। महाप्रभु गोस्वामी श्री बनचंद जो सेवा में थे उन्होंने कहा श्री जी के नेत्र चंचल हो गए, कोई ऐसा प्रेमी आ गया। तो नीचे जब देखा तुम ऐसे वस्त्रों से ढके हुए, बोले सेवक जी ही होंगे। जब निज जनों को भेजा कि आप दामोदर दास सेवक जी है, महाप्रभु आनंद नेत्र से पता चल जाता है कोई है, निज जन है कोई। प्रेम उशासन लेत मिले दो प्रेम शो, मानहु श्याम चुनी सुबनी खचहेम सो।

को तुम राधा नाम जपक राधा रूप उपासक ऐसा प्रेम आओ हमारे हृदय से लोगो लाडली जी ने अपने हृदय से लगा। अब हृदय से लगने पर थोड़ी छुपाया जा सकता है क्योंकि हृदय की गति प्रेमियों की अलग होती है। ये धड़कन तो बेकार धड़क रही है। जैसे हृदय मशलता रहता है प्रतिपल, कोई मसले ऐसे प्रेम की पीड़ा उत्पन्न होती रहती प्रेमियों, और जब उनके हृदय मिलते हैं तो वही हृदय जानता, दूसरा नहीं जानता। लालजू का हृदय से लगाना और नेत्र में नेत्र मिलना, सखियों से श्री जी ने कहा और कोई नहीं, ये तो प्रीतम है, ये प्रीतम ही हम समझ गए। इतना तो अनन्य धर्म का पालन प्रीतम ही कर सकते हैं।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: खुद को महत्व देना शुरू कर देंगे। दुनिया आपकी कद्र करना शुरू कर देगी। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी जी के विचार।
1: आप में से कितने हैं जो अभी किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं? ऑलमोस्ट सब लोग आप किसी न किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, इनका ये कहना है कि मार्केट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो फिर आप एक इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्यों एंटर कर रहे हो, जहां पर कि पहले तो एंट्रेंस को क्रैक करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में अच्छी जगह पर जॉब मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, उसके बाद में उस जॉब को रिटेन करना भी आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई एम जस्ट क्यूरियस टू नो। कोई है आप में से जो बोलना चाहेगा, जवाब देना चाहेगा?
2: रिस्क नहीं होता बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। तो रिस्क जहां पे आ जाते हैं ना, तो वो चीज उसमें भी काफी वो हर्ट जाता है। और अगर जिस चीज में रिस्क ना हो उसमें सब सपोर्ट करते हैं, फिर हम सोचते हैं सब सपोर्ट ही करें तो ठीक ही होगा, यहाँ पे जा रहे हैं तो हम।
1: इन्होंने कहा कि हम एंट्रेंस के लिए इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर उस पाथ पर कोई रिस्क नहीं होता है। क्या ये सच है झूठ है? कितने एग्री करते हैं इनकी बात से? तो जब रिस्क है और बहुत रिस्क है, क्योंकि लाखों बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ का होता है, ये बात हमको पता है, तो फिर क्यों इस पाथ को आप चुनते हो जब यहाँ पे रिस्क भी है और कोई श्योरिटी भी नहीं है? क्यों इस पाथ को चुनते हो, क्यों कुछ और एक्सप्लोर नहीं करते हो?
3: सर पैसे की बात करेंगे, रिस्क की बात करेंगे, तो जितना बिजनेस नॉर्मली स्टार्ट किया जाता है उससे कई गुना ज्यादा पढ़ाई में लग जाता है।
1: कितना लग जाता होगा, आप में से कोई बताएगा जो लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है?
4: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है सर।
1: कोचिंग की फीस 6-7 लाख होती है?
4: जी सर, फिट जी में सर 6-7 ले लेते।
1: नहीं नहीं, 6-7 लाख थोड़ी होती है।
4: यस सर,
1: मुझे आइडिया नहीं है, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मतलब एवरेज फीस क्या होती है कोचिंग की, एक साल की?
4: 2-3 लाख सर।
1: 2-3 लाख रुपए साल की, तो मतलब 2 साल की हो गई 5-6 लाख रुपए। तो 6 लाख लगाने के बाद में होने की क्या पॉसिबिलिटी है और नहीं होने की क्या पॉसिबिलिटी है?
4: 99% है कि तो नहीं होगा सर।
1: 99% है कि नहीं होगा?
4: यस सर।
1: तो रिस्क तो बहुत ज्यादा है यहाँ पर बॉस, ये तो बहुत ज्यादा है। सब एग्री कर रहे हैं इनसे कि 99% है? या अगर ऑप्टिमिस्टिकली भी देखा जाए तो 90% है कि नहीं होगा, 10% है कि हो जाएगा, अगर हम सिर्फ उन्हीं की बात करें जो बच्चे सीरियस हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बच्चा जो कोचिंग ले रहा है वो सीरियस भी हो पढ़ाई को लेकर के। तो मैं कह रहा हूं वो बच्चे जो ब्रिलियंट हैं, एफर्ट भी पूरा कर रहे हैं और डिजर्व भी करते हैं, तब भी जो पॉसिबिलिटी है आपके सिलेक्शन होने की अच्छी जगह पर, वो 10% है। 90% है कि नहीं होगा? और जब नहीं होगा तो क्या होगा, व्हाट इज योर बैकअप प्लान?
4: प्राइवेट कॉलेज सर।
1: तो वहां भी पैसा लगेगा या वहां पे फ्री में पढ़ाई है?
3: पैसा लगेगा।
1: कितना पैसा लगता है 4 साल का, नियर अबाउट कितना पैसा लग जाता है? 20 लाख रुपए। अच्छा, मेडिकल का तो 80-90 लाख है, बट अगर इंजीनियरिंग की भी बात करी जाए तो 20 लाख रुपए तो मान के ही चलो, तो नियर अबाउट आपने 20-25 लाख रुपए तो लगा दिया अपने घर वालों का। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड से नहीं हो, मेजोरिटी ऑफ यू। आप में से कितने हैं जो मिडिल क्लास से हैं? हाथ ऊपर करिए। मेरा मिडिल क्लास वाला सेशन देखा है आप लोगों ने?
3: यस सर, यस सर, देखा।
1: अगर वो देखा होता तो अभी हाथ ऊपर नहीं करते। मिडिल क्लास मतलब अगर मैं सिंपल वे में पूछूं तो आप में से कितने हैं जिनकी जो हाउस होल्ड इनकम है वो साल की 12 लाख से ज्यादा है? अब हाथ ऊपर करो। इसको मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं, आप में से कितने हैं जिनके घर वालों के पास में 20-30 लाख रुपए स्पेयर है, मतलब अकाउंट में पड़ा हुआ है, अगर वो चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है? हाथ ऊपर करो। इसका मतलब आपको या तो लोन लेना पड़ेगा या फिर आपके घर वालों को लोन लेना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं जहां पे ये निकल करके आया है कि 50-60% जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस से इंजीनियर्स निकलते हैं, दे आर अनएम्प्लॉयबल, मतलब उनकी इतनी स्किल ही नहीं होती कि उनको एम्प्लॉय किया जा सके, यानी कि उनको वो काम मिल ही नहीं सकता जिस फील्ड से उन्होंने पढ़ाई करी है। या तो उनको अपनी फील्ड चेंज करनी पड़ेगी या अपने आप को डाउनग्रेड करना पड़ेगा। तो 25 लाख की जो आपने इन्वेस्टमेंट करी उसको रिकवर करने में कितने साल लगेंगे?
3: 9-10 years।
1: 25 लाख रुपए रिकवर करने के लिए 25 लाख रुपए जोड़ना पड़ेगा।
3: yes.
1: और जोड़ करके विद इंटरेस्ट उसको वापस करना पड़ेगा।
3: इंटरेस्ट भी देना है क्या?
1: इंटरेस्ट भी देना। नियर अबाउट हम मान करके चलते हैं, इन द बेस्ट केस सिनेरियो आपको 20 साल लगेंगे 25 लाख रुपए का जो लोन है उसको चुकाने के लिए या अपने घर वालों को वापस करने के लिए, मतलब 40 की एज तक जा करके तो आप वो पैसा वापस करोगे। तो रिस्क मेरे हिसाब से कम तो नहीं है। और ये सिनेरियो है कि अगर आपकी जॉब लग गई तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी कम नहीं है हमारी कंट्री में। ये भी हो सकता है कि जॉब ना लगे तो क्या करोगे? अ सिंपल जेन्युइन क्वेश्चन।
5: 25-30 लाख देने के लिए भी पेरेंट्स ही मोटिवेट करता है। उनकी ही जिद होती है कि हमें ये करना चाहिए। वही कहते हैं यूपीएससी निकालो, वही कहते हैं नीट निकालो, वही आईआईटी जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, उनकी ही जिद होती है और सोसाइटी की और रिलेटिव्स की जिद होती है कि हम जाएंगे तो वो हम ही हैं करोड़ों में से एक। तो इट्स लाइक हमारी विश तब भी नहीं होती है।
1: ये और ज्यादा गड़बड़ हो गई है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार को ये होता कि आपके अंदर से होता कि मुझे ये क्रैक करना है, फिर आप किसी एंट्रेंस के लिए जाते तैयारी करने के लिए, तो फिर भी ये पॉसिबिलिटी होती जिसकी मैं बात कर रहा हूं। लेकिन आपके पेरेंट्स ने फोर्स करके या आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके आपको भेज दिया है। अब पॉसिबिलिटी क्या है आपके क्रैक करने की? अब तो आपका मन ही नहीं है वो काम करने का, करना पड़ रहा है। एक है कि आप खुद अपने अंदर से मोटिवेटेड हो, बाहर से किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की आपको जरूरत नहीं है, तब फिर भी होने की पॉसिबिलिटी है, बशर्ते कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी हो उसको क्रैक करने की। लेकिन अगर आपका खुद का ही मन नहीं है लेकिन पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, उसकी वजह से आप जा रहे हो, तो वहां जाकर के क्या करोगे? बहाने ढूंढोगे क्लास बंक करने के, टाइम पास करने के तरीके ढूंढोगे, रात को बैठ करके वीडियो गेम्स खेलोगे या क्या करोगे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, आपकी हंसी से पता लग रहा है। घर वालों को तो ये लगता है कि मेरा बच्चा तो पता नहीं क्या कर जाएगा, अगला सुंदर पिचाई यही है, हमारे घर में ही पैदा हुआ है। लेकिन आपको तो पता है ना अंदर से आप क्या हो, तो इसका मतलब क्या है? वो पैसा पूरी तरीके से बर्बाद होने वाला है। बड़ा नुकसान किसका है, आपके पेरेंट्स का या आपका? क्यों, आपका क्यों है, जवाब दो।
6: सर हमारे लिए टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है पैसों से भी, क्योंकि अगर हमारा पैसे हम पेरेंट्स ने लगा दिए और हमने टाइम भी वेस्ट कर दिया, बट हमारा जो टाइम चला गया वो टाइम अब नहीं आने वाला।
1: तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, दैट इज वन। टू, फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब जा करके आपको कोई भी जॉब होगी, कैसी भी जॉब होगी,
6: लेनी पड़ जाएगी,
1: करनी पड़ेगी, इतना प्रेशर आ जाएगा पीछे से। तो नुकसान अल्टीमेटली किसका हुआ पूरी लाइफ के लिए?
6: हमारे ही हुआ।
1: आपके पेरेंट्स का तो पैसों का नुकसान हुआ, आपकी तो लाइफ ही खराब हो गई।
6: yes.
1: तो अब बताओ इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, लगाओ दिमाग। और अभी तो मैंने एआई के बारे में तो बात ही नहीं करी है कि एआई का एजुकेशन के ऊपर क्या असर आने वाला है और जॉब मार्केट पे क्या असर आने वाला है, उसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं करी।
5: सर इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, मुझे जो लगता है हर जगह आपको ट्राई करना चाहिए। जैसे मैं खुद बताऊं तो मैं 10 ईयर्स जब था 10 साल का, तब मैं YouTube ट्राई किया, फिर मैं गेमिंग में एंटर किया, फिर मैंने e-sports भी खेला, फिर मैं एक सर प्रोफेशनल लेवल अंडर 16 क्रिकेट करियर भी चूज किया था मैंने, वहाँ पर सर ड्यू टू फिजिकल इश्यूज वहाँ पर मैं नहीं कर पाया। बाकी सर अब मैं आया हूँ इस डिजिटल मार्केटिंग के एरा में, यहाँ पर सर 3-4 सोर्सेज ऑफ इनकम ऑलरेडी मैंने बिल्ड कर लिया, जिससे कि मेनली मेरा 50-1 लाख रुपीज महीने का जनरेट होता है।
1: अभी आपकी एज कितनी है?
5: 15.5 ऑलमोस्ट लाइक 16 राउंड फिगर।
1: 16 साल?
5: यस सर।
1: तो आपके घर वाले खुश है?
5: बिल्कुल खुश होंगे सर, 16 साल का लड़का घर में सर 1 लाख रुपए अगर महीने का दे रहा है तो खुश तो होंगे।
1: लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है, प्लीज डोंट माइंड इट, कि अभी ये जो क्विक आपको सक्सेस मिली है ना, इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये मत समझने लग जाना कि मैं 50,000 रुपए 1 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूँ, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं है। आज आप कमा रहे हो, कल कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ऑलवेज कीप योर फीट ऑन ग्राउंड एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर All kinds of situations. जो आप कर रहे हो वो सही है।
5: सर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मैंने टारगेट लिया कि मुझे मंथली का 1 लाख करना है, तो वो मैंने एक बार दो बार टारगेट को अचीव कर लिया, बट सर जब मैं नेक्स्ट अब टारगेट को अपना बड़ा करता हूँ, जब उसको इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, तो सर वो कम्फर्ट जोन वाली फीलिंग आने लगती है, मन में ये होता है कि अरे पहले भी तो किया है, अब भी कर लेंगे, तो उस चीज को मैं कैसे टैकल कर सकता हूँ सर?
1: आप कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का क्वेश्चन पूछ रहे हो, यहाँ पे बाकी लोग उल्टी कर देंगे, उनके मुंह से झाग निकलने लग जाएगा, क्या बोल रहे हो आप? ये बेचारे अभी अपना पता नहीं कितने साल कितनी तैयारी करने वाले हैं, उसके बाद जा करके कोई पैकेज लगने वाला है, और आप कह रहे हो कि सर 1 लाख रुपए में मैं कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ। सर सर कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं ना 2 लाख रुपए अचीव कर जाऊं। बस भाई बस, इतना लालच नहीं करते, बहुत है अभी इस एज के हिसाब से, आगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी अपने आप ही रास्ते खुलेंगे, प्लीज हैव अ सीट। बट ये बात मेरी हमेशा याद रखना, ये जो टेम्पररी सक्सेस है इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, गड़बड़ हो जाएगी।
5: Sure,
1: तो एक सोल्यूशन हमको दिखा यहाँ पर, अब ये सोल्यूशन कितना जेन्युइन है कितना नहीं है आई कांट कमेंट ऑन दैट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे, बट मैं ये कह सकता हूँ विद कॉन्फिडेंस एंड विद माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड कि ये पॉसिबल तो है। इनके साथ ये हो रहा है नहीं हो रहा है आई एम नॉट श्योर, बट ये पॉसिबल तो है।
6: मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क के बारे में जो भी बताया, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि चलो हम भी चलते, इतना अच्छा पैसा है, जाते हैं वो कुछ पैसे लेते हैं हमसे वही 1-2 हजार कि हाँ हम आपको सिखाएंगे ये करेंगे वो, फिर हमें वो 3-4 दिन की ट्रेनिंग देते हैं और उसमें ना कई लोगों को नहीं पता चलता, बट वो ना पूरे माइंड को हमारे इधर से उधर कर देते हैं, हमें बहुत सारा पैसा दिखाते हैं।

0: कौन सा ज्यादा ही लग रहे हैं। फिर उन्होंने फोर्थ डे बताया कि आपको 50,000 की शॉपिंग करनी है, फिर आप एक लेवल पे आओगे, उसके बाद आपको लोगों को पकड़ने। अब लोग कहाँ से पकड़े वो भी सिखा रहे हैं कि अपने दोस्तों को कॉन्टेक्ट करो, इंस्टाग्राम पे लोगों को मैसेज करो। मैंने कहा लोगों को तो मैसेज करेंगे, अब कौन कैसा हमें क्या पता। फिर कहेंगे आप ऑटो से जाते हो, वहाँ पे हाय हेलो करो, उनसे रिलेशन बनाओ और उनको उसमें घुसाओ।
1: ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है, इस बात को लिख करके रख लो। तो चैलेंज ये नहीं है कि पैसा कमाया जा सकता है या नहीं कमाया जा सकता है, चैलेंज ये है कि जेन्युइन कौन है और फ्रॉड कौन है। पहले तो एक बात को मेरी अच्छे से समझ लो कि जो आने वाले 10 साल हैं उसमें कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले 100 सालों में नहीं हुआ है। और जहां तक आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर आपके रिलेटिव्स हैं या आप खुद हो, जहां तक नहीं देख पा रहे हो, एआई की दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है विच इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन। डेली कुछ नया हो रहा है और इतनी तेजी से हो रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आने वाले टाइम में बहुत सारी जॉब्स जो आज की डेट में है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी, इस बात को समझ लो अगर समझ सकते हो तो। अब मैं बताता हूं मैं फ्यूचर को किस तरीके से देख रहा हूं, या फिर अगर मैं आप लोगों की जगह हूं तो मैं क्या करूंगा। नंबर वन, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये जो टाइम है ना आप लोगों का, ये सबसे प्रेशियस है पूरी लाइफ में। अभी आपका दिमाग खुला हुआ है, आप कुछ भी नया बड़ी जल्दी सीख सकते हो। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, आपके लिए कुछ भी नया सीखना, या नया सीखना तो बहुत दूर की बात है, नए आइडियाज को एंटरटेन करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही तो जाकर के अपने पेरेंट्स को देख लो, उनसे जाकर के किसी भी नई चीज के बारे में बात करो, वो एकदम से घबरा जाएंगे इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, और वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब बेकार होता है, बिना समझे। मैं ठीक कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, कितने मेरी इस बात से एग्री कर रहे हैं। तो ये आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड है, डोंट वेस्ट इट। अगर आप ये सोच रहे हो कि पास में जैसा होता आया है कि मैं ये डिग्री लूंगा या लूंगी, उसके बाद में मेरी यहां पर जॉब लग जाएगी, उसके बाद में लाइफ सेट है, तो इस गलतफहमी से जितनी जल्दी हो सके बाहर आ जाओ। आने वाले टाइम में जो मीडियोक्रिटी है उसके लिए जगह नहीं बचने वाली है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो बहुत सारे लोगों की जॉब जाने वाली है। कौन होंगे वो लोग? जो मीडियोकर है इन द सेंस कि वो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हैं टाइम के साथ साथ में, कि 5-10 साल पहले बस कॉलेज से एक डिग्री ले ली है, अब जॉब लग गई है, अब वो कहते हैं लाइफ सेट है। ये जिनकी लाइफ सेट है ना, उनकी लाइफ ऐसी हिलने वाली है कि उन्हें खुद भी नहीं समझ आएगा कि हुआ क्या है। कितने मेरी इस बात को मानते हैं कि अगर आप अपने काम के लिए, जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए, चैट जीपीटी सिर्फ एक टूल नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, अगर उन टूल्स को आप यूज करते हैं तो अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बहुत बढ़ा सकते हैं। तो जब आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो 10 गुना से, तो 10 लोगों का काम एक इंसान कर सकता है। तो अगर मेरी एक आईटी कंपनी है और वहां पर 1,00,000 लोग काम करते हैं और वो काम 10,000 लोग कर सकते हैं, तो मैं बाकी 90,000 का क्या करूंगा? निकाल दूंगा। तो 90,000 लोगों का क्या होगा? या तो अपनी स्किल्स को उनको अपग्रेड करना पड़ेगा या अपनी लाइन को चेंज करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं देखो मेरी इस बात को ना गांठ बांध लो, आने वाले टाइम में मीडियोक्रिटी नहीं चलने वाली है, मशीन्स का जमाना आने वाला है, और जिसको मशीन्स को यूज करना आता होगा उसका जो आउटपुट है वो और लोगों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, और वो इंसान कंपनीज के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो, अगर बिजनेस करते हैं तब भी अगर आपको मशीन्स को यूज करना आता है तो आपके पास में एक एज होगा इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर्स। तो आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इससे भाग नहीं सकते, ये तो सीखना ही पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी जगह हूंगा तो मैं क्या करूंगा? अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, नंबर वन। नंबर टू, अपने टाइम को कहां यूटिलाइज करूंगा? जो भी कुछ नया हो रहा है एआई की दुनिया में, वो सब कुछ सीखने के लिए वहां पर अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखूंगा। डेली कुछ नया आ रहा है, नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एग्जिस्टिंग जो एआई एप्लीकेशंस हैं उनमें, और डेली नई नई एप्स आ रही हैं, तो यू नीड टू बी अपडेटेड। आपको ऐसा बनना पड़ेगा कि अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कुछ भी नया डिसरप्शन आ रहा है मार्केट के अंदर, आप फटाफट से उसको सीख जाओ और फटाफट से अपने आप को अडेप्ट कर लो उसके अकॉर्डिंग। जरूरत पड़े तो जब इंडस्ट्री पूरी की पूरी चेंज होगी तो आप अपने आप को बदल दो, अगर ये कर सकते हो। यानी कि अगर आप इन टूल्स को यूज करना जानते हो तो आप सर्वाइव करोगे फ्यूचर में, अगर नहीं जानते हो तो दिक्कत आने वाली है। तो अपनी जो स्पीड है सीखने की कि इस दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो, टाइम वेस्ट मत करो। फालतू का कंटेंट देखने में।

उधर टाइम पास करने में। आप में से कोई ऐसा है जो ये बता सके टॉप 10 AI टूल्स के नाम? कोई है जो बता सकता है? यू हैव नो आइडिया, नो क्लू। तो ये आइदर और के चक्कर से बाहर निकल आओ कि सर हम पढ़ाई करें या बिजनेस करें, दोनों करना पड़ेगा। पढ़ाई इसलिए करनी पड़ेगी ताकि एक बेसिक क्वालिफिकेशन हो तो आपके पास में एज आ जाएगा। कल को जॉब मार्केट में जाओगे तो एटलीस्ट कुछ तो हो दिखाने के लिए, अगर आपको जॉब ही करनी है तो। लेकिन साथ साथ में बिजनेस इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बिजनेस का मतलब क्या होता है? कुछ क्रिएट करना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, यानी पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, कुछ नहीं है, और आपको बोल दिया जाए सर्वाइव करो, क्या कर सकते हो सर्वाइव? अगर कर सकते हो तो कह सकते हैं कि हाँ, अब आप अंदर से एक एंटरप्रेन्योर हो, अब चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो उससे फर्क नहीं पड़ता, आप एक क्रिएटर हो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिएटर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूट्यूब क्रिएटर्स, आई एम सेइंग समवन हु कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक लाइव्स बेटर ऑफ अदर पीपल इन सम वे, जिसके लिए वो लोग पैसा देने को तैयार हो जाए, उसको एक क्रिएटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी आपकी एज में हूं, यानी मेरी एज है मान लो 18 साल, अब मेरे आगे एक चैलेंज है, मैं क्या करूं? जॉब की भी तैयारी करनी है, तो क्या उसको छोड़ दूं? अब वो मेरी अपनी कॉल है कि मैं छोड़ूंगा या करूंगा, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा छोड़ने के लिए, नंबर वन। बट एक बात पक्की है कि मैं साथ साथ में कुछ ना कुछ तो और करूंगा, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से उस पर डिपेंड हो गया। जो एजुकेशन की पूरी जो डेफिनेशन है वो चेंज होने वाली आने वाले टाइम में। एजुकेशन मतलब क्या? कि कुछ आपने सीख लिया है, अपने माइंड के अंदर भर दिया है और कुछ कर रहे हो। आने वाले टाइम में वो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कौन वो लोग होंगे जो बचेंगे आने वाले टाइम में, और कौन वो लोग हैं जो नहीं बचेंगे। इफ यू कैन कनेक्ट दी डॉट्स, यानी अलग अलग चीजों को देख करके आप किसी तरीके से कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हो जहां से आप पैसा कमा सकते हो और सर्वाइव कर सकते हो फाइनेंशियली, इंडिपेंडेंटली, अपने बेस पर, तो फ्यूचर आपके लिए है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मैं तो सिर्फ इस डिग्री के बेस पे सर्वाइव कर सकता हूं, तो आने वाले टाइम में उस डिग्री की इतनी वैल्यू नहीं रह जाएगी। इस स्किल की वैल्यू होगी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि कुछ अलग अलग हो, उसको जोड़ दिया जाए और कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाए कि जहां से पैसा कमाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, आज हर दूसरा इंसान यूट्यूबर बनने के बारे में सोच रहा है। तो यूट्यूब में जो सबसे हाई पेइंग जो सेक्टर है वो है BFSI सेक्टर, यानी बैंकिंग, फाइनेंस, सिक्योरिटीज एंड इंश्योरेंस। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे टूल्स ढूंढूंगा जहां पर मैं ऑटोमेटिकली कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ वीडियोस बना सकूं, और पहले मैं YouTube पे जाकर के देखूंगा कि कौन सी ऐसी वीडियोस हैं जिसके ऊपर बहुत व्यूज आ रहे हैं या जिसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है Google पे और YouTube पे। क्योंकि अगर Google पे ज्यादा है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि YouTube पे भी ज्यादा होगी। अब मेरी इस थॉट प्रोसेस को समझना, आइडिया को मत पकड़ना, गड़बड़ हो जाएगी। आइडिया को पकड़ोगे फिर वही बंद दिमाग की तरह कॉपी करने लग जाओगे, लेकिन अगर थॉट प्रोसेस को समझोगे तो कुछ भी कर जाओगे। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, एक वेबसाइट है बाय द नेम ऑफ pictory.ai, जहां पे आप टेक्स्ट इनपुट करोगे और वो उसको वीडियोस में कन्वर्ट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। ये काम करने में यूजुअली 2 से 4 दिन लगते हैं। तो क्या यहां से आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो कह सकते हैं कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप एक क्रिएटर हो, आप क्रिएटिव हो। तो एक दिन में कितनी वीडियोस बन सकती हैं? बहुत सारी। लेकिन वीडियोस बनाने से पहले मुझे यह समझना होगा कौन सी वीडियोस ऐसी हैं जिसके वायरल होने के चांसेस हैं। तो पहले मैं यह स्टडी करूंगा लोग सर्च क्या कर रहे हैं गूगल पे और यूट्यूब पे। फिर वो स्टडी करके, फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल आर सर्चिंग फॉर व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड, तो क्या हो अगर इस तरह की मैं वीडियोस जनरेट करूं थ्रू AI? अब मुझे उसके लिए कॉन्टेंट चाहिएगा। कॉन्टेंट राइटिंग स्किल्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मान लो मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूं, मैं क्या करूंगा, ChatGPT पे जाकर के लिख दूंगा What is a mutual fund? What are the benefits of investing in a mutual fund? तो ChatGPT पूरा का पूरा मेरे को टेक्स्ट दे देगा। उस टेक्स्ट को मैं रन करूंगा पायरेसी के लिए कि कहीं किसी तरीके से किसी के राइट्स वॉयलेट तो नहीं हो रहे हैं, ऐसी भी कुछ वेबसाइट्स हैं। तो जब मैंने चेक कर लिया और मुझे ये श्योरिटी आ गई कि किसी के राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे हैं, उस टेक्स्ट को ले जाकर के मैं एंटर करूंगा पिक्टोरी में। वो एक पूरी की पूरी वीडियो जनरेट कर देगा कुछ सेकंड्स के अंदर, जिसको मैं यूट्यूब पे अपलोड कर सकता हूं। लेकिन यूट्यूब अब क्या कर रहा है वो भी मैंने पढ़ा कि वो जो AI वॉइसेस है, जैसे ही YouTube पकड़ लेता है कि इसमें AI की वॉइस है, तो YouTube का एल्गोरिथम उसको या तो ब्लॉक कर देता है या इतना तेजी से प्रमोट नहीं करता है। तो मुझे इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, YouTube म्यूजिक लाइब्रेरी में जाकर के जो YouTube का कॉपीराइट फ्री म्यूजिक है वो निकाल करके उसके बैकग्राउंड में उसको लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, अलग अलग जगह से अलग अलग टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जो बहुत ही कमाल का है और जिसकी मार्केट में नीड है।
अब अगर मैं खुद बैठ करके वीडियोस बनाऊं तो पहले तो मुझे वो स्किल्स एक्वायर करने में कई महीने लगेंगे, कई साल लगेंगे। उसके बाद एक एक वीडियो को बना के डालने में 2-4 दिन 5 दिन 10 दिन लग जाएंगे। अब यहां पर एक दिन में मैं 10 वीडियोस जनरेट कर सकता हूं, यानी YouTube पर मैं 10 अलग अलग चैनल्स ओपन कर सकता हूं। और अगर मैं कंसिस्टेंटली इस काम को पार्ट टाइम बेसिस पे करता हूं अगले एक साल तक, ये नहीं कि 2-4-5 दिन किया, 10 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया तो उसको छोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई में ऐसे करते हो क्या कि कहीं गए किसी कॉलेज में 2-4 दिन को समझ नहीं आया, बेकार है, छोड़ दो? ऐसे नहीं करते ना, 4 साल पता है ना कि वहां पे लगाना है, तो इस काम में भी टाइम लगाना पड़ेगा। तो एक साल तक अगर मैं डेली एक एक वीडियो अपलोड करता हूं अपने 10 चैनल्स पे, तो एक साल में मैंने कितनी वीडियो अपलोड कर दी, 365 × 10 यानी कि 3650 वीडियोस। उसको करने में टाइम कितना लगा, मैक्सिमम 1-2 घंटा डेली। इतना तो आप टाइम कहां खराब कर देते हो, आपको खुद भी पता नहीं होगा। बट इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, या तो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मिल गई तो बहुत बढ़िया है, तो ज्यादा खुश नहीं होना है, एक्साइटेड नहीं होना है कि अब मैं महीने का 50,000 कमा रहा हूं, 1,00,000 रुपए कमा रहा हूं। क्योंकि ये भी हो सकता है कल को YouTube एक नई पॉलिसी ले आए और कहे कि ये जो AI जनरेटेड वीडियोस है इसको हम डीमोनेटाइज कर देंगे, तो कहां गया आपको वो 1,00,000 रुपए महीना, गायब हो गया ना। तो एक्साइटेड नहीं होना, उस पैसे को जोड़ना है और उसको यूज करना है और मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बिल्ड करने के लिए। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा कि यहां से पैसा आएगा, तो उस पैसे को उड़ाना नहीं है, एक्साइटेड नहीं होना है, घर वालों को ये नहीं बोलना है कि अब मैं 1,00,000 रुपए महीने का कमा रहा हूं, मेरे को अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पैर जमीन पर रखने हैं, उस पैसे को जोड़ना है और दिमाग लगाना है कि उसमें रिस्क क्या है, कल को अगर ऐसा होता है तो क्या करोगे, वैसा होता है तो क्या करोगे, वो होता है तो क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूट्यूब का एल्गोरिथम पकड़ लेता है AI जनरेटेड साउंड्स को, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीडियो वहां से बना ली, कॉन्टेंट ChatGPT से मिल गया, पायरेसी चेक कहीं और से हो गया, कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए कैसी नहीं वो आपने और जो सॉफ्टवेयर्स है वहां से पता कर लिया, सर्च वॉल्यूम किसका है किसका नहीं है, प्लस साउंड के लिए आपने क्या किया, 10 मिनट का एक ऑडियो सैंपल अपलोड करना होगा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, वो सीख जाएगा कि आपकी साउंड क्या है। तो अगर आपने ये कर लिया तो अब वो आपकी साउंड है, म्यूजिक यूट्यूब का है, कॉन्टेंट रॉयल्टी फ्री है, अब इन वीडियोस को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर इस तरह से सोच पा रहे हो तो फ्यूचर में आपके लिए जगह है। इसको एक्चुअल में स्किल्स बोलते हैं कि आपने कुछ ऐसी स्किल्स एक्वायर कर ली जो वैल्यूएबल है, हो सकता है आज इमीडिएटली नहीं है लेकिन फ्यूचर में आप कहीं जाओ और वो आपसे पूछे कि अच्छा आप में से कौन है जिसको ये काम आता है, आप कहोगे मुझे आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। मतलब आने वाले टाइम में वो लोग सर्वाइव करेंगे दुनिया में जो कुछ भी कर सकते हैं, जो सिर्फ एक काम कर सकता है, वो पास्ट में रेलेवेंट थे फ्यूचर में नहीं होंगे, क्योंकि वो एक काम आज नहीं तो कल मशीन कर लेगी, फिर आप क्या करोगे। लेकिन वो इंसान जो कुछ भी कर सकता है उसकी वैल्यू क्या होगी। आई होप आज के सेशन से आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, कुछ नया समझ में आया है, कुछ नया सीखा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू एंड प्लेजर टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।

0: सुनना
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: कभी ऐसा फील हुआ है कि आप लाइफ में सब कुछ कर रहे हो, लेकिन फिर भी अंदर से ये सवाल उठता है, मैं एक्चुअली हूँ कौन? करियर, रिलेशनशिप्स, एक्सपेक्टेशंस, इन सब के बीच कभी कभी हम अपनी असली पहचान ही खो देते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे हैं जस्ट टॉक अबाउट इट, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज हम बात करेंगे आइडेंटिटी क्राइसिस पर, एक ऐसी फीलिंग जो आज की फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में बहुत लोग साइलेंटली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बी के ज्योति जी और बी के प्रिया जी, वेलकम मैम।
1: थैंक यू।
0: ओके ज्योति जी, 20s में आइडेंटिटी क्राइसिस इतना कॉमन क्यों हो गया है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है कि 20s में ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो आज व्यक्ति इतना भाग रहा है कि खुद की पहचान के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है। उसने अपनी पहचान वो बनाना चाह रहा है जो लोग उनको चाहते हैं, लोग देखते हैं, जिस तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसकी खुद की आइडेंटिटी क्या है, वो कौन है, उसे क्या चाहिए, ये कहीं ना कहीं व्यक्ति भूलता जा रहा है। जैसे आज ही रिसेंट मैं एक इंसिडेंट बताऊं तो कुछ गर्ल्स से मेरी बात हो रही थी, तो उनसे मैंने पूछा कि आपने अभी 12th पास आउट किया या 10th पास आउट किया है, कुछ ऐसे स्टूडेंट थे, कि आगे आपको क्या करना है। तो उनका जो जवाब था वो ये था कि क्योंकि मेरी सिस्टर ये चीज़ कर रही हैं तो मैं भी ऐसा ही यही सब्जेक्ट लूँगी या ये चीज़। आपकी खुद की चॉइस क्या है, जब ये प्रश्न पूछा तो उनको कुछ नहीं पता था, वो ब्लैंक थे, है ना। ऐसे ही उनकी चॉइसेस क्या हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हैं किसी न किसी से, जिससे होते हैं, जिसका कुछ पल के लिए वो उनके संपर्क में आते हैं, उनके जैसे ही उनकी उनके साथ में दोस्ती बढ़ती है तो लगता है कि हाँ यही चीज़ हमें करियर में करनी है, इससे बहुत बेनिफिट है। और मेन जो आज हो गया है वो है कि मनी ओरिएंटेड, मनी माइंडेड हो गए हैं कि पैसा कहाँ से ज़्यादा आएगा, उस दिशा की तरफ जा रहे हैं और खुद को क्या चाहिए उसको भूलते जा रहे हैं। आपकी गोल आपने कुछ तो डिसाइड किया होगा कि आपकी लाइफ में आपने क्या ऑब्जेक्ट लेकर के चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, तो आप क्या कहेंगे?
0: आरजे
1: बनना है, वो तो आप बन ही गए हैं। फिर अभी और ऑब्जेक्ट क्या है, लाइफ का ऑब्जेक्ट क्या है?
0: आई वॉन्ट टू बी अ काइंड पर्सन,
1: राइट,
0: फॉर एवरीवन।
1: यस, ये ऑब्जेक्ट बहुत कम लोगों को मिलेगा, है ना। कहीं ना कहीं वो ये बोलते हैं कि हमें एक अच्छा, क्योंकि पहला जवाब जैसा आपका आया आरजे, है ना, तो सेम ऐसा ही लोगों का भी जवाब आता है कि कहीं ना कहीं हमें इस पोजीशन को पाना है, इस पोजीशन, लेकिन मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना है या मैं हूँ, बनना नहीं है, आप हैं वो काइंड पर्सन, लेकिन बस जरूरत है उसको पहचानने की
0: जी।
1: तो अब जैसे जरूरत की बात आई है कि जरूरत है पहचानने की, तो इट मींस है ना आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अगर खुद को जानेंगे तो कहा जाता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है,
0: क्या बात है?
1: कि अपने आप को हम इतना जान ले, इतना पहचान ले कि भगवान भी हमें हमारे अकॉर्डिंग ही हर एक वर्क दे।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, जैसा कि अभी ज्योति जी ने पूछा मेरे से कि आप कौन है, तो ये आप कौन है या मैं कौन हूँ, ये मैं कौन है का सवाल इस एज में इतना हैवी क्यों लगता है?
1: बिल्कुल, क्योंकि पहले जो बच्चे होते थे या हम ही रहे हैं जो, या हमसे भी पहले की जो पीढ़ी है, वो ज्यादा स्पष्ट हम समझ पाएंगे कि जो हमारे मम्मी पापा जब बच्चे थे
0: जी,
1: तो उनका क्या करियर होना है, क्या लाइफ होना है, कैसे उन्हें चलना है, वो सारा जो डिसीजन है उनके पेरेंट्स के थ्रू होता था। तो इसलिए उनके ऊपर ये एक तरह का कहे कि ना तो उन्हें फ्रीडम थी, पर एक तरह का प्रेशर भी नहीं था कि उन्हें क्या करना है। अगर पिता का सुनार का काम है तो डिसाइडेड, वेल डिसाइडेड है कि बेटा उसी दुकान पे बैठेगा और वही उसका बिजनेस होगा। लेकिन आज अगर किसी के पिता का सुनार का बिजनेस है, सोने का या डायमंड का भी है, तो 100% श्योर नहीं है कि बेटा भी उसी बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करेगा। हो सकता है वो साथ में ले ले, लेकिन अपना पैशन, अगर वो बहुत पैशनेट है किसी चीज के प्रति, क्रिकेट या व्हाटएवर, तो हो सकता है वो उस फील्ड में जाए, साइड बाय साइड इसको ले ले। ठीक है, तो उस जमाने में जब प्रेशर ही नहीं लिया, तो ये क्राइसिस कहो या प्रश्न कहो, हमारे माइंड में कभी आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हमारे बनाने वाले माता पिता हैं और वही डिसाइड करेंगे, तो हम बहुत खाली थे।
0: बिल्कुल,
1: वो बताएंगे। अगर पिता टीचर है तो उन्हें उससे बेस्ट प्रोफेशन कोई नहीं लगता, तो बेटा भी टीचिंग में जाएगा, बेटी टीचिंग में जाएगी, अंडरस्टूड था। लेकिन अब जहां हमें फ्रीडम मिल गई है, तो एक प्रेशर भी हमारे ऊपर आ गया है कि मैं कौन हूँ।
0: बिल्कुल,
1: फ्रीडम है माता पिता की तरफ से आपको क्या करना है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अब क्योंकि प्रेशर भी आ गया है कि मुझे क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट किस में है, या मैं कहाँ क्वालिफाई करता हूँ, या मैं करना चाहता हूँ या कर सकता हूँ, वो मुझे डिसाइड करना है। तो ये प्रेशर आ गया है और इसीलिए सर्चिंग बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही है कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ का प्रेशर इसीलिए है क्योंकि मेरे ऊपर ही सब कुछ आ गया है। मैं आजाद हूँ, मैं किंग ऑफ माई लाइफ हूँ, लेकिन वही मैं कहीं ना कहीं स्लेव हो रहा हूँ। तो उस चीज को मुझे देखना है और अपने आप को उस लेवल पर लेकर आना है कि सदा ही इसका आंसर मेरे पास होना चाहिए कि मैं कौन हूँ।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। अच्छा, करियर कंफ्यूजन आइडेंटिटी क्राइसिस को कैसे इफेक्ट करता है, इस क्वेश्चन को लेकर आप दोनों का क्या कहना है?
1: अगर करियर कंफ्यूजन की बात कहें तो इसलिए हो भी रहा है कि क्योंकि आज व्यक्ति का माइंड स्टेबल नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: कहीं ना कहीं हर एक जगह पर कोई ना कोई व्यक्ति को देख करके कि अपनी लाइफ में इतना हौच-पौच हो गया है कि जो अच्छा लगता है कुछ दिन के लिए वहीं उसी डायरेक्शन में हम चल पड़ते हैं कि हाँ यही हमें बनना है। किसी ऐसी पर्सनालिटी को देखा, लोग उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे से उसको पसंद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उसका फेम हो रहा है, तो हमें लगता है नहीं यही लाइफ अच्छी है और ऐसा ही हमें भी बनना है। यस, रेड रेस में आ गए हैं। और अगर कोई ऐसी ही चीज़ होती है और ये इसका रीज़न क्या हो रहा है कि हमें डे बाय डे कुछ नया चाहिए
0: जी।
1: हम एक चीज़ करने पे फोकस नहीं है, हम वहाँ पर फोकस नहीं होते, तो दिन प्रतिदिन जब हमें चेंजेस चाहिए तो हम अपने करियर पर भी चेंज ही करते रहते हैं। आज ये करेंगे, कल ये ट्राई करेंगे, अच्छा कुछ दिन चल के देखते हैं, बिजनेस करके देखते हैं, बिजनेस ये ठीक नहीं हुआ तो दूसरे बिजनेस की तरफ इन्फ्लुएंस, माना हर एक चीज करना सब कुछ चाहते हैं लेकिन किसी भी चीज में एक स्पेशलिटी नहीं ला रहे हैं, थोड़ा पेशेंस नहीं है। और ये पेशेंस क्यों नहीं है, क्योंकि खुद की क्वालिटी की पहचान नहीं है।
0: बिल्कुल, प्रिया जी आप क्या कहेंगे?
2: जैसा कि दो वर्ड्स हैं इसमें, आइडेंटिटी क्राइसिस जो कि हम सुन ही रहे हैं कि मैं कौन हूँ,
0: बिल्कुल,
2: और जॉब क्राइसिस कि मैं क्या करूँ
0: जी।
2: देखिए, जॉब कंफ्यूजन जिसको हम कहें कि मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं और मैं कौन हूं, ये बहुत आसपास का है कि मैं क्या करूं से मैं कौन हूं बनता है आज की डेट में। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले मैं कौन हूं वो स्पेसिफिकली डिफरेंट होता था और मैं क्या कर रहा हूं ये क्लियर होता था, लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं वो बनाता है कि मैं कौन हूं
0: जी।
2: मैं अगर बिजनेस कर रहा हूं तो मैं टाइकून हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, ये हूं वो। और अगर मैं, और ये क्राइसिस प्रॉब्लम जो आ रही है वो विशेष कि मैं क्या ढूंढूं, जैसा कि आज की मूवीज में हम देखते हैं, पीछे आई थी बहुत अच्छी मूवी 3 इडियट मूवीज का हम देख सकते हैं सीन कि वो फ्रेंड जो खुद का एक पैशन है कि मैं एनिमल्स की फोटोज क्लिक करूं, मैं फोटोग्राफर बनूं, है ना, लेकिन पेरेंट्स का है कि नहीं इंजीनियर बनूं, सेफ साइड चलूं। आज भी ऐसे पेरेंट्स बहुत हैं, भारत में तो विशेष हैं। बच्चा चाहता है मैं क्रिकेट खेलूं लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं कि सेफ साइड चलो
0: जी।
2: ठीक है, आप हफ्ते में एक दिन खेलने चले जाओ, बट बी सीरियस टुवर्ड्स द स्टडीज, क्योंकि आपको ये बनना है।
0: Exactly.
2: तो यहाँ प्रॉब्लम जब आती है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि यहाँ फ्रीडम भी नहीं है और स्ट्रगल भी है। वहां जहां सिर्फ मैं सोच रहा हूँ वहां फ्रीडम है, स्ट्रगल है, यहाँ फ्रीडम भी नहीं है और स्ट्रगल है, क्योंकि मम्मी पापा ये कह रहे हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा द्वंद है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है और ये चीज फिर बहुत ज्यादा अगर बढ़ती है तो स्टूडेंट को, बच्चों को बहुत दिक्कत दे जाती है, क्योंकि पैशन, क्योंकि उसमें मेरा दिल है, मेरी बुद्धि है, मेरा मन है, मेरा दिमाग है, मेरा सारा एनर्जी तो वहां जा रहा है, लेकिन मम्मी ने पापा ने जो बोला है वहां मुझे खड़ा होना ही है, नंबर लाने ही है, तो मैं दो साइड अपनी एनर्जी को डिवाइड कर रहा हूँ। और जब आगे बढ़ जाता हूँ और मैं इंजीनियर बन जाता हूँ बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, ठीक है, लेकिन जब मैं अपने फ्रेंड सर्कल में उसका पैशन फॉलो करते हुए अपने फ्रेंड को कहीं देख लेता हूँ और अच्छा खासा एक लेवल पे देख लेता हूँ, चाहे फेसबुक में, स्क्रीन पे या ऑफ स्क्रीन, वेयर एवर, तब मुझे लगता है कि अगर मैंने अपना पैशन फॉलो किया होता तो मैं भी उस लेवल पर पहुंच सकता था, क्योंकि जब मैं बिना चाहत के यहाँ आ सकता हूँ तो चाहत का करता तो कहाँ जाता। तो ये बहुत एक दिक्कत देता है कि मैं क्या करूँ और क्या मेरे को, मतलब सरकमस्टांसेस या पेरेंट्स, भारत में तो बहुत सारी चीजें वैरी करती है, सरकमस्टांसेस का भी अपना एक खेल बन जाता है। पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन सडनली कुछ प्रॉब्लम आ गई, मनी क्राइसिस हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो साइड बाय साइड पैरेलल में चलती ही रहती हैं, जिसकी वजह से फिर ये दिक्कतें ज्यादा आती हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। ज्योति जी, सोशल मीडिया कंपैरिजन आइडेंटिटी को कितना डिसऑर्ड करता है, इस पे आप क्या कहेंगे?
1: डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं।
0: सही बात है।
1: या तो हम उसे पॉजिटिव में, अच्छी चीजों के लिए, अगर अच्छी चीजों की तरफ हम है तो वो हमें बना भी देता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति कुछ जानना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है, तो उसके लिए सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है उसके करियर को बनाने के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसमें सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा है, सिर्फ स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन उससे कुछ सीख नहीं रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, लेकिन अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कहीं नहीं कर रहा है, तो फिर वो कहीं ना कहीं उसको तोड़ रहा है, उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आज हम देख भी रहे हैं कि कुछ लोग इस सोशल मीडिया के द्वारा अपने पूरे घर का खर्चा उठा रहे हैं, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत बेहतर तरीके से, वो शायद उनकी मजबूरियों ने उनको उधर की तरफ भेज दिया और उन्होंने उसको अपना एक पैशन बनाकर उसको अपना प्रोफेशन बना लिया। लेकिन कुछ लोग जिनको हर एक चीज़ें मिल रही हैं, वो अपना करियर बना भी सकते हैं, और जो इस बात को दोष देते थे कभी कि हम कहाँ से सीखें, तो सोशल मीडिया एक हेल्प कर रहा है हमें सीखने के लिए कि आप सीख सकते हो। आपके पास जब आपके पेरेंट्स ने हमें फ़ोन दे दिया या कुछ दिया, तो कहीं ना कहीं हम उससे सीख सकते हैं, उससे प्लस पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन मैंने अगर उसको सही दिशा में यूज़ किया तो मेरी लाइफ बन जाती है। अगर मैंने इसको गलत, सिर्फ रील्स में ही हमने इसको स्पेंड कर रहे हैं, या सिर्फ हम कमेंट दे रहे हैं, या हम ऐसी चीज़ें, उसमें भी फिर हमारी किस तरफ इंटरेस्ट है? क्या हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? क्योंकि कहा जाता है लाइफ जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वही हम बनते हैं। जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम सोच रहे हैं, वैसे हम बनते जा रहे हैं। अगर हमें पसंद आ रहा है दूसरों के ऊपर ह्यूमर वाली रील्स है या कोई ऐसी चीज है, तो कहीं ना कहीं हम भी वैसे बनते चले जाएंगे।
0: बिल्कुल सही।
1: अगर हमें नेगेटिव चीजें ज्यादा अच्छी लग रही हैं और किसी ना किसी जगह पर कि बच्चे क्या देख रहे हैं, इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे कि किस तरफ है। भले हम ये नहीं कहते कि 24 घंटे उनको कोई चीज दे, लेकिन एटलीस्ट हम निगरानी भी रखें कि बच्चा किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। थोड़ा अपने साथ इन्वॉल्वमेंट करें, थोड़ा ऐसी जगह पर लेकर जाएं जहां उनको पॉजिटिव मिले। तो ये जो सोशल मीडिया है, ये लाइफ को बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि हम इसको लेके किस तरफ जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट।

0: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।
1: 70s हो, 90s हो या हो 20s, हर म्यूजिकल दुनिया का राग है रेडियो महारानी के साथ। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। प्रिया जी, क्या फेलियर्स 20s में आइडेंटिटी को तोड़ देते हैं या बना देते हैं, इस पे आप क्या कहेंगे?
1: हम सभी 20s से निकले हैं
0: जी
1: और 2026 में अब हैं
0: जी,
1: जहां अभी हमारे बच्चे 20s में हैं और हम अब ऑलमोस्ट 40s में हैं, 50s को टच कर रहे हैं। तो जीवन में 20s में सबने देखा है और सभी के साथ ऊपर नीचे हुआ ही है कि हमें क्या करना है। तो उनको ये लगता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, ये चीज 20s में बहुत ज्यादा हिट करती है क्योंकि उस दौरान हम उस दुनिया में एंटर कर रहे हैं जिस दुनिया को सिर्फ हम सोच रहे हैं।
0: Exactly.
1: अब हम उसके साथ फेस टू फेस होने जा रहे हैं, अब हमें रियलिटी पता चलने जा रही है जो कि अब तक हम सिर्फ स्क्रीन पे देख रहे थे, मम्मी पापा से सुन रहे थे या थोड़ा बहुत मिलन होता था, लेकिन अब हम उस दुनिया का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो कि उस समय का बच्चा समझ नहीं पा रहा है, समझने की कोशिश में है, लेकिन तब उसके साथ अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है तो फिर वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है।
0: जी जी।
1: दूसरा कि मुझको खुद से ही बहुत सारी उम्मीदें हैं, मुझे लगता है बस मैदान में कूदते ही मैं मैदाने जंग जीत लूंगी
0: जी,
1: जबकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। कुछ बच्चे हैं जो 5 साल में ही उन्होंने मैदाने जंग जीत लिया है, जिसको हम कहें कि गॉड गिफ्ट है।
0: या एग्जैक्टली,
1: ठीक है, बर्थ से ही उनका है, लेकिन मैं यहाँ 25 की हो रही हूँ, मैं 70 की हो रही हूँ, लेकिन स्टिल आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांटेड। तो ये सबके साथ डिफरेंट है, ये चीज मुझे समझनी है। कुछ लोगों के हाथों की रेखाओं में स्ट्रगल बहुत होता है और कुछ लोगों की रेखाओं में बिल्कुल ही खाली खाली है प्लेन की, कुछ नहीं करेंगे तो भी मिलेगा।
0: Exactly.
1: तो ऐसा नहीं है कि उसे कुछ नहीं करना, लेकिन अगर हम डीप में जाएं तो उसने पहले किया है तो आज उसे यूं ही मिल रहा है, करना हर एक को पड़ता है। दूसरा, मैं अपने आप का जो एनर्जी लेवल है, तीसरा जो मैं कहूँ कि मेरे को मेरी एनर्जी लेवल लगता है बहुत है, लेकिन मैं जो काम है, जो सामने आने वाली चीजें हैं, जो काम है उसको मैं समझ करके अपनी एनर्जी लेवल को उसके पैरेलल में नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि जो काम मेरे को मिल रहा है मैं उसके अनुसार अपने आप को नहीं डाल रहा। मैं तो कुछ सोच के आया था कि मैं जाते ही मेरी सैलरी 50 हो जाएगी क्योंकि मैंने तो डिग्री ली है और इस कॉलेज से निकला हूं तो यहाँ तो बहुत मुझे मिल जाएगा। लेकिन कंपनी में जाते जब उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल करने को कहा तब मैं प्रैक्टिकल में उतना खरा नहीं उतरा हूँ तो मैं पीछे हूँ। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक यंगस्टर्स को 20s में बहुत ज्यादा दिक्कत दी जाती हैं, जिसमें मुझे हमेशा ये याद रखना है कि एक्सपेक्टेशंस जो है वो उतनी रखें, इसके ऊपर एड्स भी आ रहे हैं कि इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। तो हमें एक्सपेक्टेशन करनी है खुद से अगर, तो भी उसको उस हिसाब से देखना होगा कि मैं 20s में हूं तो मैं 50 वाला अगर सोच रहा हूं, सोचने में बुराई नहीं है, लेकिन अगर वो चीज मुझे अगर 20 में नहीं मिली है और अपने आप को मैंने फेलियर घोषित कर दिया है वो बुराई है।
0: बिल्कुल सही बात।
1: लोगों ने 20s में भी टाइकून बने हैं, बिजनेस बहुत बढ़िया सेटअप किया है, हम तो 19 में ही देख रहे हैं कि बच्चे ने PhD कर ली है, 23 में कर ली है, तो क्यों कर ली है, लेकिन लाखों में एक ने की है, ये बात भी मुझे अंडरस्टूड करनी है। मेरी अगर नहीं हो रही है 23 में PhD तो इसका मतलब मैं PhD कर ही नहीं सकती।
0: बिल्कुल।
1: ये कहाँ लिखा है, ये तो कहीं भी नहीं लिखा है।
0: सही बात।
1: ये मैं अगर लिख लेती हूँ अपनी डायरी में फिर तो मैं कभी कर भी नहीं सकती। इसलिए मुझे ये चीजों को बहुत क्लियरली अंडरस्टूड करना है कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, अपनी एनर्जी लेवल को समझे, अपना वर्क फील्ड

तक पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे।
1: अरे आगे भी बोलना।
0: हाई स्पीड में चलोगे तो फोटो विद हार मिलोगे।
2: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: ब्रेक के बाद वेलकम बैक। शो चल रहा है जस्ट टॉक अबाउट इट और मेरे साथ जुड़ी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। आइडेंटिटी क्राइसिस से निकलने के लिए सबसे पहला इनर वर्क क्या होना चाहिए, इस पे आप दोनों का क्या कहना है?
1: सबसे पहले तो जैसे कि ज्योति जी से आपने सवाल पूछा था मैं कौन हूँ
0: जी,
1: तो इसका हम प्रोफेशनल वे में अगर 20s में है, खास अगर बच्चा छोटा है 20s, हम तो 20s छोटा ही कहेंगे
0: बिल्कुल,
1: लेकिन 20 वालों को नहीं लगता कि मैं छोटा हूँ, दे फील आई एम बिग एनफ टू डू एनीथिंग, लेकिन ऐसा नहीं है। हर चीज का अपना एक समय है, निश्चित समय है। तो अगर मुझे इस क्राइसिस से निकलना है तो मुझे समय के पहलुओं को, कई पहलुओं को समझना है, लेकिन अपने आप को प्रैक्टिकल ज्यादा बनाना है, बजाय थ्योरेटिकल के मुझे प्रैक्टिकल ज्यादा बनना है। इस चीज पर मैं कौन हूं पे हम आध्यात्मिक डिग अगर ज्यादा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट थोड़ा सा कर लेते हैं कि वाकई में मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मेरा क्या लक्ष्य होना चाहिए, अगर मैं उस लक्ष्य को फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मैं मटेरियलिस्टिक मैं कौन हूँ से ज्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी।
0: सही बात।
1: यानी मैं बिजनेसमैन हूँ या मैं साइंटिस्ट हूँ या मैं इंजीनियर हूँ, ये मुझे ज्यादा दिक्कत तब नहीं देगा जब मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि मैं एक बहुत ही श्रेष्ठ आत्मा हूँ और इस सृष्टि पर जो मैं आई हूँ वो परमात्मा का मैं संतान हूँ और उसने मेरे लिए बहुत सुंदर भविष्य निर्धारित कर रखा है, बस मुझे पन्नों को पलटना है।
0: बिल्कुल सही बात। ज्योति जी आप क्या कहेंगी?
2: जब से हम जन्म लेते हैं और बड़े होने तक हम वही बनते चले जाते हैं जैसा लोग हमें देख रहे हैं, हमें कहते हैं
0: जी,
2: है ना। अगर हमें बचपन से कहा जा रहा है बहुत इंटेलिजेंट हो, तो हम वैसा ही हमारा बिहेवियर एटीट्यूड हो जाता है। कोई लोग कह देते हैं बार बार घर में ट्रेंड है कि पागल है, दिमाग नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं वही चीज़ माइंड में बैठ जाती
0: जी,
2: है
0: जी।
2: तो फिर उधर ही दिशा चलने लग जाती है, हम खुद भी उस चीज को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं, हाँ नहीं मेरे पास भी शायद इतना नहीं है मेरे में सक्षमता जितना लोग मुझे कहते हैं, या मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है लोग सही कहते हैं मेरे बारे में, तो ऐसा हम खुद सोचने लगे। लेकिन अगर हमें इनर अपनी खुद की आइडेंटिटी की पहचान होगी तो हम लोगों की कही हुई बातों पर नहीं जाएंगे, हमें खुद खुद के ऊपर विश्वास होगा कि हमें अगर परमात्मा ने इस भूमि पर भेजा है, इस सृष्टि पर भेजा है, तो जरूर मुझ में कुछ ना कुछ क्वालिटीज तो दी है।
0: सही बात।
2: क्योंकि परमात्मा की संतान है सभी, तो सब में बिना किसी क्वालिटी के भेजा हो ऐसा हो नहीं सकता है। बस मुझे जरूरत है कुछ देर अपने लिए बैठने की, अपने लिए निकालने की और उस क्वालिटी को पहचानने की। पता होते हुए भी कई बार हमें ये पता नहीं होता कि ये मेरी क्वालिटी है, है ना। कईयों को बहुत अच्छा होता है कि कोई नाराज हो तो उसको बड़ी जल्दी वो मना लेते हैं, तो उनको ये नहीं पता ये भी कोई क्वालिटी है।
0: बिल्कुल।
2: लेकिन आज हम ऐसे शो देखते हैं टीवी में जिन शो को देख के लोगों का स्ट्रेस दूर हो जाता है, तो क्या उनकी उस हंसाने की क्वालिटी ने आज उनका प्रोफेशन बना दिया? क्योंकि उन्होंने अपनी इस क्वालिटी को पहचाना।
0: बिल्कुल।
2: जिन्होंने अपनी इस क्वालिटी को पहचान लिया है उन्होंने इस तरीके की चीजों पर फोकस किया, और जब हम पॉजिटिव में, क्योंकि हम सबके अंदर पॉजिटिविटी ही है, हमारे अंदर सब परमात्मा ने वो इनबिल्ट करके वो क्वालिटीज भेज दी है, लेकिन बस हमें जरूरत है कुछ देर के लिए अपने आप को पहचानने की। और जिस दिन हम पहचान जाएंगे, अपने आप को पहचान जाते हैं, उस दिन चाहे लोग हमें कितना ही कहते रहे लेकिन हम अपनी दिशा की तरफ, अपने जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी तरफ बढ़ते चले जाते हैं, और हम कहीं भी फेलियर में भी हमें लगता है नहीं ये फेलियर नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक स्टेप मुझे बढ़ाने आया है, वो पावर हमारी जाग जाती है। और ये हम रोज प्रैक्टिकल अपने ब्रह्म कुमारीज में बहुत से ऐसे लोग आते हैं जो अपने जीवन से हार जाते हैं, जिनके जीवन का कोई मोटिव नहीं रह जाता है, लेकिन जब वो जानते हैं, खुद को पहचानते हैं, तो उसके बाद उनके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। वो ना सिर्फ अपनी प्रॉब्लम को हल कर पाते हैं बल्कि औरों की भी प्रॉब्लम्स को हल करते हैं और उनको भी मोटिवेट करते हैं कि नहीं, समस्या कभी बड़ी नहीं है, हमें बड़ा बनना है।
0: बिल्कुल सही बात है। जाते जाते हमारे लिसनर्स के लिए कोई एक मैसेज?
2: मेरा सभी को यही दिल से दुआ है और यही कहूंगी कि अपने को कभी भी कम ना समझें।
0: बिल्कुल,
2: आप एक बहुत स्पेशल सोल है और अपने आप को रोज ये रिमाइंड कराएं। दूसरों को हमें रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं है, बस खुद को ही रिमाइंड कराएं कि मैं परमात्मा की बहुत स्पेशल सोल हूं और मुझे परमात्मा ने बहुत विशेष काम के लिए इस धरती पर भेजा है।
0: आई एम द बेस्ट। प्रिया जी आप क्या कहेंगी?
3: मैं ये कहूंगी कि अपने लिए खुद का रिपोर्ट कार्ड खुद ही बनाए, किसी और के रिपोर्ट कार्ड का वेट ना करें, और अगर वो रिपोर्ट कार्ड देता भी है तो उसे एक्सेप्ट ना करें।
0: सही बात है।
3: खुद का रिपोर्ट कार्ड बनाएं कि फिजिकल में भी, आप प्रोफेशनल वे में भी और स्पिरिचुअल वे भी।
0: बिल्कुल।
3: जब मैंने अपने आप को नंबर दे दिया है तो मुझे किसी और से नंबर नहीं चाहिए, और अगर वो नंबर दे रहा है तो ओके फाइन, बड़े हैं तो ओके फाइन, लेकिन मैंने अपने आप को नंबर दिया है तो आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीवन टू गाइड मी। ठीक है, गाइड करेंगे लेकिन मेरे ऊपर उनका कंट्रोल नहीं होगा। तो ये आज की डेट में बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा मार्ग सही है ये मुझे जरूर हर पहलू से देखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच।
2: शांति। थैंक यू।
0: आइडेंटिटी कोई लेबल नहीं होती, वो एक जर्नी होती है जो वक्त के साथ इवॉल्व होती रहती है। जब हम खुद को समझने लगते हैं तभी लाइफ के डिसीजंस भी क्लियर होने लगते हैं। बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी का बहुत बहुत थैंक यू यहाँ आने के लिए। मैं हूँ पलक आप सभी के साथ और आप सुन रहे थे जस्ट टॉक अबाउट इट, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम खुदाया है.

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यूदा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

असलियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हेलो, गुड मॉर्निंग. मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त मोनिका, और आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी ओनली ऑन रेडियो महारानी. और रेडियो महारानी पास संघर्ष की कहानी में एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो आपके दिमाग के परकच्चे उड़ा देगी. अरे नहीं भाई, खून खराबा करने नहीं आई हूँ मैं यहाँ पर एक ऐसी कहानी लेकर के आई हूँ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आप अपनी पीढ़ियों को क्या ट्रांसफर कर रहे हो. मैं अगर आपसे सामने से एक क्वेश्चन करती हूँ कि अगर आपको अपने आगे आने वाली जनरेशन को कुछ देना है तो आप उन्हें क्या दोगे, तो बहुत सारे लोगों का आंसर हो सकता है शायद उनकी संपत्ति, उनके संस्कार, पैसा, गाड़ी, धन दौलत, वो सारी फैसिलिटीज जो चाहते हैं कि उनकी आगे आने वाली जनरेशन जो है फील करे और फैसिलिटीज में जिए, वो फैसिलिटीज़ वो उन्हें प्रोवाइड करेंगे, उनको तकलीफ ना हो, वो अच्छे से रहें, शायद ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड करोगे. पर एक चीज़ जो शायद आप में से किसी ने नहीं सोची, और वो चीज़ है साफ हवा, सांस. क्या आपने कभी सोचा है कि आप आने वाली जनरेशन को साफ हवा दोगे, ऑक्सीजन दोगे? इस बारे में तो शायद किसी ने नहीं सोचा, और 5% लोगों ने अगर सोचा भी है तो वो इस पर काम कर रहे हैं. और उन्हीं में से एक स्टोरी आज हमारे साथ जुड़ चुकी है, और आज कहानी है एक ऐसे इंसान की जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है समर्पित कर दी पेड़ पौधों को. उन्होंने नहीं देखा कि जिंदगी में और क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. बस उनके दिमाग में ये चीज बसी हुई थी कि मुझे अपनी जमीन को, अपने आसपास घरों को बंजर होते हुए नहीं देखना है, उनको हरा भरा बनाना है. और चाहे कितने ही बाढ़ क्यों ना आ जाए, चाहे कितने ही बड़े तूफान क्यों ना आ जाए, मैं अपने घर के आसपास की जमीन को और अपने गांव की जमीन को बंजर तो नहीं होने दूंगा. और ये चीज उन्होंने जब माइंड में बिठाई और उसके बाद उन्होंने उस चीज को अपनी पूरी लाइफ दे दी, और आज हम सभी उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं. तो क्या है उनकी कहानी और क्यों कर रहे हैं हम इस पर बात, सारी चीजों पर बात करेंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बात. कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो महारानी पर संघर्ष की कहानी.

पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: लगे।
1: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ इसलिए गधा हूँ।
2: सुन भाई सुरेंद्र।
3: हाँ भाई सुरेंद्र।
2: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
3: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

0: पर
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका संघर्ष की कहानी में। मैं हूँ मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। और जैसा कि आपको पता है कि हर वीकेंड संघर्ष की कहानी में मैं लेकर के आती हूँ कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपके ही आसपास की हैं, आपके देश की हैं, आपके गली मोहल्ले की हैं, पर अभी तक आप तक नहीं पहुँची हैं। तो उसका जिम्मा उठा लिया है मोनिका ने और लेकर के आ गई है एक ऐसी कहानी जिसके बारे में जानना तो आपका बनता है। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी जिंदगी का सिर्फ एक इंसिडेंट इंसान का पर्पज ही बदल देता है। तो ऐसा ही हो रहा था जादव पायेंग के साथ। जादव पायेंग असम की मंजुली आइसलैंड के रहने वाले हैं। मंजुली दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड माना जाता है जो ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बसा हुआ है। लेकिन हर साल आने वाली बाढ़ और मिट्टी के कटाव ने इस जगह को बहुत नुकसान पहुंचाया है। साल 1979 में जब जादव सिर्फ 16 साल के थे, असम में एक भयंकर बाढ़ आ गई। पानी उतरने के बाद वो नदी के किनारे गए जहां उन्होंने रेत पर सैकड़ों मरे हुए सांपों को देखा। तेज धूप और पेड़ों की कमी की वजह से उन जानवरों की मौत हो गई थी। ये नजारा देखने के बाद उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से पूछा कि यहाँ पेड़ क्यों नहीं लगाए जाते हैं। उन्हें जवाब मिला कि इस रेतीली जमीन पर कुछ उगाना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, बांस के पेड़ लगाए जा सकते हैं। बस उसी दिन जादव ने फैसला किया कि अगर जंगल नहीं है तो वो जंगल खुद उगाएंगे। और तभी जादव ने बांस के पौधों को लगाने की शुरुआत की। रोज सुबह कई किलोमीटर चलना, नदी पार करना, पौधों को पानी देना और उनकी देखभाल करना उनका पूरा रूटीन बन गया था। धीरे धीरे उन्होंने बांस के साथ अर्जुन, गुलमोहर, बनियान ट्री और दूसरे देसी पेड़ भी लगाने स्टार्ट कर दिए। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि 16 साल के लड़के का ये फैसला पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाएगा। तो क्या है आगे की कहानी, हम बढ़ेंगे जरूर। तब तक एंजॉय करिए छोटी काशी से रानी जी की फरमाइश पर ये प्यार।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जा।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
0: सदा सुरक्षित रहो, रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
4: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट, इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: चट्टान की खोज तो 7 देशों की पुलिस कर रही है, पर पानी की खोज सारी दुनिया।
1: डॉन को पकड़ना शायद आसान भी हो, पर पानी के बिना जीना मुश्किल। तो आज से ही पानी यूज करो उतना, जरूरत हो जितना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं संघर्ष की कहानी। मैं हूं आपकी होस्ट मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। और आज संघर्ष की कहानी में कहानी चल रही है असम के जादव पायेंग की। जादव पायेंग जिन्होंने 16 साल की उम्र से ही पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया था एक ऐसी जमीन पर जहां पर पेड़ों का उगना नामुमकिन था। जादव पायेंग ने एक या दो साल नहीं बल्कि 40 साल से भी ज्यादा अपनी जिंदगी पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने में लगा दी। आज उनके लगाए हुए जंगल को मोलाई फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जंगल लगभग 1360 एकड़ में फैला हुआ है। हैरानी की बात यह है कि जहां कभी सिर्फ रेत ही रेत हुआ करती थी, आज वहां हजारों पेड़ हैं और हाथी, गेंडे, हिरन, जंगली सुअर, बाघ और 100 से भी ज्यादा प्रजातियों के पक्षी अपना घर बना चुके हैं। जादव सिर्फ पेड़ नहीं लगाया करते थे, वो बीज इकट्ठा करते थे, पौधे तैयार करते और पानी देते और उनकी रक्षा भी किया करते थे। उनके लिए ये सिर्फ प्लांटेशन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का मिशन था। आज उनकी बेटी मुनमुनी पायेंग भी इस मिशन को आगे बढ़ा रही हैं। वो एनवायरमेंट अवेयरनेस और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट में एक्टिवली काम कर रही हैं ताकि उनके पिता का सपना आने वाली जनरेशन तक जिंदा रहे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद क्या उनकी मेहनत को वो पहचान मिली जिसकी वो हकदार थी, और भारत सरकार ने उनके इस काम को किस तरह से सराहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष की कहानी में। मैं हूँ होस्ट मोनिका और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM। और जैसा कि आपको पता है कि संघर्ष की कहानी में आज कहानी चल रही है असम के जादव पायेंग की और उनकी बेटी मुनमुनी पायेंग की। जादव पायेंग की मेहनत को आखिरकार पूरी दुनिया ने पहचाना। आज उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और साल 2015 में भारत सरकार ने उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े सिविलियन ऑनर पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इसके अलावा उन्हें कई नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी सम्मान मिला, क्योंकि उन्होंने अकेले वो कर दिखाया जो अक्सर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उनकी कहानी का सबसे बड़ा मैसेज अवार्ड नहीं है, बल्कि ये है कि जिंदगी में पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन साफ हवा और जीने लायक एनवायरमेंट नहीं। और हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, बल्कि हमारा नेचर है, प्रकृति है, जो हमें बिना किसी शर्त के ऑक्सीजन, साफ हवा और एक बेहतर जिंदगी देती है। और कहीं ना कहीं अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आप कुछ पहुंचाना चाहते हैं तो आप साफ हवा पहुंचाइए, ऑक्सीजन पहुंचाइए, और महीने में ना सही साल में एक दो पेड़ जरूर लगाइए। आपकी ये धरोहर है जो कि आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे चलती रहेगी। और आपको पता नहीं है कि आज के टाइम में एक पेड़ की कीमत क्या है। जब आप एक पेड़ की शुरुआत करेंगे आपको पता नहीं चलेगा आपके जीवन में कितना सुधार आ जाएगा। तो पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए और प्रकृति को और सुंदर बनाइए। आपको जो ऑक्सीजन सिलेंडर में लेनी पड़ती है वो शायद सिलेंडर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेड़ की कीमत बहुत ज्यादा है, इसको समझिए। और साथ ही साथ जाने से पहले मैं बस इतना कहना चाहूंगी, आप खुश रहिए, अपनी केयर करिए, अपने अपनों का बहुत ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानियां हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, या लोगों की कहानियां हैं जो हम तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप हमारे नंबर 9654896896 पर कॉल या मैसेज करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें अपना प्यारा सा कोई भी मैसेज शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: पोषण की पाठशाला में स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, जहाँ हम बात करते हैं माँ और बच्चे की सेहत से जुड़े जरूरी पहलू पर। कहा जाता है बच्चे के जन्म के बाद हर घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन फिर भी कई बार नई माँ के लिए ये दौर इमोशनल और मेंटली चैलेंजिंग भी हो सकता है। थकान, मूड स्विंग्स, एंजाइटी और कभी कभी गहरी उदासी, ये सब पोस्टपार्टम फेज का एक हिस्सा हो सकता है। पर अब सवाल ये है, कब ये फीलिंग नॉर्मल होती है और कब ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सिग्नल होती है? और इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी है मिस स्वाति शर्मा, जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद से है, जो आज हमें गाइड करेंगी पोस्टपार्टम डिप्रेशन के साइन, कॉजेज और सपोर्ट के बारे में। डॉक्टर स्वाति, सबसे पहले तो स्वागत है आपका रेडियो महारानी के स्टूडियो में। तो आइए, चलिए सबसे पहले जानते हैं अंडरस्टैंडिंग पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यानी डॉक्टर, सबसे पहले हमें ये समझाइए कि आखिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, और साथ ही अगर बात की जाए इस डिप्रेशन की, तो क्या सिर्फ सैड फील करना ही डिप्रेशन है या फिर इससे कहीं ज्यादा सीरियस इशू माना जाता है इसे? अक्सर लोग बोल देते हैं हार्मोन्स का इफेक्ट होगा, टाइम के साथ सब ठीक हो जाएगा। क्या ये सोच सही है या पोस्टपार्टम डिप्रेशन को लाइटली लेना गलत हो सकता है?
1: थैंक यू अंजलि। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं क्या करती हूँ। मेरा नाम स्वाति शर्मा है, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ मेट्रो हॉस्पिटल में, लास्ट 3 ईयर से वर्किंग हूँ और मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फील्ड में 15 ईयर्स का है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक इमोशनल कंडीशन है जो जनरली डिलीवरी के बाद फीमेल्स फेस करती हैं। इसमें आपको चिड़चिड़ापन होना, नींद नहीं आना, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, क्योंकि आपकी बॉडी का एक ह्यूज ट्रांजिशन होता है, क्योंकि आपका सारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में बहुत ज्यादा सैडनेस होना, कभी बहुत ज्यादा मूड बहुत अच्छा होता है, कभी मूड बहुत ज्यादा खराब होता है, जिसे हम जनरली बेबी ब्लूज के नाम से जानते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस होना नेचुरल है कि हम थोड़ा सा परेशान है, या उसको हम अपने रूटीन के हिसाब से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हफ्तों तक चलता है, आपका मन किसी काम में नहीं लग रहा है, जो चीजें पहले पसंद थी आपको पसंद नहीं आ रही है, बिना मतलब का आपको चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो ये एक इशारा है कि आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में डेफिनेटली हार्मोन चेंजेस होते हैं, एकदम से आपके जो बॉडी है उस चीज को करना, 9 मंथ की जर्नी आसान नहीं होती। एक आप एक फीमेल है, उसके बाद आप माँ होना, कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है, उसके बाद अपने अंदर एक इंसान को, जीव को रखना, उसके बाद उसको डिलीवर करना, ये 9 मंथ की जर्नी बहुत ज्यादा टफ भी होती है। हाँ, अच्छी भी होती है, लेकिन आपकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसमें फर्क तो पड़ता ही है। हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो बहुत उस तरीके से होते हैं कि आपको कभी तो आपका मूड लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, कभी आप एकदम से बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करोगे। लेकिन हर बार ये कहना कि हार्मोनल चेंजेस हैं, ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि हर चीज हार्मोनल चेंजेस नहीं होती। कई बार आपको इस डॉक्टरी सलाह लेना जरूरी है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति, आपने सबसे पहले हमें ये समझाया कि आखिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है, कभी भी इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर किसी भी तरह का कोई साइन, कोई सिग्नल दिखता है तो तुरंत अपनी फैमिली से बात करें, डॉक्टर से बात करें, क्योंकि डिलीवरी के बाद सिर्फ बॉडी नहीं दिल का ख्याल रखना भी उतना ही ज्यादा जरूरी होता है। एंड अगर बात की जाए पोस्टपार्टम डिप्रेशन की, तो सबसे बड़ा पार्ट हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। तो जितनी भी न्यू मॉम्स आज हमें सुन रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज परेशान कर रही है, प्लीज अपने पार्टनर से बैठकर बात करें, अपने फैमिली से डिस्कस करें, और अगर आपको लगता है कि आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। अपना ख्याल रखें, साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: ओशन की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। जहाँ मेरे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर स्वाति, जिनसे हम जान रहे हैं आखिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। तो डॉक्टर, अगर बात की जाए इस दौरान सिम्टम्स की जो अक्सर इग्नोर हो जाते हैं, जैसे डिलीवरी के बाद कौन सा बिहेवियर या फीलिंग एक वार्निंग साइन हो सकती है जिसे फैमिली को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और साथ ही अगर न्यू मॉम्स की बात करें, अगर कोई माँ ये बोलती है कि मुझे अपने बच्चे से कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, किसी भी तरह का कनेक्ट नहीं फील कर पा रहे हैं, तो ये क्या पोस्टपार्टम डिप्रेशन का सिग्नल हो सकता है? या फिर अगर बात की जाए नींद ना आना, चिड़चिड़ापन और एक गिल्ट फील होना कि वो एक बैड मदर है, तो क्या ये वाकई पोस्टपार्टम डिप्रेशन से लिंक्ड होता है या इसके पीछे क्या रीजन है?
1: बिल्कुल अंजलि, ये जो आपने पूछा कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन के जो सिम्टम्स हैं या वार्निंग साइंस है, वार्निंग साइंस में है कि आपको एकदम से मन करता है कि अकेलापन, आप अंधेरे कमरे में रहो, या बहुत ज्यादा नींद आना, या बहुत बिल्कुल ही नींद आना, एकदम से मूड बहुत अच्छा लगेगा कि आपको लगेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है, दूसरे पल आपको एकदम से ही गुस्सा आ जाना। जैसा मैंने अभी बोला कि इसको हम बेबी ब्लूज के नाम से जानते हैं, खुद ही वो नहीं समझ पाते, कई बार आप सेल्फ गिल्ट में रहते हो कि मैं तो ऐसी नहीं थी, ऐसा क्यों हो गया, तो ये सारी चीजें आती है। और अपने आप को बच्चे से कनेक्ट फील, अगर कोई भी मदर ये बोले मुझे बच्चे से कनेक्ट ही फील नहीं हो रहा, तो ये आपके लिए वार्निंग अलार्मिंग साइन है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है और आपको डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि ये इसको इग्नोर करना कि कनेक्ट फील नहीं हो रहा, कई बार सोसाइटी में होता है कि ऐसा नहीं है, अभी कनेक्ट फील हो जाएगा, तो आपको ऐसे किसी की बात को उसमें नहीं लेना है। एज अ फैमिली मेंबर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मेन इम्पोर्टेंट साइन है। अगर एक मां 9 महीने की जर्नी के बाद ये बोले कि मुझे बच्चे से कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर स्वाति। जैसे कि अभी डॉक्टर स्वाति ने बताया, कोई भी माँ बुरी माँ नहीं होती है, तो जितनी भी न्यू मॉम्स हैं, पहले तो आप अपने मन से गिल्ट निकाल दीजिए कि आप एक खराब मदर हैं, बिकॉज आप कभी बुरी माँ बन ही नहीं सकती। क्योंकि जब बात की जाती है माँ बनने की, तो ये जर्नी डिलीवरी के बाद शुरू नहीं होती, ये थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी फेज रहती है। इस जर्नी को इजी बनाने के लिए आपको जरूरत है खुद पर बिलीव करने की। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि आप अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, अपने आप के लिए टाइम निकाल कर, अपना मी टाइम स्पेंड कर खुद पर बहुत सारी चीजों से रिकवर कर सकते हैं। साथ ही डॉक्टर ने ये भी बताया कि अगर कोई न्यू मदर कहती है कि उन्हें उनके बेबी से कनेक्ट फील नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके साथ बैठे, उनसे बात करें, न्यू मॉम की काउंसलिंग कराएं, उनका ख्याल रखें, सो दैट की जो ये फीलिंग है, इस फीलिंग से वो बाहर आ सके। और यही कहना चाहेंगे कि पोषण की पाठशाला में आज बहुत सारी बातें हैं डॉक्टर से करने के लिए, बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आरजी अंशी आपके साथ और शो लेकर आई हूँ पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर स्वाति फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, अगर बात की जाए पोस्टमार्टम फेज की, कहा जाता है कि प्रेशर, एक्सपेक्टेशन एंड सोसाइटी, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। हमारी सोसाइटी में माँ से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा खुश रहें। क्या ये प्रेशर एक न्यू मॉम को पोस्टमार्टम डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है? और अगर बात की जाए न्यू मॉम की, तो कहा जाता है कि किसी को बताने में शर्म फील होती है। ये साइलेंस न्यू मदर की मेंटल हेल्थ के लिए कितना डेंजरस हो सकता है?
1: इंडियन सोसाइटी में जनरली ये होता है कि अगर आपने बेबी डिलीवर किया है तो आपको हर वक्त खुशी रहना है, क्योंकि आप उनके हिसाब से ये सब हमने भी किया था वाली टेंडेंसी आ जाती है कि हमने भी किया था तुम ऐसा करो। लेकिन ऐसा नहीं होता, टाइम के साथ साथ चीजें बहुत बदल रही है। पहले ज्वाइंट फैमिलीज होती थी, सब कुछ बहुत चीजें होती, अब आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज होते हैं, सब कुछ अपने पर कैरी करना, आजकल सब वर्किंग भी होते हैं, वो प्रेशर अलग होता है। फिर आपको बॉडी में इतने चेंजेस आ जाते हैं, अपने आप से ही आपको ये लगने लग जाता है कि मैं क्या थी, ये क्या हो गई, नींद नहीं आना, ये सारी चीजें जो सोसाइटी में एक प्रेशर बना रखा है। फिर फीमेल्स के साथ जनरली होता है, वो हर चीज का बर्डन अपने ऊपर लेकर चलती है, वो परफेक्ट बनने के चक्कर में वो चीजें ना क्लियर ही नहीं, वो कह ही नहीं पाती कि मुझे भी जरूरत है। उनको लगता है कि लोग मुझे जज करना शुरू कर देंगे, इसी उसमें कि जज करेंगे और मैं कह नहीं पाऊंगी, इसी बीच में वो कहीं ना कहीं साइलेंट डिप्रेशन की ओर चली जाती हैं। इसलिए सोसाइटी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जनरली इसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि लोग ये कहेंगे कि आप अपने ही बच्चे को नहीं संभाल पा रही हो, तो इस चीज को भी हमें समझना होगा।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। और जैसे कि भी डॉक्टर ने बताया कि साइलेंस को समझना भी बेहद जरूरी है। जरूरी नहीं है कि मदर आपको अपने शब्दों से बताए कि वो कैसा फील कर रही है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो कैसा फील कर रही है, एंड अपनी फीलिंग को डिस्क्राइब करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनके साइलेंस को समझे, बिकॉज कहा जाता है कि वी आर पेरेंट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है प्रेगनेंसी के दौरान। यानी कि सिर्फ मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बेबी को संभालना, उनके फादर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड पोस्टमार्टम डिप्रेशन की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेशंस एंड सोसाइटी का प्रेशर, ये एक ऐसे साइन है जो आपके डिप्रेशन को हमेशा सीवियर बनाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके लाइफ में किसी का इंटरफेयर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो प्लीज ब्रेक लगाइए सोसाइटी के स्टिग्मास पर, सोसाइटी की बातों पर, और अपने पार्टनर का ख्याल रखिए, अपने बेबी का ख्याल रखिए। साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: शानदार सुरे के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर स्वाति फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, ये बताइए कि हस्बैंड और फैमिली का सपोर्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन की रिकवरी में कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? एंजाइटी, अगर फैमिली मेंबर को लगता है कि माँ ओवर रिएक्ट कर रही है, तो उन्हें कैसे समझाना चाहिए कि ये इमोशनल ड्रामा नहीं, एक मेंटल हेल्थ इश्यू है?
1: इस जर्नी में डेफिनेटली हस्बैंड का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फैमिली का भी है, लेकिन हस्बैंड को उसकी प्रॉब्लम्स को उसको वैलिडेट करना चाहिए कि वो क्या फील कर रही है, बिना जज किए उसको सुनना चाहिए, टाइम शेयर करना चाहिए, बेबी केयर शेयर करना चाहिए, रेस्ट और इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। मतलब साथ में उसको ये ना लगे कि ये जो जिम्मेदारी आई है जो वो उस की मेरी जिम्मेदारी है। हस्बैंड तो कई बार ये कहकर मुझे ऑफिस जाना है ये सब करके छूट जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक दोनों ही जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे, मदर पर लोड आ जाता है और वो कि मैं कह नहीं पाऊंगी, हस्बैंड को बुरा लगेगा, ये इन दोनों चीजों में जूझती रहती है। तो इसलिए अगर हस्बैंड को भी ये चीजें समझनी चाहिए, सारी केयर जो है वो बराबर बराबर बांटें कि इस टाइम पे तुम रेस्ट करोगी तो मैं बेबी की केयर करूंगा, या फैमिली मेंबर्स का जो है उसका ध्यान रखे। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है बच्चे के साथ कि भाई इस टाइम पर सोता है तो भाई चलो मदर को हम थोड़ा रेस्ट देते या हम करें, उस चीज को अगर आप वो करें तो डेफिनेटली आप इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बच सकते, क्योंकि अल्टीमेटली हम कुछ भी कह लें, इतना सारी चीजें होने के बाद आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। तो अगर वो रेस्ट मिलेगा तो ये चीजें शायद ना हो।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये बहुत सीवियर हो सकता है, और प्रेगनेंसी के दौरान इवन पोस्टपार्टम के दौरान पेरेंट्स एंड फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है, बिकॉज कहा जाता है कि फैमिली के इमोशनल सपोर्ट से आप किसी भी बीमारी को रिकवर कर सकते हैं। पोस्टपार्टम फेज के दौरान कई बार ऐसा होता है जब फीमेल बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है, प्लीज उनके साथ बैठकर बातें कीजिए, उन्हें कभी मत बोलिए कि वो ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। उनके ओवर थिंकिंग को कम करना फैमिली एंड हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से समझे, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: इस शानदार ट्रैक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूं आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहां हम बात कर रहे हैं पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर स्वाति फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, बात करते हैं रिकवरी एंड हीलिंग फेज की। क्या पोस्टमार्टम डिप्रेशन से बाहर निकलना पॉसिबल है और रिकवरी का प्रोसेस यूजुअली कैसे होता है, जैसे थेरेपी, काउंसलिंग या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस? क्या डाइट, स्लीप और सेल्फ केयर मेंटल रिकवरी में भी रोल प्ले करती है?
1: बिल्कुल, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए दोनों तरह से चलेंगे। काउंसलिंग भी बहुत जरूरी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, उसके अलावा प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर डाइट, योगा, मेडिटेशन और सबसे बहुत जरूरी जिसे हम आजकल के टाइम में कहते हैं ना मी टाइम, वो टाइम, क्योंकि जब एक बेबी आ जाता है ना तो आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है, आपका कोई टाइम नहीं होता। तो उस बीच में जो हम कुछ करना चाहते हैं, जब हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते तो हमें ऑटोमेटिक फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो कुछ टाइम ऐसा उस मदर को, न्यू मदर को मिलना चाहिए कि वो सिर्फ उसका टाइम, उसमें सोए, रेस्ट करे, कुछ भी करे, तो उसको भी ये कनेक्शन फील करेगी कि भाई मेरे को भी समझा जा रहा है और ये जिम्मेदारी सभी उठा रहे हैं। तो नई माँ जितना खुश होगी उतना ही वो अपने बच्चे को अच्छे से ध्यान रख पाएगी। तो हीलिंग हो जाती है इसमें। कई बार होता है कि बहुत ज्यादा वर्स्ट केसेस में मेडिकल आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, मेडिसिन से भी जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार्मफुल होती हैं, वो सेफ होती हैं और आप हील कर जाते हो।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड जितनी भी न्यू मॉम्स आज हमें सुन रही हैं, पोस्टपार्टम फेज के बाद एक फेज आता है जिसे कहा जाता है रिकवरी फेज, जिस रिकवरी फेज में आप खुद का ख्याल रखकर इस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से बाहर आ सकती है। जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि दोनों तरह से काम करेंगे, काउंसलिंग भी लेंगे और लाइफस्टाइल चेंजेस भी करेंगे, यानी कि थेरेपी, काउंसलिंग एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सारी चीजें हैं जो आपको मदद करती हैं इस डिप्रेशन से बाहर आने के लिए, और साथ ही आपकी डाइट, स्लीप और सेल्फ केयर। इसी के साथ आता है मी टाइम। तो जितनी भी न्यू मॉम्स हमें सुन रही हैं आज, प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने आप के लिए टाइम निकालिए। आप आज भी अपनी खुद की प्रायोरिटी होनी चाहिए, बिकॉज कहा जाता है कि जब एक विमेन हेल्दी होती है तब जाकर उनकी पूरी फैमिली हेल्दी हो सकती है। तो अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी 89.6 FM पर एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आरजे अंजलि आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं पोषण की पाठशाला में पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर स्वाति फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। डॉक्टर, आज के सेगमेंट में हम बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। काफी सारे सवालों के जवाब आपसे जाने कि आखिर पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। डॉक्टर, इसी दौरान हमारे पास एक लिसनर का मैसेज आया है। वो पूछना चाहती हैं कि मुझे लगता है डिलीवरी के बाद मैं किसी काम की नहीं हूँ, हर वक्त गिल्ट होता है, क्या मुझे कोई हेल्प लेनी चाहिए? इस सिचुएशन में क्या आप एडवाइस देना चाहेंगी उन्हें?
1: इस सिचुएशन में एडवाइस देना चाहूंगी, पहली बात तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं एक बुरी माँ हूँ। कोई भी बुरी माँ नहीं, कोई माँ बुरी हो ही नहीं सकती। जब आपको जन्म देने का अधिकार है तो ये सारी चीजें, ये सोचना कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट, मैं परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ वाली चीज छोड़ देनी चाहिए। आपका फोकस आपका और अपने बच्चे पर होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों को आप साइड रखें। जितना टाइम आपको मिल रहा है अपने बच्चे के साथ, आपको रेस्ट करना है, आप रेस्ट कीजिए। ना कि ये कि आप सो रहा है तो मैं कुछ और काम कर ली, तो आपको लगता है मुझे रेस्ट करना है, मुझे हेल्प लेनी है, तो डेफिनेटली बोले, हेल्प लेने में कोई कमजोरी नहीं है, कोई बुराई नहीं है।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर। एंड जैसे कि अभी डॉक्टर ने बताया है कि अगर आपको लगता है कि आपको हेल्प लेनी चाहिए, प्लीज जरूर हेल्प लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप मेंटली ठीक नहीं है, पहले अपने पार्टनर से बात कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद पर ध्यान नहीं देते, तो लाइफस्टाइल चेंजेस, बेटर स्लीप, बेटर डाइट, इन सब का ख्याल रखिए। हो सकता है कि आप खुद ब खुद रिकवर कर जाएं। और अगर आपको लगता है कि आप रिकवर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज जाकर मेडिकल हेल्प जरूर लीजिए, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन से निकलना इम्पॉसिबल नहीं है, आप हेल्प के साथ निकल सकते हैं। तो बस यही कहना चाहेंगे कि बातों का सिलसिला ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सफर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: शानदार सुप्रभात के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 FM पर। मैं हूँ आरजी अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है पोषण की पाठशाला, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में। और हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर स्वाति फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल। तो डॉक्टर, अगर एक लाइन में कहना हो तो सोसाइटी को पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में कौन सी सोच बदलनी सबसे ज्यादा जरूरी है, और साथ ही पोस्टपार्टम डिप्रेशन डिलीवरी के बाद सिर्फ बॉडी नहीं दिल का भी ख्याल रखना क्यों जरूरी है?
1: नई मदर के लिए मैं बस ये कहना चाहूंगी कि वो अपना ध्यान रखें और हेल्प लें। और अगर आपको किसी भी तरह का इस तरह का सिम्टम्स फील होता है कि मैं पहले ऐसी नहीं थी, हम अपने से ही महसूस कर लेते हैं कि मैं पहले बहुत खुश रहती थी, मुझे ये काम पसंद था और मुझे वाला काम पसंद, अब आज की डेट में मुझे पसंद नहीं आ रहा, मेरी हर चीज में इच्छा जो है बिल्कुल खत्म होती जा रही है, तो हम इस चीज

0: को अपने से ही वार्निंग साइन समझकर डॉक्टर से कंसल्ट ले सकते हैं। आपका कोई हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रस्टेड बंदा होता है या जिससे आप अपनी बात शेयर कर सको, तो बेटर है आप अपनी बातों को शेयर करो। नहीं है तो सब जगह हेल्पलाइन नंबर है, आप काउंसलिंग सेशन वो ले सकते हैं, क्योंकि काउंसलिंग लेना या किसी भी तरीके की मेडिकल या इमोशनल कोई भी हेल्प लेना वीकनेस नहीं है, ये एक बहादुरी का काम है कि आप अपने लिए समझ रही हैं और अपने बच्चों को एक फ्यूचर, अच्छा फ्यूचर देने के लिए आप आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू अंजलि।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। दोस्तों उम्मीद है आज का एपिसोड आपके लिए सेंसिटिव और जानकारी से भरपूर रहा होगा। पोस्टमार्टम डिप्रेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, ताकि हर नई माँ को समझ और सपोर्ट मिल सके। याद रखिए, बच्चे की देखभाल के साथ साथ माँ की मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और आज पोषण की पाठशाला में पोस्टमार्टम डिप्रेशन से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी डॉक्टर स्वाति शर्मा, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है फ्रॉम मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद, जिन्होंने आज हमें बताया पोस्टमार्टम डिप्रेशन के साइन और सपोर्ट के बारे में। इतनी जरूरी और सिंपल जानकारी हमारे लिसनर्स के साथ साझा की, थैंक यू सो मच मैम। और इसी के साथ फिलहाल मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का, तो मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: टाउन पार्क मॉल ऑफ फरीदाबाद और बटखल लेक की कहानी ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी।
1: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर।
2: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
3: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
2: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
4: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: क्या?
1: नहीं
0: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा मत तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, ट्यूबलाइट
0: गिर गया। साले इतना सही है, तू कूद गया।
2: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
0: क्यों
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
0: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
1: कुछ हटके।
3: हेलो हाय यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके और शो है खास मुलाकात। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ, SIR, जिसका मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। और आखिर ये SIR क्या है, इस सब पर बातें होंगी आज के शो में। मेरे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं, रेडियो महारानी 89.6 FM पर मेरे साथ हैं शिखा अंतिल जी, CEO जिला परिषद। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका।
4: थैंक यू
3: जी।
4: मैं शिखा, CEO जिला परिषद फरीदाबाद। और हमारे जैसा कि आप जानते हैं फरीदाबाद में 6 असेंबलीज हैं, जिसमें से एक तिगांव है। तिगांव विधानसभा क्षेत्र की ERO जो है वो मैं हूँ
3: जी। तो मैम मेरा क्वेश्चन सबसे पहला यही है, ये SIR प्रोसेस आखिर है क्या?
4: SIR बेसिकली एक ये हमारी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है। ये जो हम सब ये जानते हैं कि जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति है उनको अधिकार दिया गया है वोट कास्ट करने का।
3: जी जी।
4: जब वो वोट कास्ट करने का 18 प्लस का अधिकार है तो वो सारा डेटा हम, जैसा कि सबको पता है बूथ होता है, बूथ पे हमारी वोट कास्ट करने जाता है। वो हमारे एक इलेक्टोरल रोल बनता है जिसमें हर वोटर की डिटेल्स होती है
3: जी,
4: कि इस बूथ पर ये 1000 व्यक्ति है या ये 1200 व्यक्ति है जो वोट कास्ट कर सकते। तो उस बूथ के जो वोटर्स हैं उनको हम चेक करना, उनका पूरा डेटा रिकलेक्ट करना इस बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये 2002 में इससे पहले हुआ था
3: जी,
4: और
3: जी।
4: उसके बाद 2026 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की दिशा निर्देश पर ये कार्यवाही चल रही है। 14 जून से ये हमारा स्टार्ट हुआ था
3: जी,
4: और हम लगभग इसके एंडिंग के फेज में है, इन दी सेंस ऑफ की जो हमारे एनोमेशन फॉर्म की कलेक्शन।
3: यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: वंस अगेन वेलकम बैक, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके शो है खास मुलाकात, और हम बात कर रहे हैं जो वोटिंग में थोड़ा सा चेंज हुआ है, एक रिविजन हुआ है इसी के बारे में, जिसको कहा जा रहा है SIR। और हमारे साथ मौजूद हैं शिखा अंतिल जी, CEO जिला परिषद।
1: मेरा सवाल ये आता है कि जब लोगों का ऑलरेडी वोटर लिस्ट में नाम है एड, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी?
2: देखिए, इसकी जरूरत ऐसे पड़ी कि आज मेरे वोटर लिस्ट में नाम है, लेकिन हम लोग जो है हमारे क्षेत्र में जागरूक नहीं है। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, जैसे हम उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो हम लोग ध्यान ये नहीं देते कि हमें उसकी वोट भी डिलीट करा देनी चाहिए, या किसी बहन बेटी की शादी हो गई, या किसी ने अपना घर शिफ्ट कर लिया, तो हम नई जगह जाके वोट तो बनवा ले, लेकिन पुराने इलेक्टोरल रोल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हम एक्नोलेज करते कि हमें वहां से वोट कटवा भी देनी चाहिए। तो रोल में सरप्लस वोटर्स जो है वो रहते हैं, तो उसका बेसिकली इट्स अ शुद्धिकरण।
1: ओके,
2: हम अपने रोल को जो है क्लीनजिंग का प्रोसेस है कि जो हमारे एलिजिबल वोटर्स है वही रहे वहाँ पर। दिस इज द SIR।
0: तो अब हमने जान लिया है कि SIR प्रोसेस क्यों जरूरी है, और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से।

0: और इसी ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ स्वागत है, शो है खास मुलाकात। हम बात कर रहे हैं SIR प्रोसेस के बारे में और मेरे साथ मौजूद है शिखा अंतिल जी, CEO जिला परिषद।
1: आप डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं, बिकॉज अगर कोई नई प्रोसेस बनती है तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसमें लोगों को?
2: बेसिकली SIR फेजेस में चल रहा है। सबसे पहले तो जो हमारा बूथ है, सबसे महत्वपूर्ण इकाई इलेक्शन में रहती है हमारा बूथ, जहाँ पर हम वोट कास्ट करने जाते हैं, वहाँ पर एक बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, BLO। हर बूथ पर एक BLO डेजिग्नेटेड है
1: जी।
2: उस BLO ने एनुमरेशन फॉर्म, एक तरीके का फॉर्म है जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया है, वो हर वोटर का बाय नेम आया है।
1: हाँ,
2: जिसे सपोज करो अगर 1200 वोटर है तो हर वोटर का अपने नाम से एक एनुमरेशन फॉर्म जो है वो BLO के पास है, जो उसने डिस्ट्रीब्यूट किया।
1: हाँ जी।
2: अब आपकी जिम्मेदारी है कि हम उस फॉर्म को भरे, उसमें डेटा जो है वो ठीक भरे और अपने BLO को सबमिट करें।
1: हाँ जी।
2: उसको सबमिट करने से क्या होगा, एक हमारा ड्राफ्ट रोल बनेगा जो 21 तारीख को हमारा पब्लिश होगा, जो हमारे ऐसे वोटर हैं जिनका जिन्होंने अपना नाम बूथ उस पे तो है हमारा वोटर लिस्ट में, लेकिन अपना फॉर्म नहीं भर के दिया, तो उनके नेम्स जो है वो उस वोटर लिस्ट में से काट दिए जाएंगे।
0: ओके, तो ये भी बात हो गई है कि SIR में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन वो इम्पोर्टेंट है, तो अगर आप प्रोसेस करते हैं तो इन बातों का ख्याल रखिएगा। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है खास मुलाकात। मेरे साथ शिखा अंथिल जी जुड़ी हुई हैं, सीईओ जिला परिषद। हम बात कर रहे हैं एसआईआर के बारे में, जो अभी वोटिंग लिस्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं, एक रिवीजन हुआ है। अब इस रिवीजन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है, क्यों ये रिवीजन किया गया है, बस इसी सब पर बातें चल रही हैं।
1: अब यहां तो हमने बात कर ली कि जिनका नाम ऑलरेडी एड है वोटर लिस्ट में, लेकिन जो यंगस्टर पहली बार वोट करने जा रहे हैं या जिनका नाम पहली बार एड होगा, तो उनके लिए भी क्या कुछ अलग तरीके के चेंजेस किए गए?
2: बिल्कुल अब बढ़िया बात। अभी ये जो हमारा प्रोसेस चल रहा है एसआईआर का, ये चल रहा है केवल जो एग्जिस्टिंग वोटर्स हैं उनका चेकिंग का, उनके फॉर्म्स कलेक्ट होंगे, जो एलिजिबल है वो रहेंगे। लेकिन जैसा कि आपने पूछा नए वोटर्स का, तो 21 जुलाई को हमारा एक ड्राफ्ट रोल बनेगा और उसके बाद हम एक महीना तक जो है जो ऐसे वोटर्स है, जो एलिजिबल वोटर्स है, वो अपना फॉर्म 6 होता है नई वोट बनवाने के लिए, उस वो भर करके अपने नई वोट बनवा सकते हैं।
1: ओके,
0: तो देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमारे लिए कितनी जरूरी थी, जो जिसके बारे में हम अक्सर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस डबल करो।

0: तो ऐसे ही धमाकेदार गाने मैं आपको सुनाती रहूंगी। मैं आपके साथ गीत हूँ, शो है खास मुलाकात। मेरे साथ शिखा अंतिल जी जुड़ी हुई हैं, सीईओ जिला परिषद। हम बात कर रहे हैं एसआईआर प्रोसेस के बारे में।
1: अब कोई इंसान जो है जिसका एड्रेस चेंज हुआ है या नया नया फरीदाबाद में शिफ्ट हुआ है, तो क्या उनके लिए कुछ अलग प्रोसेस है?
2: हाँ बिल्कुल, उनके लिए शिफ्टिंग का रहेगा, वो भी इसके बाद हमारा जब एनुमेरेशन फॉर्म कलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे सपोज करो एक बूथ में हमारे 1000 वोट थे, 600 फॉर्म हमारे कलेक्ट हो गए, 400 वोटर्स रह गए
1: जी।
2: तो उसमें से जो शिफ्टिंग वाला डेटा है वो हम पब्लिश भी करेंगे। 400 वोटर्स अगर हमें नहीं मिले तो हर बूथ पर, हर पब्लिक प्लेस पे हम उसको पेस्ट करेंगे कि ये थे इस बूथ पे
1: जी,
2: जो किसी कारणवश हमें नहीं मिला है। अगर हमें कंफर्म है शिफ्टेड है तो हम शिफ्टेड कर देते हैं, डेड है तो डेड, और अगर एब्सेंट है समहाउ किसी को ना पता लगे ड्यू टू सर्टेन रीजन या कोई अपना फॉर्म नहीं दे पाया तो उसके लिए भी सफिशियंट टाइम है
1: जी,
2: वो वहां पर जाकर अपना कॉन्टेक्ट कर सकते हैं
1: जी।
2: और जो वाक्य में जो शिफ्ट हो ही गए हैं उनके लिए फिर आफ्टर ड्राफ्ट रोल, जब हम फॉर्म 6 की जो बात कर रहे थे कि नहीं वोट बनवा सकते हैं, उसी टाइम पर फॉर्म 8 में अपना शिफ्ट भी करा सकते हैं।
0: तो वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है खास मुलाकात।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: जो है खास मुलाकात मेरे साथ शिखा अंतिल जी जुड़ी हुई हैं, सीईओ जिला परिषद। बातें चल रही हैं एसआईआर प्रोसेस के बारे में।
1: अब कोई नई प्रोसेस जब बनती है तो लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, काफी सारे मिथ भी होते हैं उनके दिमाग में, डाउट्स होते हैं, तो इस एसआईआर के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को, ये मैं जरूर।
2: देखिए, जब हम 18 साल के होते हैं तो सबसे जो पहली खुशी यही होती है, मुझे याद है जो पहली खुशी थी कि भाई अब मैं वोट कास्ट कर पाऊंगी, बीइंग आई एम ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नाउ। तो उसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छे से निर्वहन करें, इसके लिए हमें अपना एनुमरेशन फॉर्म अपने बीएलओ को जमा कराना जरूरी है। इससे हमारा जो राइट है वो इंटैक्ट रहेगा और हम वोट अपनी कास्ट कर पाएंगे। दूसरा, इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मांगे जाएंगे, जो 2002 में सपोज करो जिसके खुद का वोट नहीं है या जिसके पेरेंट्स है वो ट्रेस आउट नहीं हुआ, उस केस में डॉक्यूमेंटेशन है। तो आप ये विश्वास कीजिएगा, ये जो गाइडलाइंस है इलेक्शन कमीशन की तरफ से है, अपने बीएलओ पे विश्वास कीजिएगा। डॉक्यूमेंट देने में किसी प्रकार की कोई हिचक ना रखे, ये केवल और केवल आपको अपने अधिकार से मिलाने के लिए ये प्रक्रिया है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने जो है एनुमरेशन फॉर्म आप अपनी जिम्मेदारी मानते हुए सबमिट कीजिए। 14 जुलाई इसकी अभी लास्ट तारीख है, तो अपने अपने बीएलओ से जरूर संपर्क करके अपना एनुमरेशन फॉर्म सबमिट कीजिए।
1: जी, वैसे हमने जान ही लिया है मैम से कि एसआईआर प्रोसेस कितना इम्पोर्टेंट है और आपको इसका हिस्सा जरूर बनना है। थैंक यू सो मच मैम मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए।
2: थैंक यू सो मच गीत, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई होप आपके प्लेटफॉर्म से हम मैक्सिमम लोगों तक फरीदाबाद को जो है अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे।
1: डेफिनेटली मैम, थैंक यू सो मच। और व्यूअर्स लिसनर्स, आप सुनते देखते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, आपकी एक छोटी सी मुस्कान किसी का दिन बना सकती है, तो आज से ही स्माइल शेयर करो और हैप्पीनेस

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब सही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती है सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: नंगे पैरी जल्दी

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस। हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: चलाना।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
5: सुनो,
4: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
5: अरे रास्ता रास्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे
6: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

सोचो, एक ऐसी लड़की जो बचपन से ही गाती थी, लेकिन उसके पास ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड था, ना ही बॉलीवुड तक पहुंचने का कोई सीधा रास्ता। फिर भी एक दिन उसकी आवाज लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचने वाली थी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और ये कहानी है प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। ऋचा शर्मा का जन्म फरीदाबाद हरियाणा में हुआ था। बचपन से ही उनका झुकाव म्यूजिक की तरफ था। जब उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद में बिजी रहते थे, तब ऋचा घंटों तक गाने सुनना और गाना पसंद करती थी। उनकी फैमिली ने भी उनके टैलेंट को जल्दी पहचान लिया। इसी वजह से बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। लेकिन म्यूजिक की दुनिया उतनी आसान नहीं होती जितनी बाहर से दिखती है। हजारों लोग सिंगर बनने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी पहचान बना पाते हैं। ऋचा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके पास टैलेंट था, लेकिन टैलेंट को सही मौका मिलना भी जरूरी था। क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ने उनकी आवाज को मजबूत बनाया। उन्होंने सिर्फ सीखने पर ही फोकस नहीं किया, बल्कि गाने के इमोशंस को समझना भी सीखा। यही वजह थी कि उनकी सिंगिंग में एक अलग ही रूहानियत महसूस होती थी। जैसे जैसे वक्त बीता, ऋचा का सपना और बड़ा होता गया। अब उनकी मंजिल बॉलीवुड थी, लेकिन मुंबई की म्यूजिक इंडस्ट्री में एंट्री करना इतना आसान नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि असली स्ट्रगल अब शुरू होने वाला है। और कैसे पहुंची वो मुंबई और कैसे रहा उनका स्ट्रगल, करेंगे इन सब चीजों के बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बाहर का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

हर साल हजारों लोग मुंबई आते हैं अपने सपने लेकर, लेकिन ज्यादातर सपने वहीं भीड़ में खो जाते हैं। क्या ऋचा शर्मा का सपना भी उनमें से एक बनने वाला था? स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं ऋचा शर्मा की। म्यूजिक इंडस्ट्री में पहचान बनाना बहुत मुश्किल होता है। ऋचा शर्मा ने भी ऑडिशंस दिए, लोगों से मिली और हर छोटे बड़े मौके को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन शुरुआती सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कभी किसी म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचना मुश्किल होता, कभी अपनी आवाज को सही प्लेटफॉर्म मिलना, कई बार टैलेंट होने के बाद भी मौके नहीं मिलते, और यही सब ऋचा के साथ भी हो रहा था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो लगातार रियाज करती रही। उन्हें पता था कि अगर एक बार भी सही मौका मिल गया तो उनकी आवाज लोगों के दिलों तक जरूर पहुंच जाएगी। धीरे धीरे इंडस्ट्री में लोग उनकी आवाज को नोटिस करने लगे। उनकी सिंगिंग में क्लासिकल टच था, लेकिन साथ ही एक मॉडर्न फील भी थी। यही कॉम्बिनेशन उन्हें दूसरे सिंगर से अलग बनाता था। और फिर आया वो मौका जिसका इंतजार वो सालों से कर रही थी, एक ऐसा गाना जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। कौन सा था वो गाना, करेंगे इसके बारे में बात, मगर अभी फिलहाल आप सभी के लिए रेडियो महारानी 89.6 पर ये गाना। आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा।

0: मम्मा मम्मा आपको गर्मी लगती है क्या?
1: बेटा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सुबह से 3 बार नहा चुकी हूँ, फिर भी वही हाल है मेरा।
0: तो फिर मम्मा बाहर जो डॉगी है और जो छत पे जो बर्ड्स आते हैं उन्हें भी तो लगती होगी ना मम्मा?
1: शायद मैंने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है मुझसे?
0: मम्मा जब आप इतनी गर्मी से परेशान हो तो सोचो, वो बेजुबान तो बता भी नहीं पाते, उन्हें कितनी गर्मी से दिक्कत होती है। तो मम्मा हम उनके लिए पानी तो रख सकते हैं ना?
2: कभी कभी इंसानियत की सबसे खूबसूरत बात हमें किसी किताब से नहीं, एक छोटे बच्चे की मासूमियत से सीखने को मिलती है। इस तपती गर्मी में एक छोटा सा बोल पानी का किसी बेजुबान की प्यास ही नहीं उसकी जान भी बचा सकता है। तो इस गर्मी घर के बाहर जानवरों के लिए और बेल्कनी या टेरेस में बर्ड्स के लिए थोड़ा सा पानी जरूर रखिए।

ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ। जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

कभी कभी एक ही गाना किसी आर्टिस्ट की पूरी जिंदगी बदल देता है, और ऋचा शर्मा के लिए भी वो पल आ चुका था। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग करना हर सिंगर का सपना होता है। ऋचा को जब बड़े प्रोजेक्ट्स में गाने का मौका मिलना शुरू हुआ था, तब लोगों ने पहली बार उनकी आवाज को सीरियसली नोटिस किया। उनकी आवाज में एक अलग ही पावर थी। वो रोमांटिक गाना भी गा सकती थी और हाई एनर्जी ट्रैक भी। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे अलग बनाया वो था उनका सोलफुल एक्सप्रेशन। जब ऋचा गाती थी तो लगता था कि वो सिर्फ लिरिक्स नहीं गा रही बल्कि उन्हें महसूस भी कर रही हैं। धीरे धीरे उनके गाने हिट होने लगे, रेडियो स्टेशंस पर उनकी आवाज सुनाई देने लगी, म्यूजिक लवर्स उनका काम याद कर रखने लगे, और बॉलीवुड को एक ऐसी सिंगर मिल गई थी जिसके गाने में सुर के साथ इमोशन भी था। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ प्रेशर भी आता है। अब चैलेंज सिर्फ सिंगर बनना नहीं था, चैलेंज था अपनी पहचान को बनाए रखना, और ये काम और भी मुश्किल था। और कैसे उन्होंने फेम के बावजूद जमीन से जुड़ना सही समझा, करेंगे इसके बारे में और भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन बिजी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5,000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो। मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

बहुत लोग सक्सेस मिलते ही बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं उतना ही अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान, और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। ऋचा शर्मा की पहचान सिर्फ एक प्लेबैक सिंगर की नहीं बनी, उन्होंने डिवोशनल म्यूजिक, सूफी म्यूजिक और लाइव परफॉर्मेंसेज में भी अपनी अलग जगह बनाई। ये उनकी वर्सेटिलिटी थी। वो सिर्फ फिल्म सॉन्ग्स तक सीमित नहीं रही, उन्होंने हर जॉनर में अपनी आवाज का जादू दिखाया। म्यूजिक इंडस्ट्री में ट्रेंड्स बदलते रहे, नए सिंगर्स आते रहे, लेकिन ऋचा शर्मा की आवाज की डिमांड बनी रही। इसका सबसे बड़ा रीजन था उनका डेडिकेशन। आज भी वो रियाज को उतनी ही इंपॉर्टेंस देती है जितनी करियर के शुरुआती दिनों में देती थी। उनके लिए म्यूजिक सिर्फ प्रोफेशन नहीं था, म्यूजिक उनकी पहचान था, और इसी वजह से आज भी उनकी आवाज में वही सिंसियरिटी सुनाई देती है जो करियर के शुरुआत में थी। लेकिन उनकी जर्नी का सबसे बड़ा लेसन अभी बाकी था, तो आगे क्या हुआ सुनने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

कुछ सिंगर्स गाने गाते हैं और कुछ सिंगर्स गाने को जिंदा कर देते हैं। ऋचा शर्मा उन्हीं आवाजों में से एक है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं इंडियन प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। आज जब ऋचा शर्मा का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक सिंगर को याद नहीं करते, वो एक सफर को याद करते हैं। एक ऐसा सफर जो टैलेंट, मेहनत और पेशेंस से बना है। फरीदाबाद की एक लड़की से लेकर बॉलीवुड की पहचानी हुई आवाज बनने तक का सफर आसान नहीं था। इस सफर में स्ट्रगल था, इंतजार था, चैलेंजेस थे, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, म्यूजिक के लिए उनका प्यार। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने सिर्फ देखने से पूरे नहीं होते, उनके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। और जब टैलेंट के साथ डेडिकेशन जुड़ जाता है तो एक आवाज लाखों दिलों की आवाज बन जाती है। और जब भी ऋचा शर्मा गाती है तो उनके सुर सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते, वो सीधा दिल तक पहुंचते हैं। और शायद इसीलिए उनका नाम इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में एक खास जगह बना के रखता है। ऋचा शर्मा एक आवाज, एक जज्बा और एक ऐसी कहानी जो हर देखने वाले को इंस्पायर करती है। तो ये थी पूरी कहानी इंडियन प्लेबैक सिंगर ऋचा शर्मा की। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। नंबर है हमारा 9654896896। आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम हैंडल और साथ में फेसबुक हैंडल पर भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलूंगा आप सभी से सोमवार से शुक्रवार शाम 5 से 8। तब तक ले बाय, टेक केयर एंड सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: मेरा नाम है पायल और हम सब ये आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा है। ऑर्गन इंडिया एक गैर सरकारी सामाजिक संस्थान पराशर फाउंडेशन की पहल है और हम हर कार्यक्रम में आपके लिए अंगदान, नेत्रदान और देहदान से जुड़ी हुई सूचना और अनोखी कहानियां लेकर आएंगे। आज एक ऐसी ही दिलचस्प कार्यक्रम के साथ हम फिर लौटे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आप सबने हमारे इस कार्यक्रम में अंगदान, उतक दान और देहदान से जुड़े लोगों के अनुभवों को सुना है तथा इन विषयों से जुड़े डॉक्टर्स के द्वारा दी गई जानकारी ली है। हमारे देश में उतक दान की जब हम बात करते हैं तो ज्यादातर लोग आई डोनेशन और स्किन डोनेशन के बारे में जानते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जो उतक दान से जुड़ी जानकारी देंगे, तो सुनते रहिए, हम लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: एक बार फिर आप सभी का ऑर्गन इंडिया के खास कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में स्वागत है। आज हमारे साथ ऑर्गन इंडिया से डॉक्टर सौरभ शर्मा है और वो बात कर रहे हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी से, जो हमें स्किन डोनेशन से जुड़ी खास जानकारी देंगे। तो चलिए उनके पास चलकर बात करते हैं।
1: धन्यवाद पायल। दोस्तों, हम हमेशा आपसे हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बात करते हैं और उनके विशेषज्ञों से आपको रूबरू करवाते हैं, लेकिन आज का ये कार्यक्रम हम खास तौर पे स्किन यानी कि त्वचा के प्रत्यारोपण के बारे में लेके आए हैं। दोस्तों, हमने अपने पहले के कई कार्यक्रमों में टिश्यू डोनेशन यानी कि ऊतक दान के बारे में बताया है और स्किन डोनेशन भी एक तरह का ऊतक दान ही है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील राठौर जी, जो कि बंसल हॉस्पिटल भोपाल में एक प्लास्टिक सर्जन के तौर पर कार्यरत हैं और भोपाल शहर के जाने माने विशेषज्ञों में इनकी गिनती होती है। डॉक्टर राठौर, मैं सभी दर्शकों और ऑर्गन इंडिया की तरफ से आपका स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, धन्यवाद कि मुझे ये मौका मिला कि मैं अपने ज्ञान को दूसरे लोगों के साथ बांट सकूं और ऑर्गन इंडिया के इस ऑर्गन डोनेशन अभियान का हिस्सा बन सकूं, मुझे बहुत खुशी।
1: डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि स्किन डोनेशन क्या होता है, स्किन ट्रांसप्लांट या ग्राफ्टिंग किस तरह के मरीजों के काम में आती है।
2: हाँ देखिए, जिस तरह आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, उसी तरह स्किन ट्रांसप्लांट होता है। स्किन ट्रांसप्लांट का मतलब है किसी और व्यक्ति की स्किन को यदि मरीज में दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है तो उस चीज को हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। लेकिन स्किन ग्राफ्टिंग जो है वो एक अलग है। स्किन ग्राफ्टिंग में पेशेंट की ही स्किन पेशेंट के घाव भरने के लिए लगाई जाती है और स्किन ट्रांसप्लांट में किसी दूसरे व्यक्ति की स्किन को पेशेंट में लगाया जाता है तो उसे हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्किन ट्रांसप्लांट बहुत ही कारगर मेथड है, स्पेशली बर्न वाले पेशेंट्स में, जिनमें जो है अधिक डिग्री का और अधिक मात्रा में बर्न होता है। जैसे कि आप समझिए कि यदि किसी को 60-70% का बर्न है तो उसके पास इतनी अवेलेबल स्किन नहीं है कि हम उस घाव को जो कि उस बर्न के बाद हुआ है उसको स्किन से भर पाए, तो उन कंडीशंस में हमें स्किन डोनर्स की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि कई बार रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में बहुत एक्सटेंसिव ट्रॉमा होता है जिसकी वजह से शरीर में बड़े बड़े घाव हो जाते हैं, तो उन कंडीशंस में भी जो है स्किन डोनर की हमें जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एसिड विक्टिम्स जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी एक्सटेंसिव बर्न होता है, उसमें भी स्किन डोनेशन की बात होती है। यदि आप आंकड़ों की बात करें तो साल भर में लगभग 10 लाख लोग जलते हैं और कम से कम 3-4 लाख लोगों को स्किन डोनेशन से बहुत हेल्प मिलती है और इनको होने वाले संक्रमण के खतरे और मृत्यु का जो खतरा है उसे स्किन डोनेशन के माध्यम से टाला जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि स्किन डोनेशन किस तरह से किया जाता है।
2: देखिए, स्किन डोनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइव डोनर और आफ्टर डेथ दोनों तरीके से स्किन डोनेट किया जा सकता है। लाइव डोनर का मतलब है कि कोई भी जिंदा आदमी, चाहे वो उस पेशेंट का रिश्तेदार हो या फिर कोई दोस्त हो या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो स्किन डोनेशन के लिए इंटरेस्टेड हो, कोई भी 18 साल का व्यक्ति जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है स्किन को डोनेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि किस किस तरह से हम और कहां कहां से स्किन ले सकते हैं। जनरली हम बॉडी के हिडन पार्ट मतलब छुपे हुए भागों से स्किन लेते हैं, जैसे कि थाइज हो गई या फिर बटक्स वाले रीजन हो गए, ताकि आपको स्किन हार्वेस्ट करने के बाद भी उस पर्टिकुलर एरिया की जो डिफॉर्मिटी है वो आपके कपड़ों में ढकी हुई रहती है। कोई बहुत मेजर विकृति इसमें नहीं बनती है क्योंकि इसमें स्किन का सुपरफिशियल जो पार्ट है वो लिया जाता है। स्किन की दो लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस और डर्मिस। इसमें एपिडर्मिस और डर्मिस का आधा भाग लिया जाता है, तो वो नीचे जो थाइस पे आपके घाव बनता है वो अपने आप 21 डेज में ऑटोमेटिकली हील अप हो जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं आफ्टर डेथ। आफ्टर डेथ विद इन 6 आवर्स जो है हम स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं। स्किन को हार्वेस्ट हम दोनों लेग से करते हैं, दोनों अपर लिम्स मतलब ऊपर के दोनों हाथों से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया पे ड्रेसिंग कर दी जाती है, तो आपको बॉडी भी बहुत ज्यादा म्यूटिलेटेड कंडीशंस में नहीं दिखती है, ताकि आपके जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैं वो भी अफेक्ट नहीं होंगे।
1: डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम कुछ देर के लिए रुकेंगे और थोड़ी ही देर में हम वापस आके अपनी इस बात को कंटिन्यू करेंगे।

फ्लॉज पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मेरे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं ऑर्गन इंडिया का कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। हम बात कर रहे हैं भोपाल शहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सुनील राठौर जी से। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम जिंदा रहते हुए और मरने के बाद दोनों तरह से स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो आपने बताया कि स्किन में जो दो लेयर्स होती हैं उसमें से सिर्फ हम ऊपरी लेयर का इस्तेमाल करते हैं, सुपरफिशियल लेयर लेते हैं। तो जब हम जिंदा रहते हुए अगर अपने और स्किन को डोनेट करते हैं जहाँ से हम स्किन ले रहे हैं, तो उस पार्ट पे जो अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, वो चीज़ें नहीं दिखती क्या?
2: देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने कि जैसे कि मैंने आपको बताया जो स्किन है उसका ऊपरी लेयर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बॉडी जो है, स्किन जो है वो बॉडी का आउटर कवरेज है, तो स्किन की ऊपरी जब हम लेयर लेते हैं तो उसमें अंदर का कोई भी मांसपेशी या ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं होता और स्किन एज ए बॉडी कवर यूज किया जाता है या बॉडी कवर यूज होता है। इसलिए आपको किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं होगी। इवन यदि आप स्कारिंग और डिफॉर्मिटी की बात करें कि वो गंदा दिखेगा, सुपरफिशियल लेयर लेने की वजह से वहां पे कोई सिग्निफिकेंट स्कार भी नहीं आता है। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि हम बॉडी के जो है हिडन पार्ट से लेते हैं, तो आपको इस बारे में कि कोई शारीरिक कमजोरी होगी, कोई मेजर डिफॉर्मिटी होगी या कोई बहुत भद्दा सा स्कार आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया कि हम मरने के बाद भी अपनी स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो मरने के बाद हम कितनी देर के अंदर, आपने बताया कि 6 घंटे के अंदर हम स्किन डोनेट कर सकते हैं, तो उन 6 घंटों में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन प्रिकॉशंस को लेना चाहिए, अगर ऐसी कोई एडवाइस आप देना चाहें?
2: स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें इवन मरने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल सपोर्ट सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो कोई भी स्पेशल प्रिकॉशन आपको रखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है कि जिस पेशेंट की आप स्किन हार्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर जो डोनर आपके पास अवेलेबल हो वो किसी भी तरह से कुछ इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, कोई स्किन का इन्फेक्शन, कोई स्किन का ट्यूमर या फिर कोई स्किन की गंभीर बीमारी उस पेशेंट को ना हो। यदि उस पेशेंट को इस तरह का कोई भी बीमारी नहीं है तो 6 घंटे के अंदर हम किन्हीं भी कंडीशंस में स्किन को हार्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट स्पेशल प्रिकॉशन।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम पर जिसको हम ऑर्गन डोनेट कर रहे हैं उनसे हमारा ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैच होना जरूरी है, HLA मैच होना जरूरी है, तभी हम अपना कोई ऑर्गन रेसिपिएंट को दे सकते हैं, तो क्या स्किन डोनेशन के टाइम पर भी ब्लड ग्रुप का मैच होना या टिश्यू मैच का होना बहुत जरूरी है?
2: बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। स्किन ट्रांसप्लांट या स्किन डोनेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यही है कि स्किन डोनेशन के लिए किसी भी तरह का टिश्यू मैच या HLA मैचिंग करने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कोई भी हेल्दी इंडिविजुअल या फिर कोई भी पेशेंट आफ्टर डेथ स्किन को डोनेट कर सकता है, तो आपको किसी पर्टिकुलर ब्लड ग्रुपिंग या किसी पर्टिकुलर टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट स्किन डोनेशन में नहीं होती।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कि कॉर्निया और दूसरे टिश्यूज को हम स्टोर करके रख सकते हैं, तो क्या हम स्किन को भी स्टोर कर सकते हैं, और अगर हाँ तो कितने समय के लिए हम इसे स्टोर कर सकते हैं?
2: हाँ बिल्कुल, स्किन ट्रांसप्लांट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि जैसे आपने सुना होगा कि लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट या किडनी ट्रांसप्लांट वाले जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे के बाद स्टोर नहीं कर सकते हैं उनको। आपको कोई ना कोई इमीडिएट रिसिपिएंट की जरूरत होती है उसके ट्रांसप्लांट करने के लिए, लेकिन स्किन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्किन में हम स्किन बैंक में स्किन को 5 साल तक स्टोर कर सकते हैं, इवन नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 21 डेज के लिए जो है स्किन को स्टोर कर सकते हैं। तो स्किन डोनेशन में ये जरूरी नहीं कि जब आप डोनेट करने जा रहे हैं या आपका पेशेंट स्किन को डोनेट करने जा रहा है तो इमीडिएट रिसिपिएंट की नीड हो, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उस स्किन को 5 साल तक किसी भी और मरीज के लिए यूज किया जा सकता है, इमीडिएट रिसिपिएंट की इसमें नीड नहीं।
1: डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर से, और कुछ ही समय में हम वापस आएंगे और अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे।
3: आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेह की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, एकता का परचम चम ओर फहराएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं। दिया है हौसलों की उड़ान का, दिया है उत्सर्ग के सम्मान का, दिया है राम का रहमान का, दिया है समग्र हिंदुस्तान का। जीवन संगीत बजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं, अंतरतम के विश्वास संग बाती नेहीं की सजाएं, आओ मिलके एक दिया जलाएं।

0: वो सबसे बड़ा मिथ है कि स्किन डोनेट करने पे हमारी बॉडी या हमारी उस बॉडी का पर्टिकुलर पार्ट विक्षिप्त हो जाता है, म्यूटिलेटेड हो जाता है, तो क्या ये सही है?
1: देखिए, ये मिथ जो है, ये भ्रम जो है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि स्किन डोनेशन में जो स्किन ली जाती है उसकी ऊपरी परत ली जाती है, उसको परत लेने के बाद जो शरीर का जो घाव रहता है वो 2 से 3 हफ्ते में बॉडी उसको अपने आप हील कर लेती है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, हल्का फुल्का निशान जरूर रह सकता है, कुछ कुछ पेशेंट्स में देखने को मिलता है। जनरली स्किन डोनेशन के टाइम हम ट्राई करते हैं कि बॉडी के हिडन पार्ट से स्किन ली जाए, जैसे आपके थाइस के पीछे का एस्पेक्ट जो आपके कपड़ों के बाहर जो है जनरली दिखाई नहीं देता, और स्किन अकेले लेने की वजह से उनके अंदर के जो मांसपेशियां या फिर जो ऑर्गन्स हैं उनमें किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होता। तो आपका ये कहना कि बॉडी म्यूटिलेटेड हो जाती है या फिर कोई शारीरिक कमजोरी डेवलप होगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। इस तरह की कोई भी शारीरिक कमजोरी स्किन डोनेशन के बाद बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती।
0: जी, एक दूसरा भ्रम भी है जो अंग भंग को लेकर है, कि हमारी रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफी इसके आड़े आते हैं। जैसे कि हिंदू मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि अंग भंग का कॉन्सेप्ट है, अगर आप जैसे दुनिया में आए थे आप वैसे ही दुनिया से जाने चाहिए, अदरवाइज आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो ये अंग भंग का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा आप इसके बारे में।
1: देखिए, स्किन डोनेशन मैं ये चीज अच्छी है कि किसी भी तरह का कोई भी अंग भंग जो है आपको मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें हम जो है वो सिर्फ स्किन का जो है हार्वेस्ट करते हैं, उसके बाद उस पर्टिकुलर एरिया में जो है ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो किसी भी तरह का जैसा हाथ या पैर का कटना, उस तरह का कटना जो है स्किन डोनेशन में नहीं किया जाता है, कोई भी हाथ या पैर नहीं निकाला जाता है। मृत शरीर के बॉडी पार्ट्स सारे अटैच होते हैं, उन बॉडी पार्ट्स के ही जो हिस्से रहते हैं उनसे स्किन की ऊपरी लेयर निकाल दी जाती है। तो आपका ये कहना कि स्किन डोनेशन के बाद जो आपको बॉडी मिलेगी किसी तरह का उसमें अंग भंग रहेगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी किसी भी तरह का बॉडी म्यूटिलेशन या अंग भंग आपके मृत शरीर में देखने को नहीं मिलेगा।
0: एक और भ्रांति है कि अगर मेरी स्किन पर कोई टैटू है या स्टिकर है तो मैं स्किन डोनेट नहीं कर पाऊंगा अगर मैं।
1: नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपके स्किन पर टैटू है या फिर कोई मार्क है तो आप स्किन डोनेट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके शरीर पर टैटू हो या नहीं हो, किसी भी पार्ट की बॉडी की स्किन ली जा सकती है। हाँ, ये जरूर है कि उस टैटू वाले पार्ट की यदि स्किन को लेंगे तो सामने वाले जो हम ट्रांसप्लांट करेंगे तो उसमें भी वो टैटू ट्रांसप्लांट हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को छोड़ दें और बाकी जो नॉर्मल स्किन है वहां से स्किन हार्वेस्ट की जाती है। हाँ, ये यदि है कि आपके होल बॉडी पे आपने टैटू करवा के रखा है फिर भी और कोई डोनर अवेलेबल नहीं है, तो लाइफ सेविंग सिचुएशन में हम उस टैटू वाले व्यक्ति की स्किन भी एज ए डोनेशन ले सकते।
0: जी, और जब हम कोई स्किन लेते हैं और जब हम उसका ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो रिसिपिएंट होता है उसके बॉडी पर वही स्किन मौजूद रहती है या फिर सिर्फ ड्रेसिंग के लिए यूज की जाती है?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल किया। स्किन ट्रांसप्लांट और बाकी ट्रांसप्लांट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो स्किन है, दूसरे पेशेंट की जो स्किन ली जाती है वो एक टेम्पररी कवर प्रोवाइड करती है। शुरुआती दौर में 4 से 5 दिन में जो घाव है उसके ऊपर स्किन अटैच हो जाती है, उस अटैच होने की वजह से उस घाव को वो कवर कर देती है, और उस दौरान का जो संक्रमण है और बॉडी के जो पोषक तत्व उस घाव से बह रहे हैं वो रुक जाते हैं, उसके रुकने की वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो कम हो जाता है और मरीज की जान को बचाया जा सकता है। लेकिन 25 से 30 दिन बाद, लगभग 1 महीने के बाद, धीरे धीरे करके वो स्किन जो है वो झड़ने लगती है, लेकिन जो घाव है वो सिकुड़ने लगते हैं, पेशेंट रिकवर करने लगता है, और पर्टिकुलर घाव यदि उस स्किन के झड़ने के बाद जो बचते हैं उन पे जो स्किन की रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम हो जाती है, और उस कम रिक्वायरमेंट को हम जो पेशेंट की अवेलेबल स्किन है उस स्किन से कवर कर देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एक टेम्पररी बायोलॉजिकल कवर है। लेकिन इसका सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये है कि ये एक बेस्ट बायोलॉजिकल कवर है, किसी भी ड्रेसिंग या किसी भी दवाई से अच्छा है कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन का एक पार्ट यदि उस घाव पे रखा जाता है तो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है वो एक नेचुरल वे में कन्वर्ट हो जाता है, और मरीज के बचने की संभावना है, स्पेशली एक्सटेंसिव बर्न जो बहुत ज्यादा जले हुए रहते हैं या फिर बहुत ज्यादा बड़े ट्रामा वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें, उनकी जान को बचाने में ये तरीका बहुत कारगर है।
0: डॉक्टर साहब, हमने बहुत बार सुना है कि

0: फेस ट्रांसप्लांट भी इस दुनिया में हुआ है, तो इस तरह की कोई चीज में भी ये चीज काम आती है स्किन डोनेशन?
1: नहीं नहीं, स्किन डोनेशन और फेस ट्रांसप्लांट दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। स्किन डोनेशन में हम स्किन की एक पतली लेयर को जो है मृत शरीर या किसी जिंदा आदमी से जले हुए मरीज में लगाते हैं उसकी जान को बचाने के लिए। फेस ट्रांसप्लांट टोटली डिफरेंट है, उसमें किसी मृत शरीर के 6 घंटे के अंदर जो है उसके पूरी चेहरे और गर्दन की स्किन को छोटी छोटी रक्त वाहिकाओं के साथ निकाला जाता है,
0: पूरी मोटाई के साथ
1: निकाला जाता है, और उसमें रक्त की नलियां होती हैं जिनको हम दूसरे पेशेंट में, स्पेशली बर्न विक्टिम्स जो रहते हैं जिनमें एक्सटेंसिव बर्न है, जिनमें कोई और प्रोसीजर्स नहीं कर सकते हैं फेस को सुधारने के लिए, तो उन कंडीशंस में उस पूरी मोटी स्किन को जो है पूरे फेस के स्किन को दूसरे पेशेंट के फेस पे लगाया जाता है और छोटी छोटी रक्त नलिकाओं को जोड़ा जाता है, तो जो उनका जो नेचुरल ब्लड है वो ब्लड जो है उस ट्रांसप्लांटेड स्किन में सप्लाई होता है और ऑलमोस्ट नेचुरल एक्सेप्टेबल लुक देता है। आजकल एडवांस प्लास्टिक सर्जरी के इस दौर में फेस ट्रांसप्लांट भी जो है वो एक बहुत ही अच्छा इनोवेशन है, स्पेशली बर्न विक्टिम्स और ज्यादा जले हुए मरीजों में जिनमें कॉस्मेटिक डिसफिगरमेंट हो जाता है। लगभग काफी कुछ फेस ट्रांसप्लांट सर्जरीज हो चुकी हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले 5 से 10 साल में इस जो विधा है उसमें गति आएगी।
0: बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से कि किन किन परिस्थितियों में हम स्किन डोनेट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जी, स्किन डोनर को सिलेक्शन करने के कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं। सबसे पहला रहता है इन्फेक्शन। ये आपको अश्योर होना चाहिए कि जिस पेशेंट को या जिस मृत शरीर को आप एज ए डोनर यूज कर रहे हैं, यानी कि जो डोनेट करने के लिए रेडी है, उसको किसी भी तरह का इन्फेक्शन जैसे HIV, हेपेटाइटिस बी वायरस या हेपेटाइटिस सी वायरस का कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई स्किन का कैंसर ना हो, कोई स्किन की और इन्फेक्शियस गंभीर बीमारी ना हो, कोई और बॉडी में बहुत सीवियर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उस पेशेंट को ना रही हो। यदि ये सारी चीजें उस पेशेंट्स में नहीं होती हैं या पेशेंट या किसी व्यक्ति में जो लाइव डोनर है, तो उसकी स्किन हम जरूर डोनेट करवा के एक जो है पेशेंट में ट्रांसप्लांट के लिए यूज कर सकते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि अभी हमने स्किन डोनेशन से जुड़ी हुई जानकारी और तथ्य डॉक्टर साहब के माध्यम से जाने, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको स्किन डोनेशन के माध्यम से नई जिंदगी मिली है। कल अगर आपको किसी भी समय ये लगता है कि हमें भी स्किन डोनेट करनी चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाके प्लेज फॉर्म यानी कि संकल्प पत्र भर सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए हमें हमारी हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील को धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी तरफ से, और आपके मंगल भविष्य की भी हम कामना करेंगे, और ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं।
1: नमस्कार,
0: धन्यवाद।
2: तो ये थी आज की खास बात। मैं ऑर्गन इंडिया और उनकी टीम की प्रयासों की बहुत ज्यादा सराहना करती हूँ कि वो जनता के भविष्य और उनकी सेहत के लिए इतनी जटिल जानकारी जुटा के लाते हैं। हम आशा करते हैं कि हमारे इन प्रयासों से बहुत से मरीजों को और उनके परिवारों को फायदा हो रहा होगा, उन्हें सही मार्गदर्शन मिल रहा होगा। दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेते हैं और जल्द वापस आएंगे नई जानकारियों के साथ, नई कहानियों के साथ। आप सभी हमेशा सलामत रहें।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित, बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

बात है ना, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, दे बिकम इमोशन, मेमोरीज एंड मोटिवेशन. अभी जो गाना आपने सुना है सी यू अगेन, कहीं ना कहीं ये उन लोगों के लिए भी है जो लाइफ में बहुत दूर निकल जाते हैं लेकिन उनकी जर्नी आसान नहीं होती. हेलो हाय, यू ऑल आर लिसनिंग रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके. मैं आपके साथ गीत हूँ और शो लेकर आ गई हूँ बिजनेस अनप्लग्ड. और आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिनके पास शुरुआत में ना कनेक्शंस थे, ना लग्जरी थी और ना पावरफुल इंग्लिश. बस था तो एक सपना और उस सपने के पीछे भागने की हिम्मत. अ स्मॉल टाउन बॉय, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड और फिर अचानक ही कैसी दुनिया जहां लोग लैंग्वेज से जज करते हैं. इमेजिन बीइंग ब्रिलियंट बट स्टिल फीलिंग लेफ्ट आउट, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी इंग्लिश फ्लुएंट नहीं थी. कभी जो लड़का टॉपर हुआ करता था, अब वही लड़का खुद को क्राउड में लॉस्ट फील करने लगा. लेकिन कुछ लोग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होते, दे चेंज द सिचुएशन इटसेल्फ. उन्होंने खुद कोडिंग सीखी, इंग्लिश सीखी, रिस्क लिया, फेलियर्स देखे और वो रास्ता चुना जिससे लोग अक्सर डरते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप. एक ऐसा फेज भी आया जब फैमिली ने कहा बस करो, कंपनी बंद करो, स्टेबल नौकरी कर लो. और ऑनेस्टली उस वक्त की बात बहुत प्रैक्टिकल थी, बिकॉज एट द एज ऑफ 27 उस इंसान की सैलरी सिर्फ 10,000 थी. इतनी कम के रिश्ते तक आने बंद हो गए थे, बट डेस्टिनी हैड डिफरेंट प्लान्स. आज वही इंसान इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन का एक बड़ा चेहरा बन चुका है. फ्रॉम मोबाइल रिचार्ज टू मूवी टिकट्स टू ऑनलाइन पेमेंट्स, आज करोड़ों लोग उसकी बनाई हुई टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, शायद बिना ये जाने कि उसके पीछे की कहानी कितनी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है. तो आज के स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे सक्सेस की नहीं, सक्सेस के पीछे वाले अकेलेपन की, प्रेशर की, फेलियर्स की और उस हंगर की जो एक नॉर्मल इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है. लेकिन अभी नाम रिवील नहीं करूंगी, बिकॉज अगले लिंक में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ उस बिजनेसमैन से जिसने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई बल्कि इंडिया की पेमेंट हैबिट बदल दी. स्टे ट्यून्ड, दिस इज बिजनेस अनप्लग्ड विद

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत हूँ। अभी तक हम उस इंसान की बात कर रहे थे जिसकी स्टोरी छोटे शहर से शुरू होकर बिलियन डॉलर सक्सेस तक पहुँची। अब टाइम है नाम रिवील करने का, बट ऑनेस्टली ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। द मैन वी आर टॉकिंग अबाउट इज विजय शेखर शर्मा, यस द फाउंडर ऑफ पेटीएम। अगर आज इंडिया में कोई चाय वाले से लेकर शॉपिंग मॉल तक QR कोड स्कैन कर रहा है तो उस रेवोल्यूशन के पीछे कहीं ना कहीं विजय शेखर शर्मा का विजन खड़ा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, उन्होंने शुरुआत बिलियनेयर बनकर नहीं की थी। ही वॉज जस्ट अ स्मॉल टाउन बॉय फ्रॉम उत्तर प्रदेश, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड, टीचर फादर, सिंपल फैमिली, और शायद इसी वजह से उनकी स्टोरी इतनी रिलेटेबल लगती है क्योंकि कहानी प्रिविलेज की नहीं है, ये कहानी हसल की है। अ बॉय हु वंस स्ट्रगल्ड टू इवन स्पीक इंग्लिश आज इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के साथ बिलियन डॉलर मीटिंग करता है। अ मैन जिसे कभी 10,000 सैलरी पर लोग सेटल हो जाओ बोलते थे, आज उसे इंसान की कंपनी ने इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट IPO लॉन्च किया। बट ट्रस्ट मी, सक्सेस सुनने में जितनी ग्लैमरस लगती है ना दोस्त, उतनी होती नहीं है। बिहाइंड एवरी बिग कंपनी देयर इज अ फेज ऑफ लोनलीनेस, कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट एंड साइलेंट सेक्रीफाइसेस। विजय शेखर शर्मा की जर्नी में भी वो फेज आया था जब उन्हें लगा शायद वो पीछे रह गए हैं, जब फैमिली को समझ नहीं आता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। एंड समवेयर दैट्स द मोस्ट ह्यूमन पार्ट ऑफ हिज स्टोरी, क्योंकि जब आपके ड्रीम्स लोगों को समझ नहीं आते हैं तब सबसे मुश्किल होता है खुद पर बिलीव करते रहना। लेकिन उन्होंने किया, उन्होंने सिर्फ बिजनेस बिल्ड नहीं किया, उन्होंने इंडिया की हैबिट बदल दी। रिचार्ज ऐप से शुरू हुई जर्नी आज बैंकिंग, टिकट्स, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग सब तक पहुंच चुकी है। और सबसे इमोशनल बात, एक दिन उनकी माँ न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और उन्होंने उनसे पूछा, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है? इमेजिन दैट मोमेंट जब एक मिडिल क्लास मदर को खुद यकीन ना हो कि उनका बेटा इतना बड़ा नाम कमा चुका है। लेकिन दोस्तों, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक बच्चा होता है जिसने कभी क्वाइटली स्ट्रगल किया होता है। तो अब मैं बात करूंगी उसी स्ट्रगल के बारे में, उनके चाइल्डहुड, उनकी एडुकेशन, फैमिली बैकग्राउंड, कि कैसे एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट ने अपने ड्रीम्स को लिमिटेशन नहीं बनने दिया। तो स्टे ट्यून, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: आज है साइबर सिक्योरिटी एंड रोड सिक्योरिटी का तंदूरी तड़का। जो ऐप्स आपके फोन से लोकेशन, कॉन्टैक्ट, फोटो, अपने एम्बिशन सब मांगे, उन्हें बाय बाय बोलकर विदाई दे दो। और ईमेल्स लाइक क्लिक टू विन प्राइज और अकाउंट इज इन डेंजर या पार्सल इज अराइविंग, अरे मेरे भाई मैंने मैथ्स की किताब तक नहीं मंगाई, कौन सा पार्सल ला रहा है।

Hey, welcome back. You are listening to Business Unplugged. आज तक आपने विजय शेखर शर्मा को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की तरह देखा होगा, बट एवरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वॉज वंस जस्ट अ किड विद कंफ्यूजन, फियर एंड ड्रीम्स. सो लेट्स गो बैक टू द बिगिनिंग. विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में हुआ, अ वेरी सिंपल मिडिल क्लास फैमिली. उनके फादर एक स्कूल टीचर थे, आइडियलिस्टिक, डिसिप्लिन्ड और एक्स्ट्रा इनकम के लिए ट्यूशन भी पढ़ाते थे. मदर वॉज अ होम मेकर, सिंपल फैमिली वैल्यूज, सिंपल लाइफ स्टाइल. लेकिन ड्रीम्स छोटे नहीं थे. अब इमेजिन कीजिए कि सिर्फ 14 साल की उम्र और कोई बच्चा 12th पास कर ले. साउंड्स अनबिलीवेबल ना? लेकिन विजय शेखर शर्मा ने यही किया. ही वॉज ब्रिलियंट इन स्टडीज, स्कूल टॉपर, शार्प माइंड, और शायद इसी वजह से इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया. और यहीं से उनकी लाइफ में सबसे बड़ा टर्न आया, बिकॉज टैलेंट होने के बावजूद उन्होंने खुद को अकेला फील करना शुरू कर दिया. रीजन, इंग्लिश. उन्होंने पूरी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की थी और सडनली वो एक ऐसे एनवायरनमेंट तक पहुंच गए थे जहां हर कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा था. क्लासेस इंग्लिश में, बुक इंग्लिश में, कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में, और एक लड़का जो इंटेलिजेंट था लेकिन लैंग्वेज बैरियर की वजह से खुद को पीछे महसूस करने लगा था. उन्होंने खुद कहा था कि एक ऐसा टाइम आया जब वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि कॉलेज जाना तक बंद कर दिया था. इमेजिन द प्रेशर, जब आप कैपेबल हो लेकिन खुद को एक्सप्रेस न कर पाओ. बट दिस इज द पार्ट आई पर्सनली लव अबाउट हिज स्टोरी. उन्होंने हार नहीं मानी. He started learning English on his own. पुरानी मैगजीन्स पढ़ी, बुक्स पढ़ी, फ्रेंड्स की हेल्प ली और एक ही किताब का हिंदी और इंग्लिश वर्जन साथ में पढ़ते थे, जस्ट टू अंडरस्टैंड वर्ड्स बेटर. और शायद यही डिफरेंस होता है ड्रीमर और अचीवर में. ड्रीमर्स सिर्फ सोचते हैं, अचीवर्स अनकंफर्टेबल होकर भी सीखते हैं. लेकिन कॉलेज के दौरान ही उनका फोकस सिर्फ डिग्री पर नहीं रहा, उन्होंने कोडिंग सीखनी शुरू की, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बढ़ने लगा. व्हाइल अदर्स वर लुकिंग फॉर जॉब्स, ही वाज ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग फॉर हिज ओन. उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जिसे कुछ बड़े न्यूज पब्लिकेशंस ने यूज करना भी शुरू कर दिया. एंड यस, उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब शुरू की, लेकिन सिर्फ 6 महीने, बिकॉज समवेयर द एंटरप्रेन्योर इनसाइड हिम वाज टू रेस्टलेस फॉर अ रेगुलर लाइफ. उन्होंने जॉब छोड़ दी और दोस्तों के साथ अपनी कंपनी शुरू कर दी. अब बॉस, यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि डेंजरस होने लगती है, बिकॉज ड्रीम शुरू हो चुका था लेकिन सक्सेस अभी बहुत दूर थी. तो अब मैं बात करूंगी उसी स्ट्रगल के बारे में जब बिजनेस चल नहीं रहा था, सैलरी सिर्फ 10,000 थी, फैमिली प्रेशर बढ़ रहा था, और कैसे इन्होंने अपनी फर्स्ट रियल टीम बनाई. सो स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: टियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो।

गाना है फ्रॉम द मूवी धुरंधर और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो है बिजनेस अनप्लग्ड में, आपके साथ गीत हूँ। अब तक हमने जाना कैसे विजय शेखर शर्मा एक स्मॉल टाउन हिंदी मीडियम स्टूडेंट से एंटरप्रेन्योर बनने की जर्नी पर निकले, लेकिन ऑनेस्टली ड्रीम शुरू करना आसान होता है, उसे सर्वाइव कराना सबसे मुश्किल। बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप लुक्स एक्साइटिंग ऑन इंस्टाग्राम बट इन रियल लाइफ इट कैन ब्रेक यू मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली। विजय शेखर शर्मा के साथ भी यही हुआ, इन्होंने जॉब छोड़ दी, अपने दोस्तों के साथ कंपनी शुरू की, आइडियाज थे, पैशन था, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी और मिडिल क्लास फैमिलीज में सबसे बड़ा प्रेशर पता है क्या होता है, स्टेबल हो जाओ यार। उनके फादर भी यही कहा करते थे, कंपनी बंद करो, नौकरी कर लो, अगर 30,000 भी मिल रहे हैं तो बहुत है। और एक सच बात बताऊं, पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते, वो बस हमें स्ट्रगल में टूटते हुए नहीं देख सकते। और मैंने कहीं जाकिर की वो एक लाइन सुनी थी कि माँ बाप हमारे पैशन से नहीं जलते, वो बस इस बात से दुखी होते हैं कि कहीं हम गरीब ना रहें। लेकिन उस टाइम विजय शेखर शर्मा एक ऐसे फेज में थे जहां ड्रीम्स और रियलिटी दोनों लड़ रहे थे, एक तरफ थे एम्बिशन और दूसरी तरफ बिल्स। उन्होंने खुद बताया था कि एक ऐसा टाइम भी आया जब उनकी सैलरी सिर्फ 10,000 रुपए थी। कैन यू इमेजिन बिल्डिंग बिग ड्रीम्स विद ऑलमोस्ट नो मनी, इतने कम इनकम के रिश्ते तक आने बंद हो गए। इन्होंने खुद को इन एलिजिबल बैचलर तक कह दिया। दैट लाइन साउंड्स फनी मे बी बट समवेयर इट्स पेनफुल टू, क्योंकि सोसाइटी सक्सेस को नहीं रिजल्ट को रिस्पेक्ट करती है। जब तक स्ट्रगल चल रहा होता है लोग आपको कंफ्यूज्ड समझते हैं, लेकिन इसी फेज में इन्होंने हार नहीं मानी। इंस्टेड ऑफ क्विट इन्होंने सीखा कंटिन्यू रखना। कोडिंग, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, मोबाइल इकोसिस्टम, वो फ्यूचर को समझ रहे थे जब बाकी लोग प्रेजेंट में स्टक थे। और यहीं से धीरे धीरे उनकी टीम बननी शुरू हुई, नॉट अ बिग कॉर्पोरेट टीम, बस कुछ लोग जो आइडियाज पर बिलीव करते थे। कई बार ऑफिस छोटा था, रिसोर्सेस कम थे, लेकिन विजन बड़ा था। और बिजनेस में सबसे पावरफुल चीज फंडिंग नहीं होती, बिलीफ होता है। जब कुछ लोग आपके ड्रीम पर ट्रस्ट करते हैं ना, वहीं से एम्पायर बनना शुरू हो जाता है। इन्होंने पहले कई एक्सपेरिमेंट किए, कई प्रोडक्ट्स चले नहीं, फेलियर्स आए, लेकिन इन्होंने इंटरनेट और मोबाइल टेक्नोलॉजी की पावर को बहुत पहले पहचान लिया था। एंड देन एक आइडिया आया जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, अ सिंपल डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म जिसे आज दुनिया पेटीएम के नाम से जानती है। लेकिन पेटीएम ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, उसके पीछे स्लीपलेस नाइट्स थी, टीम प्रेशर था, फाइनेंशियल रिस्क था, और वो फियर भी था कि अगर ये नहीं चला तो क्या होगा। लेकिन कभी कभी लाइफ उन्हीं लोगों को रिवॉर्ड करती है जो अनसर्टेनिटी में भी खुद पर बेट लगाते हैं। और मैं बात करने वाली हूँ थोड़ी देर बाद उस मैसिव सक्सेस की, कंपनी का टर्नओवर, ग्लोबल इन्वेस्टर्स, इंडियाज बिगेस्ट आईपीओ, और आज प्रेजेंट टाइम में पेटीएम कहाँ खड़ा है अब सबको मालूम है। सो स्टे ट्यून्ड, यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड विद आरजे गीत।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना। एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

वेलकम बैक अगेन। यू आर लिसनिंग टू बिजनेस अनप्लग्ड एंड मैं आपके साथ गीत हूँ। और आज की जर्नी अब तक पहुंच चुकी है उस पॉइंट पर जहां स्ट्रगल कहानी नहीं रहती बल्कि हिस्ट्री बन जाती है। विजय शेखर शर्मा एक ऐसा नाम जिसे आज इंडिया सिर्फ बिजनेसमैन नहीं डिजिटल रेवोल्यूशन के फेस की तरह जानती है। लेकिन सोचिए, जिस इंसान को कभी इंग्लिश बोलने में हेजिटेशन होती थी, जिसकी सैलरी सिर्फ 10,000 थी, जिसे लोग स्टेबल हो जाओ बोलते थे, आज उसी इंसान की कंपनी करोड़ों इंडियंस की डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। पेटीएम ने शुरुआत सिर्फ मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के तौर पर की थी, बट देन एवरीथिंग चेंज्ड। धीरे धीरे लोगों ने बिल्स पे करने शुरू कर दिए, मूवी टिकट्स, फ्लाइट बुकिंग, ट्रेन टिकट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, यूपीआई पेमेंट्स। और देखते ही देखते पेटीएम सिर्फ ऐप नहीं रहा बल्कि हैबिट बन गया। आज इंडिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने कभी ना कभी पेटीएम यूज ना किया हो। एंड देन केम द मोमेंट जिसने हिस्ट्री क्रिएट कर दी। पेटीएम लॉन्च्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट आईपीओज, 18,300 करोड़ रुपीज। जस्ट इमेजिन दैट नंबर। एक सिंपल से लड़के का सपना पूरे स्टॉक मार्केट की हेडलाइन बन चुका था। ग्लोबल इन्वेस्टर्स लाइक सॉफ्टबैंक, बर्कशायर हैथवे एंड एंट ग्रुप सबने इस विजन पर ट्रस्ट किया। 2017 में विजय शेखर शर्मा इंडिया के यंगेस्ट बिलियनर्स में शामिल हो गए। लेकिन सक्सेस का सबसे इमोशनल मोमेंट कौन सा था? जब उनकी मदर ने न्यूज़पेपर पढ़कर पूछा, सच में तुम्हारे पास इतना पैसा है क्या बेटा? एंड ऑनेस्टली उस मोमेंट में शायद पूरी जर्नी छुपी हुई है। अ मदर हु वन सॉ हर सन स्ट्रगलिंग साइलेंटली, अब उसी बेटे को दुनिया सेलिब्रेट कर रही थी। लेकिन स्टोरी यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं थी, ये स्टोरी है बिलीव की। बिकॉज विजय शेखर शर्मा ने हमें एक चीज सिखाई है, लैंग्वेज बैरियर परमानेंट नहीं होता, स्मॉल टाउन वीकनेस नहीं होता, मिडिल क्लास बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं होता। अगर कुछ पावरफुल होता है तो वो होता है विजन। और शायद इसीलिए हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पहले मिसअंडरस्टूड होता है। आज जब लोग QR कोड स्कैन करते हैं, दे सी कन्वीनियंस, लेकिन इसके पीछे किसी की स्लीपलेस नाइट्स, फेलियर्स, लोनलीनेस और इयर्स ऑफ हसल छुपे होते हैं। और यही वजह है कि आज की स्टोरी सिर्फ बिजनेस स्टोरी नहीं थी, इट वॉज अ रिमाइंडर कि ड्रीम्स का कोई एक्सेंट नहीं होता। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि रिसोर्सेज कम है, इंग्लिश वीक है, सपोर्ट नहीं है, देन रिमेम्बर दिस स्टोरी। बिकॉज समटाइम्स द बॉय एवरीवन डाउट्स बिकम द मैन हिस्ट्री रिमेम्बर्स। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विद अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी, अनदर अनस्टॉपेबल जर्नी। टिल देन कीप ड्रीमिंग, कीप बिल्डिंग एंड नेवर अंडर एस्टिमेट योर बिगनिंग। सो सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
5: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने आधी रात।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: आप हमसे हमारा आईलाइनर मांग लेते, नेल पेंट मांग लेते, काजल या मस्कारा मांग लेते, यहाँ तक कि प्लेट में पड़े लास्ट दो मोमोज भी मांग लेते। अरे हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने आपने तो हमारे घर में बची लास्ट पानी की बोतल ही मांग ली।
1: अब से ही टाइमर करो शुरू और पानी वेस्ट होने से बचा लो गुरु।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी, सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है।

0: लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
1: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

तलने की जिद ना मसालों का शोर, सफेद सी शान सी, पर पेट और मन दोनों को भर दे, बताओ मैं कौन। आज इस नई पहेली के साथ फिर से लौट आई हूँ मैं 89.6 FM पर शो कल्चर कारवालेकर। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं बेहद टेस्टी डिश के बारे में जो है इडली। वो कहा है कि ना तीखी हो ना चटपटी, फिर भी हर दिल को भा जाए। इडली शायद इसलिए पसंद आती है क्योंकि ये ज्यादा कुछ बनने की कोशिश नहीं करती, इतनी सिंपल है इडली। लेकिन सवाल ये है कि क्या इडली हमेशा से साउथ

वैसे तो आज इडली को हम साउथ इंडिया की पहचान कहते हैं, पर इसका इतिहास थोड़ा सा सरप्राइजिंग है। कहा जाता है कि 19th टू 20th सेंचुरी के दौरान कर्नाटका के होयसल राज्य में एक डिश का जिक्र मिलता है जिसका नाम है इडली की। और ये डिश बेहद सिंपल स्टीम्ड होती थी, फर्मेंटेड होती थी और बिना मसालों की, बिल्कुल आज की इडली जैसे। और साथ ही इसका इंडोनेशियन कनेक्शन भी देखा जाता है। तो बस इसी कनेक्शन को आगे जानने के लिए बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

इडली के बारे में। तो आज का इडली का जायका हमें ले आया इंडोनेशिया के कनेक्शन तक। कहा जाता है कि कुछ हिस्टोरियंस ने कहा है इडली का आइडिया शायद इंडोनेशिया से आया होगा, क्योंकि वहाँ स्टीम्ड राइस केक्स पहले से ही बनते थे। और जब साउथ इंडियन ट्रेडर्स इंडोनेशिया गए तो वहाँ से फर्मेंटेशन का तरीका अपने साथ ले आए। लेकिन आज भी आखिर सच क्या है, ये डिबेट का मुद्दा।

वो कहा है कि सफर चाहे समंदर का हो या समय का, जो अपना हो जाए उसकी ओरिजिन ज्यादा मायने रखती है। कल्चर कारवा में इटली का इंडोनेशिया वाला कनेक्शन तो बताया, लेकिन फर्मेंटेशन इटली की जान कैसे बनी, इस बारे में बात करेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि, और आज कल्चर कारवा का ये सफर जा रहा है इटली के इतिहास की तरफ। इंडोनेशिया का कनेक्शन तो पता लगा लिया, लेकिन फर्मेंट

0: इडली बनाने के लिए चावल और उड़द की दाल जब मिलकर फर्मेंटेशन से गुजरती है तो सिर्फ टेस्ट नहीं बदलता, न्यूट्रिशन भी बढ़ जाता है। इसलिए इडली सुबह ब्रेकफास्ट में हर घर में खाई जाती है, क्योंकि ये बहुत लाइट होती है, हेल्दी होती है और इजीली डाइजेस्टेबल होती है।
1: दोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी, दोसा, इडली, सांभर, चटनी चटनी, तेड़ी पुड़िचे वाटल, पाइने वाटल।
0: शायद इसलिए आयुर्वेदा का कनेक्शन भी इडली से माना जाता है। आयुर्वेदा कहता है स्टीम्ड और फर्मेंटेड फूड शरीर के लिए सबसे उत्तम होता है, और इसलिए शायद बीमार को खिचड़ी और हर सुबह को इडली दी जाती है। वो कहा है कि जो पेट को परेशान ना करे वही सच्चा स्वाद होता है। इडली सिर्फ खाना नहीं, एक शांत सुबह का वादा होता है। ये छोटी सी गोल इडली इंडोनेशिया से आयुर्वेदा तक तो पहुंची, लेकिन इडली का सफर इंडिया में कैसे शुरू हुआ इस बारे में भी बात करते हैं। कहा जाता है कि चेन्नई से बेंगलोर और फिर हैदराबाद से कोची और फिर पूरे देश में इडली ने धीरे धीरे सफर किया। और अगर आज देखा जाए तो आज इडली मिलती है स्ट्रीट स्टॉल्स पर, फाइव स्टार होटल्स में, ऑफिस टिफिन में, हॉस्पिटल डाइट में, क्योंकि कहा जाता है ये सिंपल सी इडली हर जगह फिट हो जाती है। इंडिया सफर के बारे में तो बात की, अब धीरे धीरे जानेंगे इडली के अवतार्स के बारे में। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो,
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजी, और कल्चर कारवा का आज का सफर घूम रहा है इडली के चारों ओर। इडली के बारे में बात की, लेकिन इडली के अवतार्स के बारे में भी बात करेंगे। इडली की बहुत सारी वैरायटी इंडिया में मिलती है, जिसमें से एक है लवा इडली, फिर दूसरी है बटर इडली, और इसी के साथ एक और इडली आती है जिसका नाम है कांचीपुरम इडली, फिर आती है फायर्ड इडली, और साथ ही आती है चॉकलेट इडली। यानी कि इडली शायद दुनिया का सबसे शांत खाना है, जिसे लोग हर बार नया बना देते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इतना ही नहीं, अगर इससे जुड़े ट्रिविया के बारे में बात करें तो कहा जाता है इडली दुनिया की हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट में से एक मानी जाती है। और इतना ही नहीं,

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: पूरा हफ्ता भागदौड़ में निकल गया, ऑफिस, क्लासेस, घर के काम और डेडलाइंस। तो अब थोड़ा सा ब्रेक लगाइए और चाय का कप पास रखिए और अगले एक घंटे के लिए बॉलीवुड की यादों में चलते हैं। मैं हूं पलक और ये है म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। और आज का सफर उस एक्टर के नाम है जिसकी जिंदगी भी फिल्म की तरह अप्स एंड डाउन से भरी रही, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर वापस आया। जी हाँ, आज का एपिसोड है संजय दत्त स्पेशल और शुरुआत करते हैं उस फिल्म से जिसने हमें एक ऐसा वर्ड दिया जो आज भी डिक्शनरी में नहीं दिलों में मिलता है, और वो वर्ड है जादू की झप्पी। अच्छा, कभी कभी एक फिल्म सिर्फ हिट नहीं होती, वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। मुन्ना भाई MBBS भी कुछ ऐसी ही फिल्म थी। आज भी अगर हमें कोई प्यार से गले लगा ले तो सबसे पहले याद आता है यही वर्ड, जादू की झप्पी। और शायद इसीलिए उस सीन की शूटिंग भी उतनी ही खास थी। जब मुन्ना और उसके फादर का इमोशनल सीन शूट हो रहा था तो संजय दत्त और सुनील दत्त इतने इमोशनल हो गए कि डायरेक्टर के कट बोलने के बाद भी दोनों की आंखें नम थी। स्क्रीन पर जो इमोशन हम सभी ने देखे वो एक्टिंग से ज्यादा हकीकत थी। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात इस मूवी की ये है कि जिस करेक्टर को आज हम संजय दत्त के बिना इमेजिन ही नहीं कर सकते, वो रोल पहले उनके पास था ही नहीं। वो रोल उससे पहले ऑफर किया गया था SRK और विवेक ओबरॉय को। कभी कभी कुछ करेक्टर्स अपने हीरो खुद चूज कर लेते हैं और मुन्ना भाई ने भी वही किया। अब हीरो मिल गया लेकिन बजट नहीं था, फिल्म लिमिटेड बजट में बन रही थी और इसी वजह से वेडिंग सीक्वेंस तक एक रियल वेडिंग वेन्यू पर शूट किया गया। प्रोडक्शन टीम ने सोचा जब असली शादी का सेटअप मिल रहा है तो सेट लगाने का खर्चा क्यों किया जाए। और मजेदार बात ये है, शूटिंग के वक्त बजट की टेंशन थी और रिलीज के वक्त डिस्ट्रीब्यूटर्स की। कई लोगों को लगता था कि मुंबई की स्लैंग और ह्यूमर महाराष्ट्र के बाहर नहीं चलेगा। उन्हें लगा कि फिल्म कुछ दिन चलेगी और फिर उतर जाएगी, लेकिन रिलीज के बाद हुआ उल्टा। मुन्ना भाई ने पूरे इंडिया को अपना फैन बना लिया और वही फिल्म विधु विनोद चोपड़ा के करियर की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सक्सेसेस में शामिल हो गई। जिसे लोग रिस्क समझ रहे थे, ऑडियंस ने उसे मैजिक बना दिया। वैसे अगर तुम्हारा भी कोई दोस्त है जो हर मुश्किल में सॉल्यूशन कम और कॉन्फिडेंस ज्यादा देता है तो ये गाना उसके नाम कर देना, क्योंकि इस मूवी की इतनी बात हो ही गई है। तो सुनाती हूँ आपको इसी मूवी से एम बोले तो गाना, जहाँ मुन्ना और सर्किट फुल फॉर्म में आ रहे हैं। गाना इंजॉय कीजिए। मैं हूँ पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM।
1: होल्ड मैन होल्ड, आई एम बिजी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर अप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

ओए मुन्ना, मैं तुझे समझा रहा हूँ। जब भी घर से निकले तो पानी की बोतल साथ लेके निकलियो। अगर तू बिना पानी की बोतल लिए निकला तो तोड़ दूंगा, होड़ दूंगा। ध्यान रखियो मुन्ना।

वेलकम बैक, मैं हूं आरजे पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सेल्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। अभी तक बात हुई मुन्ना भाई की, जहां एक झप्पी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थी। लेकिन संजय दत्त के करियर की असली रेंज तब समझ आती है जब मुन्ना भाई के बाहर सीधा वास्तव याद आती है। एक तरफ प्यार बांटने वाला मुन्ना और दूसरी तरफ मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उलझा रघु, और यहीं से शुरू होती है वास्तव की कहानी। हर एक्टर के करियर में ना एक फिल्म आती है जो उसे स्टार से एक्टर बना देती है। संजय दत्त के लिए वो फिल्म थी वास्तव, और रघु का करैक्टर इतना पावरफुल था कि इस फिल्म ने उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिलाया। लेकिन रघु की कहानी जितनी इंटेंस थी उतनी ही इंटरेस्टिंग उसकी कास्टिंग भी थी। फिल्म में उनकी माँ बनी रीमा लागू, और हैरानी की बात ये है कि रियल लाइफ में वो संजय दत्त से सिर्फ एक साल बड़ी थी, लेकिन स्क्रीन पर दोनों को देखकर लगता था जैसे सालों पुराना माँ बेटे का रिश्ता हो। शायद इसी रियलिज्म की वजह से फिल्म इतनी असली लगती है। और रियलिज्म की बात निकली ही है तो संजय दत्त ने रघु को तैयार करने के लिए हॉलीवुड के आइकॉनिक कैरेक्टर टोनी मोंटाना से इंस्पिरेशन ली थी, लेकिन उस कैरेक्टर को मुंबई की गलियों का रंग देकर पूरी तरह अपना बना दिया। और फिर आया वो क्लाइमेक्स जिसके बिना वास्तव की बात अधूरी है। एक ऐसा सीन जिसे देखकर आज भी लोग इमोशनल हो जाते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि पूरा क्लाइमेक्स सिर्फ दो टेक्स में शूट हुआ था। दो टेक्स, बस दो टेक्स। कभी कभी इमोशंस को परफेक्ट करने के लिए ना 10 रीटेक्स नहीं, सिर्फ सच्चाई चाहिए होती है। और जब दुनिया की भीड़ में सिर्फ अपने लोग याद आने लगे ना, तो शायद बैकग्राउंड में ये गाना बजाना चाहिए, मेरी दुनिया है। और इसी गाने के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। शो चल रहा है म्यूजिकल डायरीज ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: आज मेरे पास पसीना है, डिहाइड्रेशन है, हीट वेव्स है, तुम्हारे पास क्या है?
1: मेरे पास नींबू पानी है।
2: बात करो।
3: कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हूँ इसलिए गधा हूँ।
4: सुन भाई सुरेंद्र।
5: हाँ भाई सुरेंद्र।
4: सोचा था कॉर्पोरेट ज्वाइन करके आराम की नौकरी होगी, लेकिन दिन में 10 बार तो मीटिंग हो जाती है। मैनेजर को भी काम लंच के 10 मिनट पहले याद आता है। लीव मांगने पर वाई इंटरव्यू शुरू हो जाता है। काम मैं करता हूँ, क्रेडिट मैनेजर ले जाता है, और ये बात जब मैं घर वालों को बता दूँ तो वो मुझे गधा बोल देते हैं।
5: ठीक कह रहे तुरेंद्र, कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कितना भी कर ले, रहेगा तो गधा ही।

ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मैं हूं पलक और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। अभी तक हमने देखा मुन्ना भाई का दिल और वास्तव का दर्द, लेकिन अब बात होगी उस कैरेक्टर की जिसे देखकर लोगों ने पहली बार सोचा था, यार विलेन इतना स्टाइलिश भी हो सकता है क्या। कभी कभी ना फिल्म का हीरो याद नहीं रहता, लेकिन विलेन हिस्ट्री बना देता है। और 90s में अगर किसी विलेन ने पूरी लाइमलाइट चुरा ली थी तो वो था बल्लू, खलनायक का बल्लू। इंटरेस्टिंग बात ये है कि बल्लू का रोल पहले नाना पाटेकर को ऑफर करने का सोचा गया, लेकिन बाद में ये कैरेक्टर संजय दत्त के पास आया और फिर जो हुआ वो तो हिस्ट्री है। बल्लू सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं बना, संजय दत्त की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया। उसके लंबे बाल, रफ लुक और एंटी हीरो स्टाइल ने पूरी जनरेशन को इम्प्रेस कर दिया। लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले सब कुछ इतना स्मूथ नहीं था। 1993 ब्लास्ट केस में संजय दत्त की अरेस्ट की वजह से फिल्म लगातार हेडलाइंस में थी। लोग फिल्म से ज्यादा कंट्रोवर्सी की बात कर रहे थे, लेकिन कहते हैं ना कभी कभी कंट्रोवर्सी भी प्रमोशन का काम कर जाती है। जितनी बातें बढ़ी उतनी ही क्यूरियोसिटी बढ़ी, और जब फिल्म रिलीज हुई तो इंडिया ही नहीं ओवरसीज में भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मतलब लोग बल्लू को पकड़ने थिएटर गए थे और उसके फैन बनकर निकले। वैसे कभी कभी स्कूल या ऑफिस में बिना गलती के डांट पड़ी हो और मन में आया हो ना हीरो तो मैं हूँ यार, तो ये गाना तुम्हारे लिए है, क्योंकि गाने का नाम बल्लू खुद अनाउंस करने आ रहा है और वो नाम है नायक नहीं खलनायक हूँ मैं, मूवी खलनायक से। गाना इंजॉय कीजिए, मैं हूँ आज पलो, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड।

0: गर्लफ्रेंड हूँ इसलिए कलेशी हूँ। यार निया सुन।
1: हाँ सिया बोल।
0: यार मैंने पूछा कैसे हो, उसने बोला बढ़िया, ये भी नहीं पूछा कि तुम कैसी हो, और जब मिलने के लिए बोलो तो कहता है टाइम नहीं है, और दोस्तों के साथ घूमने के लिए टाइम ही टाइम है। जिस लड़की को जानता तक नहीं है उसकी फोटो पे भी लाइक कर देता है, और जब पूछो तो बोलता है बेबी बस फ्रेंड है, और पता है रील्स पे रिप्लाई ना करके रिएक्ट करके छोड़ देता है, और जब मैं कंप्लेंट करूं तो मुझे कलेशी कह देता है।
1: सही कह रही है, सब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कलेशी कहते हैं।
2: पहुंचाते हैं हर दिल की कहानी, क्योंकि हम हैं रेडियो महारानी। आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: अरे मेहनत करने वालों का कभी ईमान नहीं बिकता।
2: और आगे
0: याद रखिए, हेलमेट पहनने वालों का कभी चलान नहीं कटता।
3: 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
4: चल अर्जुन शुरू हो जा।
5: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
4: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
5: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
4: इरशाद।
5: अरे आगे खाली हो जाएगी।
4: क्या
5: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
4: कौन हम?
5: रोडवेज वाले।
4: ओके।
5: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
4: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
5: क्या बात कर रहे
4: हो? हाँ।
5: आगे सुनो।
4: सुनाओ।
5: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
4: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
5: अरे सुनो।
4: बाय।
5: मीठे लस्सी तो मिलता।
6: वाली बात और कहानियों में है जिंदगी का एहसास। हमें जो भी सुने यही बोले, ये हुई ना बात। हम है आपका अपना रेडियो, रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

89.6 FM पर मैं लौट आई हूँ आपकी अपनी पलक म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो के साथ। सोचिए जरा, एक फिल्म आए और उसका एक वर्ड पूरे देश के डिक्शनरी का हिस्सा बन जाए। लगे रहो मुन्ना भाई ने भी वही किया, गांधीगिरी। फिल्म के बाद ये वर्ड इतना पॉपुलर हुआ, लोग असल जिंदगी में भी यूज करने लगे। किसी से लड़ना नहीं, गुस्सा नहीं करना, फूल देकर जवाब देना, और यही इस फिल्म की सबसे बड़ी जीत थी। राजकुमार हिरानी चाहते तो मुन्ना भाई की वही पुरानी स्टोरी कंटिन्यू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रिस्क लिया। सेम कैरेक्टर्स रखे लेकिन कहानी बिल्कुल नहीं सुनाई, और ऑडियंस ने उस रिस्क को दिल से एक्सेप्ट किया। फिल्म क्रिटिक्स को भी पसंद आई, अवार्ड्स भी जीते और बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर दिया। लेकिन फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी मुन्ना और सर्किट की जोड़ी। वैसे अगर कोई इंसान रोज रोज याद आ रहा हो और फोन करने की हिम्मत ना हो, तो बॉलीवुड ने उस फीलिंग के लिए गाना पहले ही बना दिया था। चलिए, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी यादें। गाने का नाम है पल पल हर पल। फिल्म लगे रहो मुन्ना भाई से, और इसी गाने के साथ वक्त हो चला है मेरे जाने का। आज मुन्ना भाई की जादू की झप्पी भी मिली, वास्तव का दर्द भी महसूस हुआ, बल्लू का स्वैग भी देखा और गांधीगिरी का मैसेज भी। यही तो खास बात है सिनेमा की, हर करेक्टर एक नई कहानी सुना जाता है। मैं हूं पलक और आप सुन रहे थे म्यूजिकल डायरीज वीकेंड शो, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। अगले वीकेंड फिर मिलूंगी किसी नए एक्टर, नई कहानियों और उन गानों के साथ जो सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस भी किए जाते हैं। तब तक मुस्कुराते रहिए और यादों की प्लेलिस्ट चलते रहने दीजिए। बाय बाय।

0: दर्पण।
1: चाय की चुस्की हो या गांव की गलियां, यहां हर बात में है अपनापन, हर आवाज में है कहानी, क्योंकि ये है रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: देखो आप मेरी लड़ी है।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: कभी कभी ऐसा लगता है कि जो बातें हम अपनी नॉर्मल जिंदगी में कह नहीं पाते वो किसी नज्म में निकल जाती हैं या किसी कविता में सांस लेने लगती हैं। और शायद इसीलिए हर पोइट सिर्फ लिखता नहीं है बल्कि अपना एक हिस्सा छोड़ जाता है अल्फाजों में। तो आज इन्हीं अल्फाजों पर बात होगी। आज दिल शायराना में मेरे साथ अखिलेश पुरोहित जी मौजूद हैं जो कि एक बहुत ही बढ़िया पोइट हैं, तो आज उनसे बहुत सारी बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: जी मैम, बहुत बहुत आभार। रेडियो महारानी की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ
4: जी,
5: और आपका आभार व्यक्त करता हूँ जो मुझे मौका दिया आपने
4: जी। तो मैं हर किसी शायर से या पोइट से यही सवाल सबसे पहले पूछती हूँ कि आपने क्यों चुना पोइट्री को, पोइट्री को आपने चुना या पोइट्री ने आपको चुना?
5: एग्जैक्टली मैं इसी सवाल का आपके इस सवाल में ही जवाब रहता है, क्योंकि
4: हाँ,
5: कुछ चीजें नियति निर्धारित करती हैं और जो नियति निर्धारित कर लेती है उसके बाद हम नहीं जा पाते। तो मेरा ये मानना है कि शब्दों ने, कविता ने या साहित्य ने मुझे चुना है, ना कि मैंने उसे चुना। और कोई भी शायर या कवि कोई भी हो वो इतना स्वतंत्र नहीं है कि इस प्रोफेशन को खुद चुने
4: जी।
5: तो मुझे लगता है कि ये तो नियति का निर्धारण है
4: जी। तो जब हम किसी भी फील्ड में आ रहे होते हैं या कोई भी चीज़ हम चूज करते हैं अपने लिए, तो हम कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं कि हमने उन्हें पढ़ा था या हमने उन्हें बहुत सुना था। तो कौन ऐसे शायर या पोइट रहे जिनको आपने बहुत सुना है?
5: जी बहुत अच्छा सवाल आपका है, क्योंकि मैं हिंदी पृष्ठभूमि से हूँ और मेरी स्टार्टिंग की जो जर्नी है वो हिंदी से जुड़ी रही।
4: हाँ,
5: मैं संस्कृत में भी पढ़ा। तो 2009 और 10 के आसपास जब मैंने 9th में एडमिशन लिया तब आदरणीय कुमार साहब को बहुत सुना, और उसके साथ साथ जब साहित्य में हमारे जो दिनकर साहब हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी, तो उनको पढ़ते पढ़ते। और दूसरी बात जो मूल है, मुझे लगता है कि जो मैं रामचरितमानस को पढ़ता था,
4: क्या बात है,
5: और उसकी जो चौपाइयां हैं उनको अलग अलग तरीके से गाने की कोशिश करता, तो मुझे लगता है वो रिदम या ईश्वर की कृपा का हो या माँ शारदे का आशीर्वाद,
4: तो
5: कुछ ना कुछ वहां से जुड़ी चीजें। बाकी कुमार साहब रहे, कुमार बेचैन साहब रहे, तो इन सब चीजों को बहुत सुना है
4: जी।

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: एक और सवाल है मेरा, हर पोइट का अपना एक मूड होता है लिखने का, तो सवाल ये है कि जो कविता होती है वो किस चीज से पैदा होती है, ऑब्जर्वेशन से या अपने खुद के इमोशन से?
1: जी बहुत अच्छा सवाल, इसलिए है कि कवि और शायर वो नहीं है, सबसे बड़ी जो उपलब्धि उसकी ये है कि जो वो खुद महसूस कर रहा है वो तो वो बयां करेगा ही, सबसे बड़ी खासियत उसकी ये है कि जब वो सामने वाले के दर्द को बयां करे,
0: जी
1: मतलब उसकी जगह पे खुद के दिल को रखकर देखेगा तो जो एहसास उत्पन्न होते हैं उसको तालमेल मिलता है तो वो कविता का रूप ले लेती है। शॉर्ट में कविता की डेफिनेशन भी आपको बताता
0: चलूं। बिल्कुल बिल्कुल।
1: कि कविता का मतलब कल्पना और वी का मतलब विचार और ता का मतलब तालमेल, कल्पना में आए हुए विचारों का जब तालमेल होता है तो वो कविता का रूप ले लेती
0: है। क्या बात है, मुझे इतना बढ़िया कविता की डेफिनेशन किसी ने नहीं दी है अब तक, खैर बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है।
1: बहुत आभार
0: जी। जी एक और सवाल है, हम बात करेंगे हमारे हिंदी लिटरेचर के बहुत ही फेमस कवि प्रेमचंद जी के बारे में, जिनकी कविताएं हमारे समाज को बहुत पहले से ही आईना दिखाने का काम कर रही थी और कर रही हैं इनफैक्ट। तो आज के वक्त में कितने परसेंट ऐसे कवि या शायर रहे हैं जो वाकई में समाज को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं?
1: देखिए, इस चीज का मूल्यांकन और आकलन करने की मेरी क्षमता तो नहीं है, लेकिन हिंदी का साहित्य का एक छोटा सा विद्यार्थी होने के नाते इस तरह की दृष्टि में रखता हूँ। प्रेमचंद जी ने और जयशंकर प्रसाद जी ने या उस समय के जितने भी महान कवि हुए, उन्होंने जो कुछ भी भापा समाज से और जो कुछ उन्होंने महसूस किया, आप प्रेमचंद जी का जीवन अगर देखेंगी तो उन्होंने ज्यादातर साहित्य अपने ही जीवन से प्रेरित होकर लिखा है,
0: क्योंकि
1: जो उन्होंने सहा है
0: वो कहा है
1: और जो समाज में देखा है वो कहा है। दूसरी बात क्या आ जाती है, जब साहित्य राजनीतिक हो जाता है तो वो साहित्य खत्म हो जाता है, क्योंकि साहित्य किसी की पैरवी और गुलामी नहीं कर सकता, न कविता कर सकती है, तारीफ कर सकती है, गुलामी नहीं कर सकती। तारीफ कैसे कर सकती है कि आप ये कहें कि चांद सा जब कहा उनको तो वो कहने लगे, चांद सा जब कहा उनको तो वो कहने लगे, चांद कहिए ना, चांद सा क्या है,
0: क्या बात है।
1: तो कहने का अर्थ ये है कि जो भी आज के दौर, जो आपका क्वेश्चन है मतलब कि आज कितने प्रतिशत शायर या कवि ऐसे हैं जो समाज, हर समय अपने आप एक चुनौती लेकर आता है और वो साहित्य में भी बदलाव बहुत जरूरी है। मैं ये कहूँ कि 90% साहित्य खत्म हो चुका है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता इसलिए देनी पड़ेगी, जो आने वाली पीढ़ी है जो अभी इस समय चल रही है उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं। अगर उन सारे ऑप्शंस के बावजूद भी अगर वो साहित्य में रुक ले रहे हैं तो थोड़ी सी उनके लिए मुझे लगता है कि एक विंडो इस तरह की खुली रहनी चाहिए कि उसमें ज्यादा बाउंडेशन इतनी नहीं रहे कि आप मीटर में नहीं हैं या आप कविता के दायरे में नहीं हैं। वो जो उनके भाव हैं वो उनको शब्द देने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका हमें आदर करना चाहिए।
0: तो मतलब आप इस बात से बिल्कुल अग्री हैं कि जरूरी नहीं है कि कविता को एक मीटर में ही लिखा जाना चाहिए, तभी वो एक परफेक्ट कविता।
1: देखिए, कविता और कवि हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है। जो भी महत्वाकांक्षी लोग हैं वो एक स्वतंत्रता में चाहते हैं अपने आप को, चार दीवारी में रहेंगे लेकिन खुद में स्वतंत्र रहेंगे, तो वो बहुत जरूरी है, तो कला उससे जिंदी रहती है।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: एक और सवाल है, स्टेज पोइट्री का एक अलग ही प्रेशर होता है और आजकल तो ओपन माइक्स में लोग ज्यादा पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, तो मेरा सवाल यही है कि जब आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं तो आप ये कैसे महसूस करते हैं कि कहीं उनकी वजह से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अफेक्ट तो नहीं हो रही, कि सिर्फ आप उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में वो पोइट्री तो नहीं सुना रहे कि जो सिर्फ उनको ही समझ आए, तो ऐसा होता है आपके साथ?
1: होता है और अक्सर होता ही है,
0: होता ही है।
1: जो कवि सम्मेलन और मुशायरे जो संयोजक और आयोजक कराते हैं जिसमें ऑडियंस भी आती है, तो वहाँ हमको मूल कविता अगर हम साहित्य पूरा सुनाने लगेंगे तो लोग इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे।
0: ओके।
1: क्योंकि लोग खुद एक तो इतनी जल्दबाजी में है, दूसरा उनके पास ऑप्शन भी बहुत है। अगर इस इतनी व्यस्तता के बाद भी अगर वो हमारे सामने बैठे हैं कुछ कविता के सुनने के लिए, तो हमारा भी दायित्व ये बनता है कि सिर्फ उनको सारी चीजें जो है ज्ञान की ना बताई जाए, कुछ उनके मन के हिसाब से मूड के हिसाब से कहकर, चार शेर आप उनके मूड के हिसाब से कहिए, दो शेर जो आपको अपनी बात कहनी है जो समाज के लिए प्रासंगिक है, जो समय के लिए प्रासंगिक है, वो आप कह सकते हैं। तो मेरा कहना है कि थोड़ा सा जैसे सैंडविच होती है, तो उसमें दोनों ब्रेड के बीच में जो आप वेजिटेबल डाल सकते हैं, तो इस तरीके का काम भी कर सकते हैं, या माला की तरह परो सकते हैं, सारे व्हाइट मोती जो सफेद मोतियों के बीच में दो चार सुनहरे मोती रख दें, तो उससे क्या है कि माला भी थोड़ा सा और अलग अंदाज में निखर के आएगी और मोतियों की भी सही स्थिति आपको वहां पर मिल जाएगी।
0: जी।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियरा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: आप बहुत कुछ लिखते होंगे, बहुत सारे पर्सनल एक्सपीरियंस भी होते होंगे जिसके थ्रू आप लिखते होंगे, और आप ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज या कौन सी पोइट्री आपको पब्लिक तक पहुंचानी है और कौन सी अपने पास बचा के रखनी है, ये चीज कैसे डिसाइड करते हैं?
1: खुद तक बचाने की तो कोशिश ये है कि मैम मेरी हर आह को वह मिलती है जहाँ मैं खो जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। तो ये चीजें हैं कि खुद तक अगर समेट कर रखेंगे तो फिर हम आजाद नहीं रह पाएंगे। और लोगों तक जुड़ना ये है कि हमारे ही शब्दों में अगर उनके गम मिल रहे हैं तो ये समझिए कि लोग हमारे साथ चल रहे हैं।
0: अच्छा, इस बात में कितना अग्री करते हैं कि जब कहते हैं कि एक बहुत ही अच्छा कवि तभी बनता है, अच्छा शायर तभी बनता है जब उसका दिल टूटता है। तो जब लाइफ में बहुत सारे बहुत ज्यादा गम मिलता है तब आप बहुत बहुत अच्छा या डेप्थ में कुछ कह पाते हैं, इस बात से कितना अग्री करते हैं आप?
1: हाँ, इससे तो आपकी से 200% अग्री करना भी पड़ेगा क्योंकि कोई जो शायर और कवि इस धारा से नहीं भी है वो जब दिल टूटता है तो शायर उनके अंदर से निकल के आता है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि कविता और शायरी क्या है कि अंदर की वेदना को जब शब्द मिलते हैं, आदमी गद्य में अगर कहना चाहे सीधे सीधे जी मुझे दुख हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, वहां बात नहीं जमती, लेकिन जब उसको तालमेल मिल जाता है विचारों को तो कविता एक अपना सृजन कर लेती है अपने आप में। तो हर कवि, हर व्यक्ति अपने आप में कवि और शायर है, समय समय पर उसकी वेदनाएं उछाल कर अपने लफ्जों में आ जाती हैं तो वो शायर कवि बनता है। दूसरी बात जो आपने कही कि जब भी कोई प्रेम है, हमारा जो दिल धड़कता है उसी से सारी वेदनाएं उत्पन्न होती हैं, या तो गम की हुई या प्रसन्नता की हुई। तो प्रसन्नता के लिए उतना गहराई तक आदमी नहीं जा पाता जितना गम में चला जाता है। तो गम से मतलब ये समुद्र मंथन है जिससे अमृत भी निकल आता है और भी कई सारे रत्न निकल आते हैं
0: जी।
1: तो मंथन बहुत जरूरी है।
0: एक और सवाल है, एक वक्त था जब लोग शायरी को सिर्फ सुनते नहीं थे बल्कि महसूस भी करते थे, लेकिन अब जो है सिर्फ लोग वायरल होने पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इनफैक्ट थोड़ा बहुत उन्होंने कहीं सुना तो लिखने लग जाते हैं। तो आप इस चीज से क्या कहना चाहेंगे इस चीज के बारे में कि आजकल जो लोग हैं वो इतना ज्यादा सिर्फ वायरल होने पर क्यों ध्यान दे रहे हैं जबकि वो अच्छा लिख भी नहीं रहे?
1: बिल्कुल सही बात कही आपने, वायरल होने की दौड़ में हम खुद भी खत्म होते जा रहे हैं। प्रोफेशन कोई भी हो, सिर्फ वायरल होकर और किसके कितने फॉलोवर हैं हम उसका मूल्यांकन कर रहे हैं बजाय उसकी कविता या बजाय उसके काम को जाने हुए। तो ये जो दौर तकनीकी का चल रहा है इसमें हर आदमी इतना स्पीड में भाग रहा है कि उसको इतना समय नहीं दे पा रहा है कि 30 सेकंड से ज्यादा मैं किसी शायर या कवि को या किसी व्यक्ति को सुन सकूं। दूसरा, वायरल होने की जो होड़ है या वायरल होने की जो ग्लोरीफाई चीजें कर दी गई हैं उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पर खतरा भी हो सकता है, क्योंकि जो मूल साहित्य है वो समय लेगा और समय जो पकने में लेता है वो फिर बिकने में समय लेता है। तो चीजें थोड़ी सी मैट कर।
0: अच्छा, साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है?
1: खूबसूरती ये है कि आप हर किसी से आप मित्रता कर सकते हैं बजाय किसके कि आप अपने शब्दों से उसका मन जीत सकते हैं, उसका मन हल्का कर सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किसी के मन को हल्का कर सकते हैं अपने शब्दों के द्वारा तो ये सबसे बड़ी पूजा है। आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं है
0: जी। और इस चीज में आप कितना अग्री करते हैं कि अगर एक पोइट खुद लिखता है और वो बहुत अच्छा खुद रिसाइट करना भी जानता है तो और खूबसूरती बढ़ जाती है कविता की?
1: हाँ, अगर हम 50 शेर ऐसे लिखते हैं तो शायर को कुछ अंदाजा हो जाता है कि 2-3 शेर मैंने ऐसे लिखे हैं जो उस गहराई तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि शायर या कवि निरंतर हम साहित्य को पढ़ते भी रहते हैं। आज का जो साहित्य उसको भी पढ़ रहे हैं, जो पुराना साहित्य उसको भी पढ़ रहे हैं। तो जब हम दोनों के बीच में होते हैं तो खुद का मूल्य
0: क्या डिफरेंस महसूस करते हैं दोनों साहित्य?
1: डिफरेंस थोड़ा सा गहराई का रहता है और थोड़ी सी जो आज के समय में जो शायरी आ रही है उसमें एक तुकांत बनाने पे ज्यादा फोकस है कि राइमिंग बन जाए मेरा काम हो जाए। तो सिर्फ राइमिंग इसका एक खूबसूरत मतलब भाग हो सकता है, लेकिन जो उसका मूल है, जो उसकी जो गहराई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो बरकरार रहेगी तभी शेर लंबा चलेगा, तभी आप जीवंत रहेंगे
0: जी।

0: एक और सवाल है, अच्छा क्या ज्यादा पसंद है अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं तो, ओपन माइक या काव्य गोष्ठी की तालियां, या ऐसे कमरे में बैठकर अकेले कुछ गहरी लाइंस लिखना खुद के लिए या किसी के भी लिए, क्या ज्यादा पसंद होगा?
1: देखो पसंद की तो बात ऐसी, एक तो आपने ओपन माइक या कवि सम्मेलन में डिसाइड कराइए और या फिर आपने एक कमरा दे दिया
0: हाँ।
1: तो कमरा तो जैसी बात है कमरे से ही सारी चीजें निकलती है, जो ओपन माइक तक जाएंगी या कवि सम्मेलन तक जाएंगी, तो सबसे पहले तो उस कमरे को तवज्जो देंगे। उसके बाद बात रही कवि सम्मेलन और मुशायरे की, मेन क्वेश्चन आपका ये हो जाता है, तो ओपन माइक में चीजें मैं ये कह सकता हूँ कि शुरुआती दौर में जो नए कवि हैं कलमकार हैं वो खुद का मूल्यांकन करने के लिए खुद को तराशने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं। और वहां भी सबसे बड़ी बात क्या होती है, वहाँ ऑडियंस नहीं होती, वहाँ सारे लोग शायर या कवि होते हैं, तो आप उनके बीच में पढ़कर और उनके कलामों को सुनकर ये पता लगा सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं।
0: अच्छा क्या डिफरेंस है, जैसे अगर मैं बात करूं मुशायरे की, जहां लोग आते हैं वो जानते नहीं है शायद उस फील्ड के बारे में या स्पेसिफिक लिटरेचर के बारे में, जस्ट वो आपको सुनते हैं और फील करके उनको अच्छा लगता है शायद, और जैसे हम ओपन माइक की बात करें, जैसे अभी आपने कहा कि वहां पर सब लोग जानते हैं, वो सब पोइट्री होते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस लगता है?
1: डिफरेंस एक तो ऑडियंस का हो गया, दूसरा जैसे आपने कहा पॉपुलैरिटी और फेम, तो इसमें क्या होता है जब चौराहे सर या गली मोहल्ले के लोग हमें सुनने आते हैं तो वो हमें नहीं सुनने
0: हैं,
1: वो भाषा को सुनने आ रहे हैं, भाषा के सृजन को सुनना आ रहे हैं, साहित्य को सुनने आ रहे हैं, तो साहित्य के प्रेमियों की हमेशा हम आदर करते हैं क्योंकि हम साहित्य से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे नाम पर आ रहे हैं वो। मैं इतनी खासियत

0: अब इम्पॉर्टेंट टास्क पर आते हैं, बिकॉज इतनी सारी बातें आपसे हो गई हैं और हमारे जो लिसनर्स हैं, जो अभी हमें सुन रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने अभी कितनी खूबसूरत रचनाएं जो हैं वो लिखी हैं। तो कुछ ऐसी रचनाएं जो आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहें तो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे।
1: जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा भी और इतना लंबा सफ़र हमने जो वार्तालाप में पूरा किया है, तो मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि कितना मुश्किल है तजुर्बे की आबरू रखना। मैंने आपके सारे सवाल के जवाब दिए, लेकिन हाँ फिर भी बहुत कुछ रह गया जो मैं नहीं कह पा रहा हूँ। तो शेर आप पकड़ने की कोशिश करें कि कितना मुश्किल है तजुर्बे की आबरू रखना, जितना सहा है उसको हुबहू रखना।
0: क्या बात है,
1: जितना सहा है उसको खूब हुबहू रखना। और शेर बतौर खास कि किरदार चंदन सा रखना भी तो खेल नहीं, किरदार चंदन सा रखना भी तो खेल नहीं, मुश्किल है अजगर लपेट कर खुशबू रखना। तो ये अजगर मेरा मानना है कि तकनीकी दौर के वो अनछुए कारनामे हैं जिनमें व्यक्ति विजी है, लेकिन फिर भी जो ओरिजिनलिटी, जो मूल है, वो चंदन की तरह अपनी खुशबू बिखेरता ही रहेगा, साहित्य बिखेरता रहेगा।
0: जी क्या बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और जाते हुए कोई और एक गजल जो हम जरूर सुनेंगे।

0: की?
1: जी मैं एक गजल के दो शेर और पढ़ता हूँ कि आजकल बेमूल बिक रहा हूँ मैं, आजकल बेमूल बिक रहा हूँ मैं, हाँ तेरी दास्तान इश्क लिख रहा हूँ, हाँ तेरी दास्तान इश्क लिख रहा हूँ मैं। और बड़ा शेर इसमें ये है, जिंदगी का फलसफा बांधने की कोशिश की है, हाँ तेरी दास्तान इश्क लिख रहा हूँ मैं, ख्वाहिशें जरूरतों से कब आजाद होंगी। जिंदगी इसी बीच में है, ख्वाहिशें जरूरतों से कब आजाद होंगी, जिंदगी तेरे बोझ से थक रहा हूँ। पूरी जिंदगी निकल जाती है लेकिन हम ये तय नहीं कर पाते, हमारे जो कदम हैं वो चाहते हैं पर चाहते हैं कि ख्वाहिशों के आसमान में उड़ें, लेकिन जरूरतें कदम की बेड़ी बन जाती है
0: जी।
1: तो इसके बीच का सफर जिंदगी रहता है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत आपकी रचना है। अभी मुझे लगता है कुछ और कहना भी चाहते हैं।
1: तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही अच्छा मुक्तक मैंने ताजा लिखा है, बिल्कुल आपके ही लिख कर ले गया था।
0: बिल्कुल,
1: कि मन्नतों के ये धागे तुम्हारे लिए, रात भर हम थे जागे तुम्हारे लिए, रुखसती से तो तुम चढ़ गए सीढ़ियां। अब शेर देखिए कैसे पलटता है, रुखसती से तो तुम चढ़ गए सीढ़ियां, हम थे कितने अभागे तुम्हारे लिए।
0: क्या बात है,
1: मतलब इसमें ये कोशिश की है कि मतलब मेरे हट जाने से उसको तरक्की मिली है, मैं इतना अभागा था
0: जी।
1: तो जो दौर की आजकल जो केस आ रहे हैं उसके उसमें भी ये प्रासंगिक बैठता है। मुझे ही किनारा करने के बाद तुझे तरक्की मिलेगी।
0: क्या बात है, बहुत
1: मेरी सारी कोशिश रही कि तुझे तरक्की कराऊं।
0: बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, आपसे बात करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जाते हुए आपका एक मैसेज जो हम अपने लिसनर्स तक जरूर पहुंचाएंगे और उन यंग पोइट्स तक भी जो लिखने की फील्ड में आ रहे हैं लेकिन उनको एग्जैक्ट वो पाथ नहीं पता है किस तरह से लिखा जाए, कौन कौन से टिप्स हैं जो उनको एक बेहतर शायर या एक कवि बना सकते हैं, तो उनके लिए क्या आपके टिप्स या क्या मैसेज है?
1: सबसे पहली बात तो ये है कि आप लिखने से पहले सुनिए और पढ़िए। जब आप 10 शेर सुनेंगे, 20 शेर सुनेंगे या पढ़ेंगे तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 22वां शेर आपके अंदर से निकलेगा या 22वीं कविता आपके अंदर से निकलेगी
0: जी।
1: तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पढ़ती रहिए और सुनते भी रहिए। जब हम मंचों के कवियों को सुनते हैं तो उससे हमें अंदाज पता चलता है किस तरह से चीजें रखी जाती हैं, परोसी कैसे जाती है, प्रेजेंटेशन कैसी होती है। मैंने बहुत सुना है हर कवि को, हर मुझे लगता है आजकल जितने भी कवि और शायर हैं, दुबई मुशायरा से लेकर और आपके लाल किला के कवि सम्मेलन जितने भी हैं, मैंने उनकी एक एक कविताओं को 4-4 बार भी सुना है। क्यों? क्योंकि मुझे उनके हर एक अंदाज को सुनकर महसूस करना, ऑब्जर्वेशन करना, तो वो बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बात क्या है कि जैसे आप नए कवि हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात, जैसे जो कुछ भी आपके अंदर आ रहा है उसको शब्द देते रहिए। ये मूल्यांकन मत कीजिए यार ये पंक्ति तो बहुत छोटी है, ऐसा तो नहीं होता। अपना मूल्यांकन करने के लिए आप बड़े कवियों की जो साहित्य है उसका सहारा लेंगे तो ज्यादा महत्वपूर्ण है
0: जी।
1: तो जो भी अंदर आ रहा है उसको शब्द देते रहिए। लिखना महत्वपूर्ण है, बाजार में निकलना कम।
0: क्या बात है,
1: लिखना ज्यादा, लिखते रहोगे तो आप जिंदे रहोगे अगर आपके अंदर ये चीज है तो।
0: जी जी, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमारे लिसनर्स तक पहुंचाने के लिए, थैंक यू।
1: बहुत बहुत आभार मैम आपका
0: जी। और लिसनर्स आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 कुछ हटके और मैं हूँ आपकी अपनी
1: रेट्रो वाली सपना
0: और ले आई हूँ आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, क्योंकि बातें तो होती ही रहती हैं जब मिल बैठते हैं तीन यार, आप, मैं और आज का हमारा बॉलीवुड स्टार। आज मैं जिस स्टार की बात करने जा रही हूँ वो एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने कभी भी हीरोइन बनने की रेस में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि हर कैरेक्टर को इतना पावरफुल बना दिया कि लोग उन्हें उनके नाम से नहीं उनके काम से जानने लगे। ये बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस हैं जिनके लिए स्क्रीन टाइम ने कभी मैटर ही नहीं किया, चाहे वो 5 मिनट का रोल हो या फिर पूरी फिल्म का रोल। जब भी वो स्क्रीन पर आती हैं, सारी अटेंशन वही ग्रैब कर लेती हैं। नेशनल अवार्ड विनर, हंड्रेड्स ऑफ मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस और हर इमोशन को इतनी ऑनेस्टी से निभाने वाली एक्ट्रेस। आज हम जानेंगे उनकी इंस्पायरिंग जर्नी और वो वजह जिसने उन्हें इंडियन सिनेमा की सबसे रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस की लिस्ट में शामिल कर दिया। किसकी बात कर रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ सस्पेंस तो रहना ही चाहिए। चलिए, जब तक आप सोचिए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तब तक सुनाती हूँ आपको कुछ खूबसूरत से गीत और जल्द मुलाकात होगी आपसे यहीं।

0: आज मैं आपको बताती हूँ प्लास्टिक इस्तेमाल करने के दो फायदे।
1: लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल।
0: पहला फायदा, आपका हर दिन संडे जैसा हो जाएगा, क्योंकि दमा और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां आपको बेड से उठने नहीं देंगी।
2: ये भगवान क्या जुलुम है।
0: दूसरा फायदा, आपके बच्चे दिन रात पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि दिमाग कमजोर होने की वजह से उन्हें एक ही चैप्टर बार बार पढ़ना पड़ेगा।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को।

चेहरे को छूती सर्द हवाओं का सवेरा, धुंध में खोती शाम तुझसे है। 24 घंटे में कुछ मिनटों की फुर्सत, जुकाम में आराम तुझसे है। तुझी से है कैंटीन का बिल, टपरी पर मिलते दो दिल। तुझी पे खत्म पुराने दोस्तों में लड़ाई, और नए रिश्ते की बात तुझसे है। मौसम चाहे जो भी रहे, तेरा ही नाम जुबां पर आए। चाय चाय बस चाय, बातों की मस्ती और चाय की चुस्की के साथ होगी रेडियो महारानी पर मोहब्बत के नगमों की बरसात।

कुछ गाने कभी पुराने नहीं होते। जब भी आप इन्हें सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये गाना तो अभी अभी मैंने सुना है और हमेशा मेरे कानों में रहता है। खैर, ये भी एक ऐसा ही गीत रहा जिसे जया भादुड़ी और संजीव कुमार पर पिक्चराइज किया गया था और फिल्म थी अनामिका। इसी गीत के साथ स्वागत है एक बार फिर से रात बाकी बात बाकी में, जहां मैं बात करने जा रही हूं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिनका जन्म 25 सितंबर 1977 पंजाब में हुआ। इनके पिताजी लंदन में काम किया करते थे और इनकी मदर नलिनी दत्ता, जो कि पैशनेटली एक कथक डांसर और एक ऑथर थी, बट प्रोफेशनली शी वाज अ डॉक्टर, जो कि हमेशा अपनी बेटी को सपोर्ट किया करती थी। खैर, मैंने अभी तक अपने गेस्ट का नाम नहीं बताया है। मैं आज बात करने जा रही हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाल और पंजाबी कुड़ी दिव्या दत्ता जी की, जिन्होंने सिर्फ अपनी एक्टिंग से नहीं, अपनी आवाज से भी नहीं, बल्कि अपनी आंखों से भी हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है। तो दिव्या अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच थी, लेकिन इनके फादर जब लंदन चले गए काम के लिए तो ये इतनी डिसहार्टन हो गई कि इन्होंने एक बार अपने ताऊजी से ये कहा कि क्या मैं आपको पापा कहकर बुला सकती हूँ। जब इनके फादर साहब को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन किया और अपनी प्यारी बिटिया दिव्या के पास हिंदुस्तान वापस चले आए। पर यहाँ आकर उनका साथ ज्यादा वक्त का नहीं रहा और बहुत जल्दी दिव्या ने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया। खैर, कहते हैं कि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। ऐसा ही सवेरा बनकर इनकी मदर नलिनी दत्ता इनकी जिंदगी में आई और उन्होंने अपनी बेटी को हर तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साथ ही एक और भी ऐसी इंस्पिरेशन रही इनकी लाइफ में जिन्होंने इन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रेरित किया। ये कोई और नहीं बल्कि एक ऐसे शख्स हैं जो कि हर बडिंग आर्टिस्ट के आइडल रहे हैं। ये हैं अमिताभ बच्चन साहब, जिनसे दिव्या इतनी इंस्पायर्ड थी कि हमेशा उनकी मिमिक्री किया करती थी। खैर, अपने आइडल को एक बार स्कूल स्टेज पर भी प्रेजेंट करने का दिव्या को मौका मिला और वहीं से हर कोई दिव्या की एक्टिंग का दीवाना हो गया, एक्सेप्ट वन। इट वॉज नन अदर देन हर क्लास टीचर, जो कि ये मानती थी कि फिल्म इंडस्ट्री कोई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। इसलिए वो हमेशा दिव्या को ये समझाया करती थी कि एक्टिंग की तरफ कम और पढ़ाई की तरफ ज्यादा ध्यान दे। खैर, मैं उस वक्त की बात कर रही हूँ जब एक्टिंग को एक अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था। दिव्या को भी इस बात से होकर गुजरना पड़ा, पर इनकी मदर हमेशा ये कहती थी कि जो दिल में आए, जो करना चाहो वो सब करो। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन थी जो इनकी मदर ने दिव्या पर इम्पोज की थी। वो क्या थी कंडीशन, आपको जरूर बताऊंगी। फिलहाल इतनी सारी बातें हो गई हैं, एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक तो बनता है ना।

0: मैं जितेश मल्होत्रा, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक फरीदाबाद, रेडियो महारानी 89.6 के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा हेलमेट एवं सीट बेल्ट पहने, गाड़ी निर्धारित गति सीमा व निर्धारित लेन में ही चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग ना करें, ट्रैफिक लाइट्स को देखकर ही आगे बढ़ें व रुकें, और यदि आप बीमार हैं या थके हुए हैं तो वाहन ना चलाएं, और पैदल चलने वाले यात्री सिर्फ जेब्रा क्रॉसिंग या फुट ओवर ब्रिज से ही सड़क को पार करें। धन्यवाद।
1: will tell you two advantages of cutting trees.
2: देख रहा है बिनो, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है।
1: पेड़ काटने का पहला फायदा, आप सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स भरने वाले नागरिक बन जाएंगे, क्योंकि फ्री में मिलने वाली ऑक्सीजन भी आपको लाखों में खरीदनी पड़ेगी।
3: गोलमाल है भाई सब, गोलमाल है।
1: दूसरा फायदा, आपके साथ साथ आपका शहर भी पढ़ा लिखा हो जाएगा, क्योंकि हर गर्मी में उसकी डिग्री बढ़ती चली जाएगी।
4: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को।

कुछ दास्तानें अजीब होती हैं तो कुछ इतनी खूबसूरत कि जिनके बारे में बात करने का हमेशा ही मन करता है। जैसे आज मैं जिस अदाकारा की बात करने जा रही हूँ, इनके बारे में बात करते हुए मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा है कि इन्होंने अपने बचपन को इस मजबूती से पकड़ के रखा कि आज वो जिस मुकाम पर हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए शायद इन्हें कई इम्तिहानों से होकर गुजरना पड़ा होगा। स्वागत है आप सभी का रात बाकी बात बाकी में, और आज मैं बात कर रही हूँ दिव्या दत्ता जी की, जिन्होंने बचपन में ही अपने फादर को खो दिया, पर इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ निभाया उनकी माँ ने, जो कि एक दीवार बनकर दुनिया और इनके बीच में खड़ी हो गई थी। खैर, दिव्या इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन को हमेशा ही इंस्पिरेशन माना करती थी और उन्हें मिमिक किया करती थी, और उनकी मिमिक्री करते करते वो अपने स्कूल में हर किसी की फेवरेट भी बन गई थी। जहाँ इनका पूरा फोकस एक्टिंग पर रहा करता था, वहीं इनके छोटे भाई का फोकस अपनी बहन को अपने कैमरा से कैप्चर करने में रहता था। उसकी फेवरेट थी उसकी बड़ी बहन, इसलिए हमेशा ही उसकी इमेजेस क्लिक किया करता था। खैर, यहाँ तो दिव्या बिजी थी अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए ताकि वो फिल्म इंडस्ट्री में जा सके। इसके लिए उनकी मदर हमेशा ही उन्हें अपनी पोएट्री, अपने मोनोलॉग्स दिया करती थी, जिन्हें दिव्या बाय हार्ट कर लेती थी और किसी न किसी मौके पर स्कूल स्टेज पर परफॉर्म किया करती थी और सबकी वाहवाही लूट लिया करती थी। ऐसे ही करते करते वो वक्त आया जब दिव्या और उसके छोटे भाई ने मजाक मजाक में कुछ इमेजेस एक टैलेंट हंट में भेज दी, जहां पर दिव्या का सिलेक्शन भी हो गया। खैर, ये टैलेंट हंट कोई छोटा मोटा नहीं था, बल्कि सोनाली बेंद्रे जैसी फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी कलाकार जो आज कलाकार बनी है, पहले तो वो भी एक कंटेस्टेंट थी, इस टैलेंट हंट में हिस्सा ले रही थी। और वहीं दूसरी ओर सुभाष घई और शेखर कपूर जैसे फेमस डायरेक्टर्स इस टैलेंट हंट को जज कर रहे थे। फर्स्ट राउंड हुआ और वो बहुत अच्छा गया। दिव्या दत्ता ने अपनी मदर की लिखी हुई एक पोएम पढ़ी, जिसकी वजह से वो सिलेक्ट भी हो गई, और उसके बाद इन्हें कई चीजों के लिए ट्रेन भी किया गया। फाइनल राउंड तक पहुंचते पहुंचते दिव्या थोड़ी सी नर्वस हो गई थी, पर जिसके साथ माँ हो वो पीछे कैसे रह सकता है। दिव्या का साथ एक बार फिर से उनकी माँ ने निभाया और उनके लिखे हुए मोनोलॉग को दिव्या ने स्टेज पर परफॉर्म किया, एंड शी बिकेम द विनर ऑफ दैट टैलेंट हंट। और यहीं से दिव्या की एक अलग जर्नी शुरू हुई। यहाँ दिव्या को विनर बनने के बाद भी कई तरीके से ट्रेन किया गया। खैर, इसी ट्रेनिंग के दौरान उन्हें अपने आइडल से मिलने का मौका भी मिला। ये आइडल मैं पहले बता चुकी हूँ, ये आइडल थे अमिताभ बच्चन साहब, जो वहाँ विनर को ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचे थे। लेकिन दिव्या तो उन्हें देख कर इतनी नर्वस हो गई, इतनी कॉन्शियस हो गई कि वो अपनी जगह से ही नहीं हिल पाई। और जब अमिताभ सर वहां से चले गए, उसके बाद सबने उन्हें जगाया कि भाई दिव्या क्या कर रही हो, तुम्हारे आइडल चले गए हैं। तो दिव्या के मुंह से जो पहले शब्द निकले वो आज हकीकत में बदल चुके हैं। दिव्या ने कहा कि आज तो मेरे आइडल मेरे आगे से चले गए हैं, लेकिन वो दिन जल्द आएगा जब मैं उनके साथ काम करूंगी। खैर, ये मौका भी किस्मत ने दिव्या को दिया, पर पहले मैं आपको बता दूं कि वो कंडीशन क्या थी जिसने बांध रखा था दिव्या को। दरअसल दिव्या की मदर हमेशा से ये चाहती थी कि दिव्या जो भी करना चाहती है, जो भी बनना चाहती है वो बन सकती है, लेकिन कंडीशन सिर्फ एक थी कि अपना पैशन फॉलो करने से पहले दिव्या को अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी। और दिव्या ने अपनी मदर की इस बात को रिस्पेक्टफुली पूरा भी किया और अपनी पढ़ाई पूरी करके फिल्म इंडस्ट्री में कदम भी रखा।

0: आपको बताती हूँ सिगरेट या तंबाकू जैसे प्रोडक्ट्स लेने के दो फायदे।
1: क्या बात, ये बात है।
0: पहला फायदा, आपके घर पर कभी चोरी नहीं होगी क्योंकि रात भर खास खास कर आपको नींद ही नहीं आएगी।
2: ये गड़बड़े बाबा।
0: दूसरा फायदा, आप स्पेशल ह्यूमन बन जाएंगे क्योंकि आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बाकी लोगों से दो गुना ज्यादा हो जाएंगे।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी कुछ हटके।
4: रेडियो महारानी पर बिताएं सुकून का एक मिनट। मौके सड़कों पर लगी लाइट्स की तरह होते हैं। ये हमारे सफर की दूरी तो कम नहीं कर सकते पर रास्तों को रोशन जरूर करते हैं। यही है आज की कहानी, एक मौका। एक मौका, एक मजदूर को समुद्र किनारे एक बड़ा शंख हाथ लगता है जिसको बेचकर वो अच्छी खासी कीमत कमा सकता था। ये देखकर वहीं खड़ा दूसरा मजदूर भी बड़े शंख की तलाश में मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। उसके हाथ कई छोटे शंख लगते हैं पर वो उन्हें फेंक देता है और सिर्फ बड़े शंख को ही ढूंढने में पूरी शाम बिता देता है। रात को बाजार से लौटने के बाद पहला मजदूर बताता है कि उसे बड़े शंख को बेचने की कीमत पूरे 1,000 रुपए मिली। ये सुनकर दूसरा मजदूर चिढ़ जाता है पर उसकी चिढ़ अफसोस में बदल जाती है क्योंकि जिन छोटे शंखों को वो फेंक रहा था उसे भी पहला मजदूर बाजार में बेच आया था जिसके बदले उसे पूरे 3,000 रुपए मिले थे और ऐसे मजदूर ने गवा दिया एक मौका।

का टाइटल ट्रैक जो भी आप कर रहे थे एंजॉय, और इसी के साथ एक बार फिर से दिव्या दत्ता के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के सामने लेकर अपना शो रात बाकी बात बाकी सपना हूं मैं आपके साथ। और आज दिव्या दत्ता की जो हम बातें कर रहे हैं, सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पर्सनली उन्हें जानती हूँ। और उनकी जो स्टोरी है वो इतनी इंस्पायरिंग है, एक ऐसी बच्ची जिसने बचपन में ही अपने फादर को खो दिया, किस तरह से मजबूती से खड़े होकर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अकेले अपना एक मुकाम हासिल किया। ये छोटी बात नहीं है किसी भी शख्स के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली जब वो आर्टिस्ट एक फीमेल हो। खैर प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, लेकिन इनिशियल स्टेज पर हर कोई हमें तोड़ने को तैयार रहता है। मजबूत इंसान ही अपने प्रोफेशन में, अपने पैशन में आगे बढ़ सकता है, जिसमें आज दिव्या दत्ता का नाम भी शामिल है। खैर टैलेंट हंट में विनर बनने के बाद जब ये पहुंची फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे पर, तो इन्हें ऐसा लगा कि अरे मैं तो विनर बन चुकी हूँ, बहुत सारे एक्टर स्टार्स मुझे ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो मेरे लिए तो दरवाजे खुल ही चुके हैं। लेकिन कोई भी जर्नी इतनी आसान कहाँ होती है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिव्या को मिल रहे थे, जिसमें से कुछ एडवर्टाइजमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, तो कुछ म्यूजिक एल्बम्स, तो कुछ फिल्में भी थी। कुछ फिल्में इनकी शॉर्ट हाइट और इनकी कम उम्र को देखते हुए इनसे वापस ले ली गई, तो कुछ फिल्मों में इनका रोल ये कहकर काट दिया गया कि इनका फेस काफी रिजेंबल करता है उस फिल्म की एक्ट्रेस के साथ। खैर यहाँ मैं बात कर रही हूँ बाजीगर फिल्म की, जिसमें शिल्पा शेट्टी को मिलने वाला रोल पहले दिव्या दत्ता को ऑफर हुआ। अगर दिव्या ये रोल कर लेती तो ये उनकी डेब्यू फिल्म हो सकती थी, पर डायरेक्टर को ऐसा लगा कि दिव्या दत्ता और काजोल के फेसेस एक दूसरे से काफी रिजेंबल करते हैं, इसलिए ये फिल्म दिव्या दत्ता से लेकर शिल्पा शेट्टी की झोली में जा गिरी। खैर ये पहली ऐसी फिल्म नहीं थी, ऐसी बहुत सारी फिल्में थी जो दिव्या को मिलते मिलते रह गई। 1994 में फिल्म इश्क में जीना इश्क में मरना फिल्म से दिव्या ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया। ये फिल्म दिव्या के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, लेकिन ऑडियंस के लिए नहीं, इसलिए उन्होंने दिव्या को इस फिल्म में कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बहुत अच्छा कमाल नहीं दिखा पाई। धीरे धीरे दिव्या ने बहुत सारी फिल्में की और एक मुकाम ऐसा आया जब इन्हें समझ में आ गया कि लीड रोल में इनकी दाल फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गलने वाली, इसलिए इन्होंने कैरेक्टर रोल्स भी एक्सेप्ट करने स्टार्ट कर दिए। पर वो कहते हैं ना कि आप काम करते रहते हैं तो एक टाइम पर आकर आपको ऐसा लगता है कि बस शायद ये काम ही मेरे लिए नहीं बना जिसमें मैं अपना इतना पोटेंशियल लगा रही हूँ। ऐसा ही दिव्या के साथ भी हुआ। There was a time जब उन्हें ऐसा रियलाइज हुआ कि नहीं, शायद फिल्म इंडस्ट्री मेरे लिए बनी ही नहीं है। पर एक मौका ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को जरूर देना होता है, जो कि दिव्या ने भी दिया। उन्होंने कहा कि इसके बाद अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट काम करने के लिए मिला तो मैं करूंगी, अदरवाइज फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगी। खैर वो वक्त भी दिव्या की लाइफ में आया जब इन्हें अच्छे प्रोजेक्ट मिलने लगे। पर वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो दिव्या को भी अच्छे प्रोजेक्ट्स पाने के लिए कुछ खोना पड़ा था। क्या खोया था दिव्या ने कुछ पाने के लिए, वो आपको जरूर बताऊंगी। तब तक हम एंजॉय करते हैं शिल्पा शेट्टी पर पिक्चराइज एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत, चुरक दे मेरा। वैसे इस हसीन मौसम में गोरिया दिल चुरा ही देती है।

0: बताएं सुकून का एक मिनट।
1: पूरी दुनिया को डुबोने की ताकत रखने वाला समुद्र क्यों तेल की एक बूंद को डुबा नहीं पाता, यही है आज की कहानी। अपनी अपनी खूबियां। एक बड़ा बिजनेसमैन एक नाव पर बैठकर नदी पार कर रहा था। उसने नाव चलाने वाले नाविक को बताया कि वो बहुत बड़ा आदमी है, यहाँ गांव में फैक्ट्री डालने आया है, पर उसे कोई पहचान ही नहीं रहा, जबकि उसकी फोटो तो रोज अखबार में छपती है। नाविक ने उसे बताया कि गांव में कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, तो अखबार का क्या करेंगे। बिजनेसमैन ने गांव वालों को बहुत कोसा और कहा, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। नदी के बीचों बीच पहुँचते ही नाव अचानक डूबने लगी। बिजनेसमैन डर गया क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। नाविक उसे देख कर बोला, घबराओ नहीं साहब, मुझे तैरना भी आता है और डूबते को बचाना भी। यही फायदा है मेरी जिंदगी का, क्योंकि हर किसी में होती है अपनी अपनी खूबियां।

चौहान की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत, और इसी गीत के साथ मैं वापस आ चुकी हूँ स्टूडियो में लेकर आपका फेवरेट शो रात बाकी बात बाकी, जहाँ आज हम दिव्या दत्ता जी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक्ट्रेस बनने की इच्छा लेकर कदम रखा। यहाँ इन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिली, कुछ फिल्मों में भी काम किया, कुछ एड फिल्म्स में भी काम किया, और यहाँ तक कि कुछ म्यूजिकल एल्बम्स में भी इन्होंने काम किया। इनका डेब्यू फिल्म इंडस्ट्री में एक लीड रोल से हुआ था, लेकिन लोगों ने इन्हें लीड रोल में इतना पसंद नहीं किया, तो इन्होंने अपने दिल को समझाया कि भाई साहब, आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना है तो कैरेक्टर रोल्स पकड़ने पड़ेंगे। इन्होंने कई फिल्में ऐसी भी की जिसमें इन्होंने साइड रोल्स यानी कि कैरेक्टर रोल्स भी किए, जिसमें छोटे सरकार, राम और शाम, राजा की आएगी बारात, घर वाली बाहर वाली, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, इसकी टोपी उसके सर, ना जाने ऐसी कितनी फिल्मों में इन्होंने काम किया। पर जो सक्सेस एक आर्टिस्ट को चाहिए होती है, जो रिकॉग्निशन चाहिए होती है, वो अब तक इन्हें नहीं मिल पा रही थी। तो इन्होंने अपने आप को अपना ही डिसीजन सुनाया कि अगर कुछ दिनों के अंदर अंदर मुझे वो रोल नहीं मिला जिसकी मैं तलाश कर रही हूँ, तो मैं फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। पर फिल्म इंडस्ट्री इन्हें कहाँ छोड़ रही थी, क्योंकि 1998 में इन्हें एक ऐसी फिल्म बनी जिसने इनका डिसीजन पूरी तरह से बदल के रख दिया। फिल्म का नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, और इस फिल्म में इन्होंने हसीना का किरदार निभाया था। ये भी एक कैरेक्टर रोल था, पर इस बार इस फिल्म से इन्हें काफी रिकॉग्निशन मिली। फिल्म सुपर डुपर हिट रही, और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये फिल्म कई मायनों में दिव्या दत्ता के लिए बहुत ही कामयाब फिल्म साबित हुई। इसी फिल्म के हिट होते ही एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी दिव्या की झोली में आकर गिरी, क्योंकि उस वक्त के एक बहुत ही वर्सेटाइल पंजाबी एक्टर और सिंगर गुरदास मान साहब के साथ इन्हें एक फिल्म ऑफर हुई। फिल्म का नाम था शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह। वैसे शायद आप लोग रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर पा रहे मैं उन्हें बता दूं कि इसी फिल्म को 2001 में रीमेक किया गया था, और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने भी इसी कॉन्सेप्ट पर एक फिल्म बनाई थी। फिल्म का नाम था गदर, और दिव्या दत्ता और गुरदास मान साहब को रिप्लेस करते हुए सनी देओल और अमीषा पटेल इस फिल्म में नजर आए थे। कमिंग बैक टू दिव्या, दिव्या ने इस फिल्म में एक पंजाबी किरदार निभाया था, जो कि उनकी ओरिजिनलिटी और स्पेशलिटी थी, इसलिए वो इस किरदार को पूरी तरह से जी पा रही थी। लोगों को उनका काम इतना ज्यादा पसंद आया कि उन्होंने दिव्या को वापस जाने से हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया, और इसके बाद तो देयर वाज नो लुकिंग बैक। दिव्या के पास लाइन लग गई प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की, और वो लोग जो अब तक दिव्या को थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे, अब वही उनके दरवाजे पर उनसे उनका वक्त मांग रहे थे। यही तो खूबसूरती है ना सक्सेस की, जब वो आती है तो ऐसी छा जाती है कि हर कोई आपके पीछे पड़ जाता है। तो खैर, यही स्टारडम इस वक्त दिव्या एंजॉय कर रही थी। जब तक दिव्या एंजॉय करती है अपना स्टारडम, चलिए हम एंजॉय कर लेते हैं इस म्यूजिकल ब्रेक को। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैंने अपनी चॉइसेस तो आपको बता दी कि दिव्या की कौन कौन सी फिल्में मुझे पसंद थी। अब मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है जिसमें दिव्या का किरदार आपको बहुत पसंद आया। नंबर है मेरा 9654896896। आप चाहे तो मुझे कॉल करके बता सकते हैं, या फिर मुझे टेक्स्ट करके भी अपना जवाब दे सकते हैं। इंतजार कर रही हूँ मैं आपके कॉल का, और मेरा इंतजार कर रहा है ये म्यूजिकल ब्रेक।

0: आज मैं आपको बताता हूँ पानी बर्बाद करने के दो फायदे।
1: कौन है ये पागल आदमी?
0: पहला फायदा, आपको बारिश से बचने के लिए छाता नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नदियाँ सूख जाने से बारिश ही नहीं होगी।
2: बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी।
0: दूसरा फायदा, आप एनिमल लवर बन जाएंगे और आपको ऊंट पालना पड़ेगा, क्योंकि पानी सूख जाने से आपका सारा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को।

0: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडियो महारानी पर। सपना जुड़ी हुई हूँ मैं आपके साथ। और म्यूजिकल ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप सभी से एक सवाल किया था कि दिव्या दत्ता की वो फिल्म बताइए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट हैं और बहुत सारे कॉलर्स भी मेरे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलिए जुड़ते हैं अपने पहले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो मैम।
0: हाय, इतनी खूबसूरत आवाज है आपकी, तो चलिए आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए अपनी खूबसूरत आवाज में।
1: मैम मेरा नाम अनुष्का है।
0: हाय अनुष्का, आप क्या करती हैं?
1: मैम मैं एक स्टूडेंट हूँ।
0: ओके, और कहाँ रहती हैं आप?
1: फरीदाबाद से ही हूँ।
0: ओके, तो चलिए अब आप मुझे बताइए दिव्या दत्ता जी की वो फिल्म जो कि आपके दिल के काफी करीब है।
1: मैम उनकी एक बहुत ही फेमस फिल्म है सारा।
0: ओके,
1: उन्होंने शब्बों का रोल प्ले करा है।
0: जी बिल्कुल,
1: उसमें मुझे उनका पंजाबी एक्सेंट बहुत ही ज्यादा पसंद है।
0: बिल्कुल, ये सिर्फ आपको ही नहीं, ये किरदार बहुत से लोगों को बहुत पसंद आया। और इस फिल्म में अगर कोई प्रीटी जिंटा जी को टक्कर दे सकता था तो वो रानी मुखर्जी नहीं, हमारी प्यारी शब्बो दिव्या दत्ता जी थी। अच्छा चलिए मैं इसी फिल्म से रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये एक ऐसी फिल्म थी जिसने दिव्या दत्ता को रीलॉन्च किया था फिल्म इंडस्ट्री में।
1: ओके मैम,
0: तो थैंक यू सो मच अनुष्का, आपने इस फिल्म का जिक्र किया और आप हमारे साथ जुड़ी हमारे शो में। Stay connected and keep smiling. Thank you.
1: Okay, ma'am. Thank you.
0: भाई अब शब्बो हमारे साथ जुड़ गई हैं, तो चलिए शब्बो के बारे में ही आपको कुछ बता देती हूँ। दरअसल जब यश राज फिल्म्स के थ्रू दिव्या जी को ये रोल ऑफर हुआ, उस वक्त ये लंदन में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रही थी, पर ये साइड रोल नहीं करना चाहती थी। ये चाहती थी कि प्रीति जिंटा का रोल इन्हें ऑफर हो, लेकिन यश राज जी की तरफ से यही पॉइंट इनके सामने आया कि इन्हें इस रोल के लिए मना नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस फिल्म को कम्प्लीटली ना कहने से पहले एक बार अपनी मदर से ये डिस्कस कर लूं कि मुझे ये फिल्म करनी चाहिए या नहीं। और जैसे ही इन्होंने अपनी माँ के साथ इस स्क्रिप्ट को शेयर किया तो उन्होंने इमीडिएटली कह दिया कि ये तुम्हारी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होगा, तुम्हें इस फिल्म को करना चाहिए। और उनकी बात मानकर दिव्या जी ने इस फिल्म को एक्सेप्ट किया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म में शब्बो ने हर मेन लीड को पीछे छोड़ दिया और शब्बो के लिए ये फिल्म बन गई एक रीलॉन्चिंग फिल्म। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा दिव्या जी कहती हैं। खैर ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे अभी आपसे कहनी है, पर फिलहाल वक्त है एक म्यूजिकल ब्रेक का। लेकिन जाने से पहले बता दूं कि अभी बहुत सारे लिसनर्स हैं जो मुझे कॉल कर रहे हैं, जुड़ेंगे आगे हम उनसे भी।

0: आपको बताता हूँ पानी बर्बाद करने के दो फायदे।
1: कौन है ये पागल आदमी?
0: पहला फायदा, आपको बारिश से बचने के लिए छाता नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि नदियाँ सूख जाने से बारिश ही नहीं होगी।
2: बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी।
0: दूसरा फायदा, आप एनिमल लवर बन जाएंगे और आपको ऊंट पालना पड़ेगा, क्योंकि पानी सूख जाने से आपका सारा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा।
3: अपना और फायदा जानने के लिए सुनते रहिए रेडियो महारानी को।

0: हेलो जी, वक्त आ चला है एक और कॉलर के साथ जुड़ने का। अरे यार दिव्या दत्ता जी, आपकी फैन फॉलोइंग देख रहे हैं आप, कितने लोग जुड़ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि इस वक्त कॉल पर मेरे साथ कौन मौजूद है।
1: हेलो हेलो मैम,
0: क्या बात है। मुझे लगता है दिव्या दत्ता जी, आपकी जितनी भी फैन फॉलोइंग है ना, उनमें फीमेल्स का नंबर बहुत ज्यादा है, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज।
1: हाय मैम, मेरा नाम दीक्षा है एंड मैं सेक्टर 29 फरीदाबाद से हूँ।
0: हाय दीक्षा, वेलकम टू रेडियो महारानी। तो चलिए अब आप मुझे बताइए दिव्या दत्ता जी की उस फिल्म के बारे में जो कि आपको बहुत पसंद है।
1: सो मैम, मुझे दिव्या दत्ता जी का भाग मिल्खा भाग में जो उनका बड़ी बहन का रोल था, वो रोल बहुत ज्यादा पसंद आया था एंड उसमें उनका नाम इसरी कौर था। और इस फिल्म से मुझे बहुत कनेक्टेड फील हुआ, उनके रोल से बहुत कनेक्टेड फील हुआ, क्योंकि उनका जो प्यार, त्याग और हिम्मत उन्होंने दिखाई है एज अ बड़ी बहन, वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मैं खुद अपने घर में सबसे बड़ी बहन हूँ और सब मेरे सब छोटे भाई बहन है, तो इसलिए मुझे वो फिल्म बहुत पसंद आई।
0: Exactly. हर बड़ी बहन के लिए ये एक ड्रीम था और ऐसा लग रहा था जैसे उनका त्याग बिल्कुल सामने फिल्म पर आ गया हो। थैंक यू सो मच दीक्षा, हमें इस फिल्म के बारे में याद दिलाने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।
1: थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सो मच दीक्षा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भाग मिल्खा भाग फिल्म का ही एक बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा भी मेरे पिटारे में मौजूद है, तो चलिए आपको वो किस्सा सुना ही देती हूँ। अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में उन्होंने फरहान अख्तर साहब की बड़ी बहन का किरदार निभाया, लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि फरहान पर उन्हें लाइफ टाइम क्रश था और वो कभी भी इस रोल को नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अपने क्रश की बड़ी बहन बनना बिल्कुल भी सही नहीं है ना। तो दिव्या जी भी यही मानती थी और वो ये रोल नहीं करना चाहती थी, पर जब उन्हें ये सलाह दी गई कि आप 2 दिन का वक्त ले लीजिए और 2 दिन बाद आप हमें अपना डिसीजन सुनाइएगा, जब अपना डिसीजन देने के लिए वो सेट पर पहुंची तो उन्होंने वहां पर फरहान को एक ऐसे अवतार में देखा जो कि मिल्खा सिंह का था, और उन्हें किरदार में इस तरह से घुसे हुए जब उन्होंने देखा तो उन्हें लगा कि एक किरदार के लिए जब फरहान अपनी पूरी लुक चेंज कर सकते हैं तो अपने किरदार के लिए वो माइंडसेट नहीं चेंज कर सकती। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने क्रश की बड़ी बहन का रोल इस फिल्म में प्ले किया एंड व्हाट एन अमेजिंग रोल, स्पेशली अगर मैं बात करूं उस सेगमेंट की जहां मिल्खा सिंह आकर अपनी बड़ी बहन को अपना इंडिया का ब्लेजर पहनाते हैं और उन्हें कहते हैं कि पॉकेट में हाथ डालो, और पॉकेट में उसकी बहन की वही बालियां होती हैं जो उन्होंने किसी वक्त पर बेच दी थी अपने भाई को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ एक कॉलर, चलिए बात करते हैं इनसे। हेलो।
2: हेलो मैम।
0: हाय, मेरी बात किससे हो रही है?
2: मेरा नाम तन्वी है और मैं जेसी बोस यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्टूडेंट।
0: ओके, हाय तन्वी। तो तन्वी, वैसे तो आपने बता दिया दैट यू आर अ स्टूडेंट, तो अब आप मुझे ये भी बता दीजिए कि हम दिव्या दत्ता जी की जो बात कर रहे हैं तो उनकी कौन सी फिल्म ऐसी है जो आपके दिल के काफी करीब है?
2: जी हाल ही में आई दिव्या दत्ता जी की मूवी चिरैया, जिन्होंने उसमें एक्टिंग इतनी कमाल की थी, उस मूवी में उनके इमोशन एक्सप्रेशन इतने अच्छे थे, बहुत ज्यादा जो लोगों को कनेक्ट करा, और उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पावरफुल परफॉर्मेंस देख के हमको इंस्पिरेशन मिलती है। तो मेरी तरफ से यही था कि उनको उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात कही। एग्जैक्टली ये सिर्फ आप नहीं बल्कि सब मानते हैं कि ये एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस हैं, क्योंकि इस फिल्म में जिस सोशल मैसेज को ये फॉरवर्ड कर रही हैं, आई थिंक वो लाउड एंड क्लियर मैसेज हम सब तक पहुंच चुका है, और इस मूवी को हमारे सामने लाने के लिए तन्वी थैंक यू सो मच हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही आगे रेडियो महारानी के साथ जुड़ते रहिए।
2: थैंक यू मैम।
0: ओके बाय, ऑल द बेस्ट। खैर तन्वी ने जिस फिल्म के बारे में बात की, ये फिल्म अपने आप में एक ऐसे बोल्ड सब्जेक्ट पर बनी हुई फिल्म है जिसके बारे में हम आम तौर पर बात नहीं करते, लेकिन दिव्या जी ने जो रोल इसमें प्ले किया वो एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रोल है। और जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी तो गांव की आसपास की लेडीज जो इनके इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई थी, उन्हें ऐसा लगता था कि दिव्या वॉज दी फीमेल जो उनको उनकी फैमिली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन दे सकती हैं। ये देख कर दिव्या वॉज ओवरवेल्म्ड और उन्हें ऐसा लगा कि काश उनके हाथ में भी कोई ऐसी पावर होती जिससे कि वो इन सभी महिलाओं की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती। दिव्या जी, पहली बात, जो बोल्ड सब्जेक्ट आपने पिक किया इस फिल्म के लिए उसके लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि जनरली फीमेल्स इस टॉपिक पर बात नहीं करती और खुलकर तो सबके सामने बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन आपने इस कॉन्सेप्ट को इतने खूबसूरत तरीके से, इतने प्यारे अंदाज से दिखाया कि हर किसी को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि मैरिटल रेप्स भी होते हैं।
3: अरे बोंद नहीं।

बिताएं सुकून का एक मिनट। एक घर से छोटा होता है उसका दरवाजा, दरवाजे से छोटा होता है उस पे लगा ताला, और ताले से छोटी होती है उसकी चाबी, पर उसी छोटी सी चाबी से पूरा घर खुल जाता है। यही है आज की कहानी, छोटी सी कोशिश। छोटी सी कोशिश। एक बार एक झोपड़ी में आग लग गई। उसे बुझाने के लिए एक चिड़िया अपनी चोंच में पानी भरकर आग पर फेंकने लगी। पास पेड़ पर बैठे बंदर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके इतने पानी से क्या ही होगा, जिस पर चिड़िया ने जवाब दिया, ये बात सच है कि मैं इस आग को बुझा नहीं सकती, पर जब भी इसे बुझाने वालों की गिनती होगी तो उसमें मेरा नाम भी शामिल होगा और उस दिन सफल हो जाएगी मेरी ये छोटी सी कोशिश।

और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेडियो महारानी पर। रात बाकी बात बाकी, मैं सपना बनी हुई हूँ मैं आपके साथ। और आज हमने बात की एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्होंने अपने एक्टिंग के करियर में पूरी 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, ना केवल हिंदी बल्कि पंजाबी, मलयालम और इंग्लिश सिनेमा में भी इन्होंने अपीयरेंस दी है। छोटी सी उम्र में इन्होंने 25 से ज्यादा अवार्ड्स अपने नाम दर्ज करवा लिए हैं, जिसमें नेशनल फिल्म अवार्ड्स, फिल्म फेयर OTT अवार्ड और 2 आईफा अवार्ड्स भी शामिल हैं। अच्छा, दिव्या दत्ता जी सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि अपनी आवाज के लिए भी जानी जाती हैं। अगर आपकी आंखें बंद कर दी जाएं और इनका कोई डायलॉग सुनाया जाए तो आप तुरंत ही इन्हें पहचान लेंगे। वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि इन्हें डबिंग के लिए कभी कोई ऑफर ना आया हो। खैर, आया, बहुत फिल्मों के लिए आया, लेकिन इनकी लाइफ का एक्सपीरियंस सिर्फ ये कहता है कि कभी किसी और को अपनी आवाज ना दो। तो इसलिए इन्होंने सिर्फ एक फिल्म में एक्ट्रेस को डब किया था और उसके बाद इन्होंने कानों को हाथ लगाया और कहा कि मैं आज के बाद किसी भी एक्ट्रेस को अपनी आवाज नहीं दूंगी। खैर, इन्हें हम फीमेल गुलजार भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ना केवल अच्छा बोलती हैं बल्कि बहुत अच्छी पोएट्री भी करती हैं, और जितनी अच्छी पोएट्री करती हैं उतनी अच्छी ऑथर भी हैं। दिव्या जी अब तक अपनी 2 किताबें भी पब्लिश करवा चुकी हैं, जिसमें से एक किताब इन्होंने अपनी माँ को डेडिकेट की और एक किताब उस ऑर्गेनाइजेशन को जिन्होंने इन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया, यानी की फिल्म इंडस्ट्री। इनकी कुछ खूबसूरत फिल्मों की अगर मैं बात करूं तो वीर जारा, दिल्ली 6, भाग मिल्खा भाग, वेलकम टू सज्जनपुर, बदलापुर, धाकड़ और आजकल एक और भी फिल्म इसी लिस्ट में शामिल हो चुकी है, वो है चिरैया। ऐसे बोल्ड टॉपिक्स पर इन्होंने काम किया और अपना एक्टिंग का लोहा इस इंडस्ट्री को मनवा ही दिया है। आज मुझे दिव्या जी की बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको ये शो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और साथ ही मैं एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहूंगी अपने सभी कॉलर्स का जो आज के शो में मेरे साथ जुड़े। इसी के साथ छोड़े जा रही हूँ आपको कुछ खूबसूरत गीतों के साथ, और साथ ही आज से शुरुआत कर रही हूँ एक नई पहल की, यानी कि सुनाने जा रही हूँ आपको एक कहानी, और आशा करती हूँ कि ये कहानी आप सबको अपनी सी लगेगी और आपको पसंद आएगी। कैसे लगी ये कहानी ये भी मुझे जरूर बताइएगा, ताकि आगे भी मैं और मेरी टीम इस तरह की कहानियों पर काम कर सकें। फिर जल्द मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, और हाँ, प्यार बांटते रहिए, क्योंकि जितना प्यार आप बांटेंगे उतना ही प्यार आपको।

0: मेरे मम्मा मेरा टिफिन कहाँ है?
1: मम्मा मेरी टाई नहीं दिखाई दे रही।
2: सिमरन मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है।
3: बहू आज चाय के साथ नमकीन वाले बिस्किट दे देना।
4: सिमरन के घर की हर सुबह कुछ इसी तरह से बीतती थी। हस्बैंड, दो बच्चे और सासू माँ, कुल 5 लोग सिमरन को पता

0: वहां तक पहुंची नहीं क्योंकि रास्ते में ही एक बाइक वाले से टकरा कर रोड पर गिर पड़ी थी। आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई और उसी भीड़ में से एक आवाज ऐसी भी थी जिसने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया।
1: और सिमरन, बता क्या जी ली तूने अपनी जिंदगी?
0: सबने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराते हुए सिमरन को निहार रहा था।
2: अविनाश, तुम ही हो ना? आउच!
1: संभल कर सिमरन, तुम ठीक तो हो ना?
2: हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम परेशान मत हो।
1: यार सिमरन, तुम अपने आप को इतना ज्यादा समझदार क्यों समझती हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा?
2: अरे अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना नाराज हो रहे हो?
1: तुम हमेशा ऐसे ही करती हो, जब देखो अपना हुक्म चलाती हो।
2: और तुम हर बार की तरह इस बार भी ओवर रिएक्ट कर रहे हो, अब चुप हो जाओ वरना।
1: वरना क्या? बोलो।
2: वरना तुम्हें हर बार की तरह इस बार भी मुझे चाय पिलानी पड़ेगी, समझे?
1: और जिसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। वैसे भी कितने साल हो गए हैं तुम्हारे साथ बैठकर चाय पिए हुए।
2: आज कितने सालों बाद किसी से दिल खोल कर लड़ाई की है, बाय गॉड मजा आ गया।
1: चलो अब साइड में आ जाओ वरना दूसरी बाइक वाला ना शायद इतना मेहरबान नहीं होगा तुम पर।
2: अब चाय पी ले प्लीज।
1: भैया
2: दो अदरक वाली कड़क चाय। तुम्हें याद है?
1: हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ घर में कौन कौन है?
2: दो बच्चे, मदर इन लॉ और हस्बैंड। अब तुम बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है?
1: मैं, दो बिल्लियाँ और चार कुत्ते, मैं और मेरा छोटा सा परिवार, बस और कुछ नहीं।
2: और तुम्हारी वाइफ?
1: उसे तो कोई और ब्याह के ले गया था आज से 21 साल पहले।
2: डोंट टेल मी तुमने अब तक शादी नहीं की।
1: अरे तुमसे किसने कहा कि मैंने शादी नहीं की? मेरी शादी तो बहुत अनोखी है, मैंने तो किसी की याद के साथ ही 7 फेरे ले लिए थे। And I can proudly say that I am happily married.
2: Avi, I'm really sorry. मैं क्या करती? Parents का pressure ही इतना था मुझ पर कि मैं चाह कर भी नहीं रुक पाई।
1: अरे तुम्हें क्या लगता है मैं इतने सालों के बाद तुम्हें reason पूछने आया हूँ?
2: अच्छा तो क्या मुझे अदरक वाली चाय पिलाने आए हो?
1: ना बाबा, मैं इतना भी प्यार नहीं करता हूँ तुमसे।
2: प्लीज बताओ ना तुम यहाँ कैसे आए?
1: तुम्हारा कुछ सामान मेरे पास पड़ा था, बस वही लौटाने आया था।
2: क्या?
1: याद है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं मरने से पहले तुम्हें बालियां बनवा कर दूंगा, बस वही प्रॉमिस पूरा करने आया हूँ।
2: अच्छा तुम कौन सा अभी मर रहे हो? बोलो अविनाश, सब ठीक है ना?
1: तुम्हें क्या लगता है मैंने अपना सर खुद मुंडवाया है क्या?
2: मतलब ठीक से बताओ ना।
1: मुझे कैंसर है, 4th स्टेज।
2: अभी तुम अपना ट्रीटमेंट कहाँ से करवा रहे हो?
1: डोंट वरी यार, आई एम ओके। बस जो वक्त तुम पहले नहीं दे पाई आज वही वक्त मांगने आया हूँ। दे पाओगे मुझे 3 महीने?
2: यार मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ।
1: क्या मुझे मेरा सबसे प्यारा दोस्त मिल सकता है, वो भी सिर्फ 3 महीने के लिए?
2: अभी
1: मैं कुछ गलत नहीं सोच रहा, सिर्फ एक कप अदरक वाली कड़क चाय और बहुत सारी बातें।
2: अच्छा तो चलो पहले मेरी बालियां तो दो।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

0: कदी
1: कुड़ी मैनू कहती
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पेड़ हो।
1: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
2: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रियान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BAD शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रहा थी तेरी ना।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
6: चल अर्जुन, शुरू हो जा।
2: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
6: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
2: शायरी पे ध्यान लगाओ।
6: इरशाद,
2: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
6: मेरा नहीं, तुम्हारा ही होगा,
2: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
6: ये बात तो सही है।
2: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
6: कैसे कैसे?
2: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
6: अरे यार, वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
2: सुनो सुनो,

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी जिलायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा, बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
1: तुम्हें देखो ना ये क्या हो गया।
0: तो सुनिए आज ये गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहां हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन, मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊँगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
2: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो आगे बढ़ो, तो मैं मोटिवेट हो जाता।
0: वो कह रहा था बस से उतरो और आगे बढ़ो, मुंह उठा के आगे बढ़ना था, अब मैं चली तुम बोलते रहो।
1: सुनो सुनो है।

0: अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, AQI का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी। सर, आपका KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड है।
0: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
1: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
2: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।
3: जमाना बीता चेहरे बदले मगर आवाज वही पुरानी, रात बाकी बात बाकी में सुनते रहिए बातें।

0: कुछ रिश्ते होते हैं जो डायरी में लिखे जाते हैं और कुछ फोन के ड्राफ्ट मैसेज में सेव हो जाते हैं, जो ना कभी भेजे जाते हैं और ना ही कभी फोन से डिलीट हो पाते हैं।
1: क्यों फूलों के खिले खिले
2: कभी फ्रेंडशिप अनसेड रह जाती है तो कभी मोहब्बत अनरीड, क्योंकि हर रिश्ते की है अपनी एक कहानी जिसे समझने के लिए चाहिए थोड़ी सी प्यार वाली नादानी।
3: है फिर क्यों आँखों में नमी, क्यों मैं रोता हूँ।
2: तो सुनिए आरजे गीत के साथ रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड, जहाँ हर रिश्ते का होगा रियल इवेल्युएशन। मंडे टू फ्राइडे 10 to 11 PM ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।
4: जब HR 51 की गाड़ियाँ दिखे तो समझ जाना ये है हरियाणा का फरीदाबाद शहर पुराना, और जब बैठो इन गाड़ियों में तो सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 ही बजाना।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: Cheers! पर save water, save cinematic vibe. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम.

खैरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हो है?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी।

है जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूं भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later।
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों दा पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
1: अपना दिल तो आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।
1: बहुत भोला है बेचारा, मैं जाने किस पे आएगा।
2: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
3: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल वॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।

0: शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इरशाद,
1: करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं। चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
0: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे, बाय। हेलो।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाए अपना ब्राइट फ्यूचर। बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: क्या आप जानते हैं हमारे किशोर दा को क्यों था पौधों से प्यार?
1: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता।
0: और देवानंद को ब्लू और ब्लैक कपड़े पहनने से क्यों था इनकार?
2: मैं अपना दिल को आवारा।
0: जानिए ऐसे ही किस्से सुनहरे दौर की सपना के साथ रात बाकी बात बाकी में।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।
3: पुष्पा, आई हेट वाटर वेस्टिंग रे, जा जाके टंकी बंद कर।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
2: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए है।
1: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
3: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

save life. पर सेव वॉटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.

सीनियर को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: आज देखिए तो क्या हसीन रात है।
1: ओह काम तो बताइए बताइए।
0: ना ना ना पहले

0: सीधा साधा है।
1: बोलो बोलो।
0: अजी लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो नोना, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: मुस्कुराइए
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए,
0: हाँ पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए,
1: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
2: कबीर ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे गुलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े
1: गुमुराया मारे गिल गुमुराया उड़े पारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: और सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: ना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: चल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: ए जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजिए सरकार।
1: कहने था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया। नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
3: अच्छा अच्छा।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कोई हमसे।
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: है।
1: मैं भी हूँ गलियों की परछाई, कभी यहाँ कभी वहाँ।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्मस्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: भटक जाता है, ज्ञान भूल जाता है। भक्ति का पथ ही है बस ऐसा पथ, जो चले तो भव सिंधु पार उतर जाता है। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल लीडर श्री हितामृत जी के विचार।
1: समस्त भागवत धर्मन ऊपर निकुंज माधुरी श्री युगल चंद जो विलास करत हैं, जिन यह समझो नाही तासु रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे ते आपते जाई अंतर परे निसंदेह। अब यहाँ रस के उपासक को, रसोपासक को, साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए कि सभी से ये चर्चा करनी उचित नहीं है। देवदास जी कह रहे हैं कि जिन यह रस समझो नाही तासो रस की बात करनी उचित नाही। जो कहे तो आपते जाए, यदि कोई ऐसा करेगा तो उसके हृदय में जो रसानुभूति है वही समाप्त हो जाएगी, शिथिल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। अंतर परे निस्संदेह, और समाप्त नहीं होगी तो कह रहे शिथिल तो अवश्य पड़ जाएगी। पूर्व भी आपसे चर्चा हुई इस विषय पर, भजन को छिपाना ही भजन को बचाना है, भजन का गोपन। और अनधिकारी के सामने तो बिल्कुल भी ना कहा जाए। अच्छा, बहुत लोग मैंने ऐसे देखा वो खींचतान कर सबको लगाने का यहाँ प्रयास करते हैं, पर ऐसा संभव होता नहीं है भाई। जीव का कल्याण केवल केवल केवल ईश्वर के अनुग्रह से होता है। आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये आपका मेरा प्रयास नहीं है, ये आप पर और मुझ पर प्रभु की कृपा है। ये प्रभु की कृपा के